0: जो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: हार्दिक स्वागत है आपका इस सवेरे वाली गाड़ी में. सुबह के 5:06 हो रही है. स्वीकार करिए नहीं तो काफी प्यार भरा नमस्कार प्रणाम. यस यस मैं ही हूँ. थोड़ी सी आवाज बदल गई है. ये मौसम का असर है. कभी सर्दी कभी गर्मी उफ. लेकिन जोश में कभी बदलाव नहीं हुआ है क्योंकि आप जो हमारे हम सफर बनने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं. थैंक यू सो मच. सो वेटिंग फॉर यू. आपके मैसेजेस ऑन 5499 1294. क्योंकि दिन की शुरुआत हो चुकी है, नए दिन की शुरुआत, वो भी मंडे मॉर्निंग 7 सितंबर. तो बस 5499 1294 पर आपका इंतजार है.

0: दुनिया में अकेले आए हैं, अकेले ही चले जाएंगे, लेकिन बीच रास्ते में बस ऐसे आप जैसे हम सफर मिल जाए तो जिंदगी भी खूबसूरत बन ही जाती है।
1: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
2: Radio Masti.
0: चलिए जी, बिल्कुल अकेले नहीं है आप, नीतू आपके साथ सुबह के 7 बजे तक 5499-1294 पर। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, हर हर महादेव। प्रेमिला जी प्लेंदी पपाय से पति रंजीत साहब परिवार के नाम हैप्पी बर्थडे विश करते हैं आपको। आप है कौन? ईशा, नीतू एंड आपके हबी आश्ले, बहन अवनी, साथ में अनुष्का, राम रतन, नीतू फैमिलीज की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। अ वेरी गुड मॉर्निंग ज्योति फ्रॉम शतुबिनागर, साशनी, रेखा, सुरेखा, माधव परिवार है एंड आपके सभी डियर वंस, हर हर महादेव। आपको भी यहाँ पर है कौन? भाई सूरज शर्मा इन सजादा परिवार थ्रियोली से, हर हर महादेव। आपको भी शीला जी फ्रॉम लेस्पेरांस ट्रिब्यूशे, सबको प्रणाम, हैप्पी मंडे। बगन परिवार, ग्रांड चिल्ड्रन है 4, रिधि, सोनाक्षी, अवनी, साथ में क्यूट वंश एंड स्कूल जाएंगे ऑफकोर्स। ये है दादी सुया बिहारी, कुंगुमा से आपको ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दे रही है। गुड मॉर्निंग आपको, आपके हैं कौन? वेल गुड मॉर्निंग रेखा, कैसी है माय डियर? ठीक ठाक। प्रणाम इंदिरा जी, रेशमा, विमा, लंजू, कृषा, केशव, नील, माइशा, तानिया, मोता, ब्लॉन्च से। नमस्कार टोनी जी, रोशबॉ से आप कहते हैं गुड मॉर्निंग। द बेस्ट थिंग अबाउट द वर्स्ट टाइम ऑफ योर लाइफ इज दैट यू गेट टू सी द ट्रू कलर्स ऑफ एवरीवन। इस छोटी सी फ्रेज ने सब कुछ कह दिया। नमस्ते जी, आप है कौन? भाई महेंद्र, करजोर प्रणाम आपको भी एंड बस बड़ी वाली गाड़ी में आप ही आ चुके हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद आपको।

0: हो गया है।
1: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
2: Radio Musti.
3: सात बजकर 27 मिनट हो रही है, थोड़ी देर में आपका हॉरोस्कोप। तब तक जितने भी लोग काम पर जा रहे हैं सबको बोक उगाश। अभी अभी आपकी प्यारी नींद से आप जागे हैं, तो स्वागत है आपका रेडियो मस्ती में।

0: and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musty. Musty.
2: Let me wish a very good morning आपको दूती कारिविया दिख रहे हैं से साथ में है रघु जना परिवार के नाम प्यार भरा नमस्कार गाने अच्छे लग रहे हैं थैंक यू अमृता पोए तो साबलस्ते हैं हर हर महादेव आपको

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: चलिए जी शुरुआत आपके साथ करते हैं।
2: एरीज मेष राशि।
1: वेल, आज का दिन नई उम्मीद और राहत लेकर आ सकता है। लंबे समय से अटका हुआ कोई काम पूरा आखिरकार होने से मन हल्का और खुश महसूस करेगा। लाइफ पार्टनर के साथ चल रही दूरियां, बातचीत और समझदारी से कम होंगी और रिश्ते में फिर से मिठास लौटेगी।
2: टॉरस वृषभ राशि।
1: आज कुछ प्रभावशाली और खास लोगों से मुलाकात आपके करियर या कारोबार के लिए नए अवसर ला सकती है। हालांकि दूर रहने वाले किसी रिश्तेदार से मिली खबर थोड़ी चिंता बढ़ा सकती है। संतान की नौकरी में तरक्की से परिवार में गर्व और खुशी का माहौल बनेगा।
2: जेमिनी मिथुन राशि।
1: आज आपकी सूझबूझ और सही समय पर फैसला लेने की क्षमता आपके दूसरों जी हां आपको दूसरों से आगे रखेगी। विरोधियों की बातों में आकर कोई जल्दबाजी वाला कदम ना उठाएं और

0: नौकरी में किसी जरूरी काम को पूरा करने के लिए जूनियर या फिर आपके सहयोगियों का पूरा सपोर्ट काफी उपयोगी रहेगा।
1: कैंसर कर्क राशि।
0: आज वैवाहिक जीवन में प्यार, समझ और आपसी सहयोग का खूबसूरत तालमेल देखने को मिलेगा। बड़ों से किया हुआ कोई वादा पूरा करने का अवसर मिलेगा, जिससे मन में संतोष होगा। नई प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का विचार बन सकता है, लेकिन अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर ही आप आगे बढ़े।
1: लियो सिंह राशि।
0: खुशियाँ और उपलब्धियाँ आपका इंतजार कर रही है। आज कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने नए अवसरों के दरवाजे खोल सकती है। परिवार के साथ बिताया गया समय रिश्तों में अपनापन और मजबूती बढ़ाएगा। वैसे लंबे समय से अटकी हुई बिजनेस डील आखिरकार फाइनल होने की उम्मीद है।
1: वर्गो कन्या राशि।
0: आज आर्थिक मामलों में भाग्य आपका अच्छा साथ दे सकता है। पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने के संकेत हैं और आय में बढ़ोतरी से मन प्रसन्न रहेगा। जीवन साथी के लिए कोई खास चीज खरीदना रिश्ते में प्यार और अपनापन डेफिनेटली बढ़ाएगा। हालांकि निवेश से जुड़े फैसले जल्दबाजी में ना लें और पूरी जानकारी के बाद ही कोई कदम उठाएं।
1: लिब्रा तुला राशि।
0: आज का दिन काफी व्यस्त और भागदौड़ भरा रह सकता है। कोशिश करके ही आप जरूरी काम खुद संभालेंगे और हर छोटी बात के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहे। किसी पार्टी या समारोह में जाने का मौका मिल सकता है, जहां आपकी बातचीत और व्यक्तित्व लोगों को प्रभावित करेंगे।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
0: सेहत में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। दैट्स व्हाई खान पान और आराम पर विशेष ध्यान दें। अचानक किसी यात्रा की योजना बन सकती है। कारोबार की कोई पुरानी समस्या भाई बहनों के सहयोग से सुलझने की भी उम्मीद है और स्टूडेंट्स के भीतर कुछ नया सीखने की अलग करने की इच्छा जागेगी, जो उनके लिए फायदेमंद हो सकती है।
1: सजिटेरियस धनुराशि।
0: आज मन की कोई इच्छा पूरी न होने से थोड़ी बेचैनी या निराशा महसूस हो सकती है। काम में भी मन कम लगेगा, तो खुद को सकारात्मक गतिविधियों में व्यस्त रखना बेहतर होगा। परिवार में किसी सदस्य की सेहत को लेकर भागदौड़ करनी पड़ सकती है।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
0: आज अचानक धन लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। कारोबार में अच्छा मुनाफा मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पुराना अटका हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को किसी अच्छी खबर का इंतजार खत्म हो सकता है और घर में नए मेहमान के आने से खुशियों में उसकी रौनक बढ़ेगी।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि।
0: आज का दिन सामान्य से बेहतर और कुछ नई संभावनाओं वाला रह सकता है। अचानक यात्रा के योग बन सकते हैं। संतान ने किसी परीक्षा में हिस्सा लिया था, तो उसका परिणाम आपके लिए खुशी लेकर आ सकता है। वैसे विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए अच्छे उच्च शिक्षा के नए रास्ते खोल भी सकती है और भविष्य को लेकर उत्साह बढ़ेगा। आर्थिक मामलों में सावधानी आपको बरतनी होगी।
1: पाइसेस मीन राशि।
0: फाइनली आज कारोबार में उतार चढ़ाव के कारण मन थोड़ा अस्थिर रह सकता है। पार्टनरशिप से जुड़े मामलों में निवेश सावधानी रखें और किसी भी दस्तावेज या समझौते को बिना पढ़े स्वीकार ना करें। दूसरों के निजी मामलों में जरूरत से ज्यादा दखल देने से आपको बचना होगा और पूजा पाठ और आध्यात्मिक गतिविधियों में समय बिताने से मन को शांति मिलेगी। विशिंग यू ऑल बेस्ट ऑफ लक एंड अ लवली डे अहेड।
2: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती।

वापस आएंगे भाई बस समाचारों के बाद, यानी कि 6 बजे के समाचारों के बाद। तब तक ए वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते आपको आकाश एंड मनसुख फैमिली और बॉम्बू से धनेश्वर जी, पत्नी है सुनीता, रेखा, अनिशा, दविदुस परिवार।

0: Welcome to Radio Musti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Musti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: सुनते हैं सुबह का पहला फ्लैश न्यूज आपसे याचना नमस्कार
6: नमस्कार नीतूषा सभी सुनने वालों को भी नमस्कार सुनिए संक्षिप्त समाचार पिछले साल की तुलना में इस साल 2 सितंबर तक देश की सड़कों पर जान गंवाने वालों की संख्या ज्यादा रही 23 ज्यादा जानलेवा सड़क हादसे पेश आए हैं यानी 29% की वृद्धि हुई है ये आंकड़े चिंताजनक हैं पेनल्टी पॉइंट प्रणाली के लागू होने के बाद भी सड़कों पर जानलेवा दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या के चलते 1 सितंबर को राष्ट्रसभा में सड़क संबंधी उल्लंघनों को लेकर एक विधेयक पारित किया गया है जिसके तहत ठोस सजा और जुर्मानों का प्रावधान है 3 सितंबर को लॉन्च किया गया बर्मस्टैट्स बैंक ऑफ मॉरिशस के आर्थिक और वित्तीय आंकड़ों को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराता है ये नया टूल औपचारिक आंकड़ों को आसानी से खोजने देखने और उनका उपयोग करने की सुविधा देता है लेकिन तकनीकी पहलू से आगे बढ़कर कई सवाल खड़े हो रहे हैं आंकड़ों को विषय या समयावधि के आधार पर

देखा जा सकता है और उपयोगकर्ताओं की ज़रूरत के अनुसार उन्हें डाउनलोड भी किया जा सकता है। नेशनल क्राइम एजेंसी को एक कानूनी ढांचा प्रदान करने की दिशा में 9 विधेयकों का प्रावधान है। शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में इस पर गौर किया गया। इन विधेयकों में संविधान में एक सुधार, नेशनल क्राइम एजेंसी बिल और साथ में वित्तीय अपराधों, संपत्तियों की प्राप्ति और जांचकर्ताओं की मदद करने वालों से संबंधित नियम भी शामिल किए गए हैं। अगला चरण है राष्ट्रसभा में इन विधेयकों को पेश किए जाने से पहले कैबिनेट के स्तर पर इनका गहन अध्ययन करना। विदेश की खबरों में मायामी के हवाई अड्डे पर एक कार्गो विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से कम 5 लोगों की मौत हो गई है और 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जानकारियों के मुताबिक अमेज़न एयर कार्गो विमान हवाई अड्डे पर उतर के सही समय पर नहीं रुक पाया और रनवे को पार कर गया। प्लेन की कई गाड़ियों से भी टकरा गया और कई घंटों तक वहां सभी उड़ानें रद्द कर दी गईं। अब चलिए जानते हैं मौसम का हाल। स्थानीय स्तर पर मौसम का हाल कैसा रहेगा चलिए जानते हैं। हमारे इलाके पर अस्थिर हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह और दोपहर बाद पूर्वी इलाकों और ऊंचाइयों पर बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर बारिश होगी, कहीं कहीं पर तेज़ बारिश भी हो सकती है। ऊंचाइयों पर और कुछ अन्य जगहों पर कोहरा छाया रहेगा जिस वजह से विजिबिलिटी कम रहेगी। रात को भी पूर्वी इलाकों, दक्षिणी इलाकों और सेंट्रल प्लेटू पर बादल घिरे रहेंगे और ऊंचाइयों पर कोहरा छाया रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 17 से 19, साहिली इलाकों पर 21 से 23, जबकि अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 20 से 22, साहिली इलाकों पर 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। अतिरिक्त जानकारी इस प्रकार है, मस्करीन्स के दक्षिण पश्चिम से एक जोरदार एंटीसाइक्लोन हमारे करीब आ रहा है जिस वजह से मंगलवार 8 सितंबर से देश भर में तेज़ हवाएं बहेंगी और बारिश भी हो सकती हैं। कहीं कहीं पर हवा के झोंके 75 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। इन ठंडी हवाओं के कारण दिन के दौरान 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा मस्करीन्स के दक्षिण पश्चिम से तेज़ हवाएं बहेंगी और ऊंची लहरें भी उठेंगी। मंगलवार सुबह से दूर समंदर और साथ में पश्चिमी और दक्षिणी तटों के पास न जाने की सलाह दी जा रही है। आज सुबह सूर्योदय 6:13 पर, शाम को सूर्यास्त 6:02 पर होगा। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: पंची सुर में गा रही है क्योंकि सुबह का टाइम हो गया है, वो भी 6:12. वंस अगेन इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल एंड आप रेडियो मस्ती के साथ जुड़े हुए हैं। प्यार भरा नमस्कार, कैसे सोनम भोला, प्रेम अश्विनी आविशा नानी राम गुलाम फैमिली है और कंग्रेचुलेशंस किन को कह रहे हैं यहाँ पर, स्वबीन को। बस प्यारे बेबी के आने से घर में खुशी का माहौल छाया हुआ है, सबको ढेर सारी खुशियाँ हो और बधाइयाँ। हैप्पी 12th बर्थडे टू यू प्रिंस इशई विगागागु अव रोड्रिग एंड ये है दिवेश रिया रविश प्रीशा लवशा सब परिवार की तरफ से ढेर सारा प्यार। अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको मिस्टर दीपक एंड यहाँ पर है कौन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गुड मॉर्निंग ओजस्वी का आज बर्थडे है, लोड्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू मामा रति पापा किशन भाई लवीश नानी सीता नाना देवन मामा रूमा दीपा रेशमा मामू सचिन पापा है बॉबी विराज सब परिवार की तरफ से आपको ढेर सारा प्यार।

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: प्यार करने वालों से पूछे कि प्यार का एहसास क्या होता है. इट्स अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू निशिका एंड हेमा की तरफ से पारुषि परिधि प्रीतमी प्रिया साथ में नितिन यानेश और राहु जी कंदू तुकाराम परिवार पालमा से आपको ढेर सारा प्यार आशीर्वाद भेज रही है. गुड मॉर्निंग ललित एंजीत एंड फैमिली. कैसे हैं रेखा बेटा अंश पोबोजो से सब परिवार के नाम और यहाँ पर रोजस्वी लवी शाशी सोहाती मारती पापा किशा साथ माँ है किशन आई थिंक नाना नानी मामा रेशमा पापा बॉबी मादीपा पापा विराज सब परिवार के नाम. 6:26 यानी कि 6:30 बजे आप सुन पाएंगे पूरा समाचार बुलेटिन. उसके बाद बेदिता के साथ मॉर्निंग बीट हेमलता भजन.

सभी को नमस्कार। सुबह के इस बुलेटिन में सबका स्वागत। सबसे पहले आज की सुर्खियां। पिछले साल की तुलना में इस साल 2 सितंबर तक देश की सड़कों पर जान गंवाने वालों की संख्या ज्यादा। 23 ज्यादा जानलेवा सड़क हादसे पेश आए हैं, यानी 29% की वृद्धि।

0: सितंबर को लॉन्च किया गया बम स्टार्ट्स बैंक ऑफ मॉरिशस के आर्थिक और वित्तीय आंकड़ों को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराता है। ये नया टूल औपचारिक आंकड़ों को आसानी से खोजने, देखने और उपयोग करने की सुविधा देता है। क्या एतिहाद एयरवेज जल्द ही मॉरिशस में अपने विमान का संचालन शुरू कर सकती हैं? फिलहाल कुछ भी अंतिम रूप से तय नहीं है, लेकिन अब इस संभावना पर विचार किया जा रहा है। विदेश में मायामी के हवाई अड्डे पर एक कार्गो विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से कम 5 लोगों की मौत। बुलेटिन में एक बार फिर आप सबका स्वागत। पेश है समाचार अब विस्तार से। पिछले साल की तुलना में इस साल 2 सितंबर तक देश की सड़कों पर जान गंवाने वालों की संख्या ज्यादा रही। 23 से ज्यादा जानलेवा सड़क हादसे पेश आए हैं, यानी 29% की वृद्धि हुई है। ये आंकड़े चिंताजनक हैं। पेनाल्टी पॉइंट प्रणाली के लागू होने के बाद भी सड़कों पर जानलेवा दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या के चलते 1 सितंबर को राज्यसभा में सड़क संबंधी उल्लंघनों को लेकर एक विधेयक पारित किया गया है, जिसके तहत ठोस सजा और जुर्मानों का प्रावधान है। लवीना सूफी की रिपोर्ट है, विवरण अभियोदय का।
1: जनवरी से अब तक 101 जानलेवा सड़क दुर्घटनाओं में 104 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि पिछले साल इसी अवधि के दौरान 78 जानलेवा सड़क का दुर्घटनाएं दर्ज की गई थी, जिनमें 83 लोगों की जान चली गई थी। दर्ज की गई लगभग 100 मौतों में से 42 मौतों के साथ मोटरसाइकिल चालक सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। इसके बाद 32 मौतों के साथ पैदल यात्री आते हैं, जो पिछले साल की तुलना में 39 की वृद्धि दर्ज की गई। इस साल 14 चालकों, 12 यात्रियों और एक साइकिल चालक का, दो पीछे बैठे यात्रियों और एक बस कंडक्टर ने अपनी जान गंवाई। पुलिस आंकड़ों के अनुसार दोपहर 12 बजे से शाम के 6 बजे के बीच सड़क का सबसे अधिक घातक का साबित हुई है, जिनमें 32 दुर्घटनाएं हुई, जो पिछले साल की तुलना में दुगनी है। वही शाम के 6 बजे से आधी रात के बीच इस साल 30 जानलेवा सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई। सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की सबसे अधिक प्रभावित आयु वर्ग 26 से 50 वर्ष के बीच है। इसके अलावा इस वर्ष घायल हुए 38 लोगों की उम्र 60 वर्ष से अधिक है।
0: 3 सितंबर को लॉन्च किया गया बम स्टार्ट्स बैंक ऑफ मॉरिशस के आर्थिक और वित्तीय आंकड़ों को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराता है। ये नया टूल औपचारिक आंकड़ों को आसानी से खोजने, देखने और उपयोग करने की सुविधा देता है, लेकिन तकनीकी पहलू से आगे बढ़कर सवाल ये है कि मॉरिशस की अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करने वालों के लिए वास्तव में इससे क्या बदलाव आएगा। आशी बाचू, अभ्युदय।
1: बैंक ऑफ मॉरिशस के आर्थिक और वित्तीय डेटा को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकत्र करता है, ताकि इसे आसानी से एक्सेस और उपयोग किया जा सके। आंकड़ों को विषय या समयावधि के आधार पर देखा जा सकता है और उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता के अनुसार डाउनलोड किया जा सकता है। अर्थशास्त्री डॉक्टर भविष्य जगन्नाथ के अनुसार, ये सरल पहुंच मॉरिशस में आर्थिक जानकारी के उपयोग के तरीके को बदल सकती है। वे बताते हैं,
2: Là où Bumstats peut véritablement transformer l'analyse économique à Maurice, c'est dans trois domaines.
1: Bumstats सच्चे अर्थ में आर्थिक विश्लेषण कर सकेगा, खासकर 3 पहलुओं को ध्यान में रखकर। पहला है पारदर्शिता, यानी कि ट्रांसपेरेंसी। दूसरा है बेहतर रिएक्टिविटी, जबकि तीसरा आंकड़ों के उभरते विकास। इन सभी आंकड़ों को स्टैटिस्टिक्स के छात्रों, यूनिवर्सिटियों, पत्रकारों, ठेकेदारों आदि को दिया जा सकता है। इसके अलावा बूमस्टैट्स शोध और इनोवेशन को बढ़ावा भी दे सकेगा। भविष्य जगन्नाथ इसे एक ऐसे उपकरण के रूप में भी देखते हैं जो पारदर्शिता को मजबूत कर सकेगा और आर्थिक विश्लेषण को अधिक रेस्पॉन्सिव बना सकता है। लेकिन वे ये भी याद दिलाते हैं कि आंकड़ों को समझा जाना चाहिए और उन्हें सही संदर्भ में रखकर देखा जाना चाहिए।
2: Un citoyen pourra désormais consulter rapidement l'évolution de l'inflation.

0: अशोक
1: एक नागरिक इन्फ्लेशन की स्थिति की जांच कर पाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बेहतर स्थिति, बैंकिंग क्रेडिट आदि, परंतु ये भी जानना जरूरी है कि कौन से उभरते इंडिकेटर्स हैं, आर्थिक स्थिति से जुड़े कौन से कारक हैं, इस तरह से इसका पूरा विश्लेषण किया जा सकेगा। इसीलिए इस प्लेटफॉर्म से परे स्टैटिस्टिक्स जानकारी की पूरी गुणवत्ता

0: को एक कानूनी ढांचा प्रदान करने की दिशा में 9 विधेयकों का प्रावधान है। शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में इस पर गौर किया गया। इन विधेयकों में संविधान में एक सुधार, नेशनल क्राइम एजेंसी बिल और साथ में वित्तीय अपराधों, संपत्तियों की प्राप्ति और जांचकर्ताओं की मदद करने वालों से संबंधित नियम भी शामिल हैं। अगला चरण है राष्ट्रसभा में इन विधेयकों को पेश किए जाने से पहले कैबिनेट के स्तर पर इनका गहन अध्ययन। शैली निबंग की रिपोर्ट और विवरण अभी उदय का।
1: वास्तव में टाइम टेबल यानी कि समय सारिणी स्पष्ट होती जा रही है, परंतु सुधार अभी संसदीय स्तर पर नहीं पहुंचा है। इस योजना की स्थापना के लिए बजट 2026-2027 में 200 मिलियन रुपए का प्रावधान किया गया था। 29 अगस्त को वाकुआ में पुलिस की 360 नई भर्तियों की पासिंग आउट परेड के दौरान डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने भावी एजेंसी को संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई के मुख्य केंद्र बिंदु के रूप में प्रस्तुत किया था। उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि जल्द ही राष्ट्रीय सभा में नेशनल क्राइम एजेंसी बिल पेश किया जाएगा। ये परियोजना मुख्य रूप से ब्रिटिश अनुभव और मॉडल पर आधारित है। अटॉर्नी जनरल का कार्यालय या ब्रिटिश विशेषज्ञों की सहायता से पिछले कई महीनों से इसके कानूनी ढांचे पर काम कर रहा है और इस मुद्दे पर पारदर्शिता की मांग भी उठने लगी है। पूर्व अटॉर्नी जनरल रामा वालाइदन ने शुक्रवार को गाविन ग्लोवर को पत्र लिखकर मांग की है कि नेशनल क्राइम एजेंसी बिल को राष्ट्रीय सभा में पेश किए जाने से काफी पहले सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किया जाए ताकि जनता इसका अध्ययन कर सके और अपने सुझाव दे सके। फिलहाल इसे राष्ट्रीय सभा में पेश करने की किसी औपचारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है।
0: क्या एतिहाद एयरवेज जल्द ही मॉरिशस में अपने विमानों का संचालन शुरू कर सकती हैं? फिलहाल कुछ भी अंतिम रूप से तय नहीं हुआ है, लेकिन अब इन संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि अबू धाबी की सरकार पिछले कुछ समय से इस बात में रुचि दिखा रही है कि ये एयरलाइंस मॉरिशस के लिए अपनी सेवाएँ शुरू करें। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
1: फिलहाल ये केवल एक परियोजना है, परंतु अबू धाबी सरकार की एतिहाद एयरवेज द्वारा मॉरिशस के लिए उड़ानें शुरू करने में रुचि पूरी तरह से वास्तविक है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने इस बात की पुष्टि की। ये संभावना अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने की दिशा में अपनी हवाई पहुंच नीति यानी एयर एक्सेस पॉलिसी की समीक्षा करने की मॉरिशस की इच्छा का हिस्सा है। एतिहाद संयुक्त अरब अमीरात की राष्ट्रीय एयरलाइन है और वर्तमान में अपने अबू धाबी हब के माध्यम से दुनिया भर के 120 से अधिक गंतव्यों के लिए सेवा प्रदान करती है। ये अमीराती एयरलाइन यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और नए पर्यटन बाजारों तक व्यापक पहुंच प्रदान करेगी। इस एयरलाइन के आने से एमिरेट्स और कतर एयरवेज जैसे पहले से स्थापित विमानन वाहकों के साथ प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन भी बढ़ेगी, जिससे यात्रियों को अधिक प्रतिस्पर्धा किराए और बेहतर सेवा का लाभ मिलेगा। दूसरी ओर इस ढील से कुछ प्रमुख मार्गों पर बाजार हिस्सेदारी छीनने का कारण एयर मॉरिशस के कमजोर होने का जोखिम भी है। अधिकारियों के सामने विशेष रूप से भावी राष्ट्रीय विमानन परिषद के माध्यम से मुख्य चुनौती राष्ट्रीय एयरलाइन से समझौता किए बिना विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देना होगा। यद्यपि अभी कोई तारीख तय नहीं की गई है, तथापि ये योजना मॉरिशस को प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई प्रवाहों के साथ बेहतर ढंग से जोड़ने की महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
0: विदेश की खबरों में मायामी के हवाई अड्डे पर एक कार्गो विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से कम 5 लोगों की मौत हुई है और 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जानकारियों के मुताबिक अमेज़न एयर कार्गो विमान हवाई अड्डे पर उतरते वक्त सही समय पर नहीं रुक पाया और रनवे को पार कर गया। प्लेन कई गाड़ियों से भी टकराया। कई घंटों तक वहाँ सभी उड़ानें रद्द कर दी गईं। और इंडोनेशिया में अनाक खतताओ ज्वालामुखी के राख के कारण जकार्ता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे

को बंद किया गया है, सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, जिस वजह से करीब 170,000 यात्री वहीं फंसे रह गए हैं। इनमें हजारों विदेशी शामिल हैं जो वहां पर्यटन के लिए गए हुए थे। शुक्रवार देर रात को ये ज्वालामुखी लावा उगलने लगी और आसपास के इलाकों में जल्द ही राख का बादल छा गया। चलिए जानते हैं मौसम का हाल। हमारे इलाके पर अस्थिर हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, सुबह और दोपहर बाद ऊंचाइयों पर और पूर्वी इलाकों पर बादल घिरे रहेंगे और बारिश होती रहेगी। कहीं कहीं पर तेज़ बारिश हो सकती है और कई जगहों पर कोहरा छाया रहेगा, जिस वजह से विजिबिलिटी भी कम रहेगी। रात को भी पूर्वी दक्षिणी इलाकों सेंट्रल प्लेटो पर बादल घिरे रहेंगे और कोहरा छाया रहेगा, रह रहकर बारिश होगी। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर में न जाने की सलाह है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 17 से 19, अधिकतम 20 से 22 और तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 21 से 23, अधिकतम 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। अतिरिक्त जानकारी इस प्रकार है। मस्करीन्स के दक्षिण पश्चिम से एक जोरदार एंटीसाइक्लोन करीब आ रहा है, जिस वजह से मंगलवार 8 सितंबर को यानी कल से हमारे इलाके पर तेज और ठंडी हवाएं बहेंगी और मौसम भी बरसाती रहेगा। हवा के झोंके कहीं कहीं पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच सकती हैं और इस वजह से दिन के दौरान 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जाएगी। साथ में कुछ अन्य जानकारी इस प्रकार है। मस्करीन के दक्षिण पश्चिम में ऊंची लहरें उठ रही हैं, जो धीरे धीरे स्थानीय मौसम में स्थानीय स्तर पर समंदर को प्रभावित करने लगेगा। मंगलवार को ऊंची लहरें उठेंगी, खासकर पश्चिमी और दक्षिणी लगूनों और तटों के पास तथा दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जा रही है। मंगलवार सुबह से आज सुबह सूर्योदय 6:13 पर हुआ, शाम को सूर्यास्त 6:02 पर होगा।

देश विदेश की इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसको आप तक पहुंचाने में पूरे समाचार विभाग और तकनीकी पर फैजल का साथ रहा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार। Shok samachar sunye. Quand le juge forest side me 72 saal ke 72 years old ke janab Abdul Rashad Bakohali, janab Abdul Rashad Bakohali जो रेशाद के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और UBS के पूर्व शेफ जगत थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनका जनाजा आज सुबह 10 बजे उनके मकान कॉन्लुजूज फॉरेस्ट साइड से निकालकर सबसे पहले नमाज जनाजे के लिए कॉन्लुजूज फॉरेस्ट साइड की आलिबेत मस्जिद और फिर दफनाने के लिए बिगाहा का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 10 AM। तूफानी लेन ला मेरी ओकुले में तूफानी लेन ला मेरी ओकुले में 85 साल के 85 years old के श्री गोबर्धन अराबंदु श्री गोबर्धन अराबंदु जो बाय देवन जिफे के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दिन के 12 बजे उनके बेटे ताको आनंद अहबंदु रोशन के मकान तूफानी लेन लामेरी ओकुले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाहा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट नून। नंबर 16 ब्रोड एवेन्यू सेंट जॉन क्वाटर बोन में नंबर 16 ब्रोड एवेन्यू सेंट जॉन क्वाटर बोन में 60 साल की

ये 68 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती लीलामती गणेश, श्रीमती लीलामती गणेश जो कामिनी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुबह 11:30 बजे उनके बेटे विशाल गणेश के मकान नंबर 16 ब्रोड एवेन्यू सैन शौकाथोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्रियानों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11:30 AM। रुथ्वायल अपर वेल में, रुथ्वायल अपर वेल में 62 साल के 62 ईयर्स ओल्ड के जनाब अब्दुल मुस्तफ़ा गुलाम हुसैन, जनाब अब्दुल मुस्तफ़ा गुलाम हुसैन जो मुस्तफ़ा के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। जनाजा सुबह 10 बजे उनके बेटे अब्दुल रेजा गुलाम हुसैन के मकान रॉयल रोड अपर वेल से उठाकर दफनाने के लिए पेंडे पापाई का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 10 AM। मामजेल जान गुडलैंड्स में, मामजेल जान गुडलैंड्स में 57 साल के 57 ईयर्स ओल्ड के श्री प्रेमदत्त भुईधर, श्री प्रेमदत्त भुईधर जो कविराज के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी सुबह 10 बजे उनकी पत्नी प्रेमिला भोईधो के मकान मामजेल जान गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 10 AM। गोपालालेन कारो मान्यक मेबर्ग में, गोपालालेन कारो मान्यक मेबर्ग में 63 साल के 63 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती लक्ष्मी मानिक, श्रीमती लक्ष्मी मानिक पैदाशी नाम आसिरिया और जो मीडू के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दोपहर 2 बजे, अर्थी कल दोपहर 2 बजे उनके मकान गोपालालेन कारोमान्योक में बर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पॉइंट फोक्यूस रिविया दे क्रेओल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 2 PM। बंजन रोड सुरीनाम में, बंजन रोड सुरीनाम में 78 साल के 78 ईयर्स ओल्ड के श्री चंद्रिका दत्त मंगल, श्री चंद्रिका दत्त मंगल जो चंद्रिका के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दिन के 11 बजे उनके बेटे केविन मंगल के मकान भजन रोड सुरीनाम से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्वाभा सुरीनाम की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11 AM। रारोड बॉलो में, रारोड बॉलो में 74 साल के 74 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती राजकुमारी उदित, श्रीमती राजकुमारी उदित पैराशी नाम कोलीचन और जो दादी बातू के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दोपहर 2 बजे उनके बेटे चित्रजा सिंह, चित्रंजन सिंह उदित के मकान रॉयल रोड बॉल उसे उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांचुआ की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। डुमोलेन शामुनी में, डुमोलेन शामुनी में 56 साल की 56 ईयर्स ओल्ड की कुमारी सुचिता डुमोर जो चिस्या के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दिन के 1 बजे उनके भाई विद्यानंद दुमू के मकान दुमोलेन शामुनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। एस्टोरिया रोड गुडलैंड्स में, एस्टोरिया रोड गुडलैंड्स में 55 साल की 55 ईयर्स ओल्ड की कुमारी शांता उरिया जो शांता के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दिन के 1 बजे उनकी बहन संगीता ओहिया के मकान अस्टोरिया रोड गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वाहूश गुडलैंड की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। रारोड सेंचुबिया में, रारोड सेंचुबिया में 19 साल के 19 ईयर्स ओल्ड के श्री भुवेश दुलभ जो आयुष के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी सुबह 10 बजे उनके मकान रालोड सेंचुबिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेंचुबिया सोंगोलेट की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 10 AM। रालोड होशतेया में, रालोड होशतेया में 72 साल की 72 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती हवंती

0: मंज, श्रीमती हवंती चमन, जो राम भजन के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दिन के 11 बजे उनके पति अर्जुन चमन के मकान रॉय रोड गोश्तिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दागुची की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11 AM। कालीमाई रोड पालमा में 61 साल के 61 ईयर्स ओल्ड के श्री बालाकृष्णा मुकुल, जो वासु के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दिन के 1:30 बजे एलियंसन्स रॉय रोड बुबासन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पालमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1:30 PM। रुई लाबू द नेमीबर्ग में 89 साल की 89 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती महित्री तिलक, पैदाशी नाम तिलवा, और जो दादी मानती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके मकान हुईलाबूडो नेमीबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए टोम्बो मेबर्ग की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 1 PM। कांगुल बाउश में घोइने में 52 साल के 52 ईयर्स ओल्ड के श्री गणेशन अपासोमी, जो सूर्यन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी सुबह 10 बजे उनके मकान कांगुल बाउश में घोइने से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिव्यारी काले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रमिशन टुडे एट 10 AM। आलेजा क्लिस्कालिये में 69 साल के 69 ईयर्स ओल्ड के श्री नारायण दत्त दलू, जो अमरनाथ के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दिन के 11 बजे उनके बेटे केवल दलू के मकान आलेजा क्लिस्कालिये से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बासें कारोंग लिस्कालिये की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रमिशन टुडे एट 11 AM। Flamboyant Street, Noce de Canary via du Rampomé, 69 साल के 69 years old के श्री राजकुमार अंकुर, जो सुनील के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी सुबह 10 बजे उनकी पत्नी अनसुया अंकुर के मकान Flamboyant Street, Noce de Canary via du Rampart से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए उत्रीव की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 10 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: RM2 Radio Masti. Feel the Masti.

इसी प्यार के साथ की इस उम्मीद में कि हम वापस मिलेंगे बहुत जल्द 6:56. जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स, हैव अ सेफ डे अहेड एंड बस थोड़ी देर में मॉर्निंग बीट वेदिता के साथ. बाय बाय.

0: बस इतना ही कहना चाहेंगे कि 7 बज रहे हैं.
1: वेलकम टू RM2
2: रेडियो मस्ती.
1: नॉर्थ साउथ
2: 103.5,
1: ईस्ट वेस्ट
2: 96.4,
1: सेंटर
2: 99.4.
1: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
2: Morning Beat.
1: James. RM2 Radio Musti in the mix.

0: कभी-कभी ये गाना मैजिक का काम करता है ना?
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: जहाँ पे होते हैं अच्छे अच्छे गीत वो है मॉर्निंग बीट. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू रेडियो मस्ती. सुबह के 7:08 हुए हैं. मंडे 7th September. यस. देखो भाई, 7 दिन भी निकल गए. सितंबर का महीना भी अभी शुरू हुआ था. अभी तो हमने देखा भी नहीं, जाना भी नहीं, लेकिन इतने दिन निकल गए. इसका मतलब यही है कि वक्त भाग रहा है. कैन यू बिलीव इट कि अभी कुछ ही महीनों में हम पहुँच जाएंगे 2027 की ओर. वक्त यही इशारा कर रही है कि वक्त भाग रहा है और आपको चाहिए कि आप जीना सीख ले, क्योंकि लाइफ में अगर थोड़ा सा रुक कर अगर आपने लाइफ को एंजॉय नहीं किया तो फिर क्या किया.
1: मॉर्निंग बीट, अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो.
2: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स.

0: Good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: हम तो आते ही शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर आपके लिए गेम भी लेकर चले आए हैं। यस, अगर आपको सर्कस पता है, आपको जाना है, आप जाना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, शेख दर्शन ज़बाता आपके लिए लेकर आए हैं क्या वैसे आपके लिए आए हैं टिकट्स और आपको मौका मिलेगा कि जाकर आप एक्सपीरियंस करें ये जो मैजिक होता है, थ्रिल्स, लाफ्टर एंड जो सर्कस का परफॉर्मेंस होता है पूरी फैमिली के लिए। तो ये शोज़ जो हैं बागातिल में हो रहे हैं एंड एवरी थर्सडे एंड फ्राइडे 6 PM से एंड सैटरडे एंड संडे आपके लिए 2:30 PM से और ये होता है 5:30 PM से भी। तो आप अगर जाना चाहते हैं, इन्जॉय करना चाहते हैं, आप टिकट जीतना चाहते हैं तो लेट मी टेल यू कि यहाँ पर आपको मिल सकता है 2 entry tickets और आपको बस मेरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा। आपको मुझे बताना है what word beginning with the letter A describes performers who execute impressive physical routines in a circus? What word beginning with the letter A describes performers who execute impressive physical routines in a circus? आपको जवाब देने हैं 549-1294 पूरे नाम और पते के साथ।
0: RM2
1: Radio Musti.
3: Soso, je sais ce qu'on va faire ce week-end.
4: Être bien sage.
3: Oui, mais aussi sauter sur des trampolines, plonger dans des piscines à boules et dévaler des toboggans lumineux. Parce que du 1er septembre au 31 décembre chez KFC, on reçoit un ticket pour Funtopia ou Gravity Max à Tribeca dans notre Tiki Fun Mill.
4: Ah ben, faudra être sage alors.
5: गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपनी पूजा को अधिक पवित्र और आनंदमय बनाएं और केजी क्लासिक प्योर घी के साथ एक सदी से भी ज्यादा भारत का असली घी मंडी पर उपस्थित है। इम्पोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय और रैपिड सर्विसेज लिमिटेड। फोन नंबर 4128468। और केजी क्लासिक प्योर घी विशेस यू अ पायस गणेश चतुर्थी।
6: Mon Dieu!
7: Me prépare pour un top manger pour toi là.
6: Mon Dieu!
7: Un bon panier macni.
6: Mon Dieu!

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: न्यूज़ फ्रेंड्स, हम खेल रहे हैं यहाँ पर, सर्कस कर रहे हैं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए सवाल ही लेकर आए हैं ऐसा, जिससे आपको अगर मौका मिलता है जाने का सर्कस देखने का, भाई सर्कस हम लोगों ने तो सिर्फ फिल्मों में देखी, अगर आपको मौका मिलता है बैठकर एंजॉय करने का तो वाई नॉट। तो यहाँ पर हमने आपसे सवाल किया था, हमने पूछा था व्हाट वर्ड बिगिनिंग विद द लेटर ए डिस्क्राइब्स परफॉर्मर्स हु एग्जीक्यूट इंप्रेसिव फिजिकल रूटीन्स इन अ सर्कस एंड द राइट आंसर इज एक्रोबैट्स। और यहाँ पर हमें बिल्कुल सही जवाब मिला है, सभी लोगों ने सही जवाब दिया है, लेकिन लकी ड्रॉ के बाद नाम आया है एंड दैट्स प्रीति हीरा लोल फ्रॉम बिलिया। कंग्रेचुलेशंस, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अब आपको मिल रहा है टिकट्स टू सेक्स अवाता, सो यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस दिस मैजिक थ्रिल्स लाफ्टर एंड स्पेक्टेकुलर सर्कस परफॉर्मेंसेस। और आप चाहे तो अपने फैमिली के साथ जा सकते हैं। सेक्स अवाता बागातेल जो होता है थर्सडे फ्राइडे आज फ्रॉम 6 PM एंड सैटरडे संडे 2:30 PM एंड 5:30 PM। बुकिंग के लिए आप कॉल कर सकते हैं 5250941 3 and don't miss the magic show. This is Sex Avata.
3: Sex Avata à Bagatelle. Prépose pour un moment magique et ban spectacle cirque extraordinaire. Tous jeudi et vendredi 18h, achetez des billets gain gratis. Ou pour un bon plan pour week-end, vinget Sex Avata samedi et dimanche 14h30 et 17h30. Et ban l'école, compagnie et ban groupe, nous pas fin oublier eux. Nous avons un package spécial pour eux avec ban spectacle à partir 11h. Allô, qui se peut attendre? Réserve votre place à la même au 50 50 94 13.
4: Avis à tous les amoureux des animaux! 17 au 24 septembre, rendez-vous chez Winners pour profiter de super offres sur une sélection de produits pour vos compagnons avec vos grandes marques préférées. Et parce qu'il y en a pour toute la famille, profitez également de nombreuses offres sur une sélection de produits du quotidien. Alors, ne manquez pas cette occasion de faire plaisir à vos petits compagnons et à toute la famille!
5: On est tous Winners!
0: RM2
1: Radio Musti.

0: Good Beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: 7:23 हुई है, यू लिसनिंग टू मॉर्निंग बीट विनीता के साथ। हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। बाहर का मौसम भीगा भीगा और अंदर का मौसम ये कह रहा है कि भाई ये मौसम को आज क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, एंजॉय करो। वैसे भी बहुत जल्द ये मौसम हमको टाटा बाय बाय कहने वाला है और विंटर तो वैसे भी हमें बाय बाय कहने के लिए रेडी हो गया, जाने के लिए भी रेडी हो गया। तो जितना भी बचा है अभी सर्दी का ये मौसम, इसको एंजॉय कर लीजिए गर्मा गर्म चाय या कॉफ़ी के साथ। अगर आप हमें सुन रहे हैं, वेरी गुड मॉर्निंग। जिनका बर्थडे है उनको सरप्राइज करना चाहते हैं, डोंट फॉरगेट, उनका नाम भेजिए, उनका फोन नंबर भेजिए। नंबर है 5491294।
3: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ट्यून इन टू द वेरी बेस्ट रेडियो मस्ती, योर नंबर वन बेलोवेड स्टेशन।

सो दोस्तों हम हमेशा कहते हैं जब भी आप किसी को हैप्पी बर्थडे विश करना चाहते हैं लाइक वी वांट अस टू कॉल हम फोन करें उनको हैप्पी बर्थडे गाएं और उनको हम लोलो हाइपर मार्केट की तरफ से एक वाउचर भी दें तो जिनका आज बर्थडे है मेक श्योर कि वो फ़ोन भी उठा लें क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हम फ़ोन करते वो फ़ोन नहीं उठाते फिर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उनसे बात नहीं कर पाते लेकिन कोई बात नहीं अब यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आपने एज तो लिखा नहीं लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई तो है जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है तो आज है ओजस्वी सोहाती का बर्थडे और आपने ये तो नहीं डाला कि वो कितने साल के हुए हैं लेकिन आज ओजस्वी का बर्थडे है और हम उन्हें विश कर रहे हैं अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे वो रहते हैं पुदखदौ अमलेत और यहाँ पर उनकी मामा रूमा भाई वशिष दीदी विद्या जीजा विक्रम मधु फैमिली है उनको हैप्पी बर्थडे विश कर रही है लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ओजस्वी से बात नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग जब भी किसी के लिए मैसेज भेजिए मेक श्योर कि आप उनका नाम और उनके साथ उनका फ़ोन नंबर अगर घर का नंबर भी हो तो ज़रूर भेजिएगा और इसी के साथ चलिए भाई खुशी का दिन है खुशी का माहौल है थोड़ी देर में हम स्पोर्ट्स की ओर बढ़ने जा रहे हैं लेकिन उससे पहले भी समय हो गया है कि हम और आप मिलकर बस मज़े ले कुछ खूबसूरत गीतों का मॉर्निंग मॉर्निंग में ऐसे गाने कमाल के होते हैं जो बस मूड बदल दे और मैजिक क्रिएट कर दे वेरी गुड मॉर्निंग रेडियो मस्ती की टीम की तरफ से Don't forget to send in your messages on 549-1294. कहाँ पहुँचे कहाँ तक पहुँचे और आज का मौसम क्या कह रहे हैं वापस चले जाए कंबल के अंदर बिल्कुल नहीं मंडे है मन लगा लो पूरा भी अच्छा जाएगा

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: प्यार करना तो ठीक है, दिल मत दिया करो भाई, बिना दिल के इंसान रहेगा कैसे। 7:34 you are listening to Radio Musti Morning Beat, मैं हूँ विदिता आपका साथ दे रही हूँ और यहाँ पर इस ठंडे ठंडे बरसाती मौसम में आपका वेलकम करती हूँ। प्लीज बी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग। आपको पता है कि जब बारिश होती है रास्ता जो होता है स्लिपरी होता है, अगर आप तेज रफ्तार से आते हैं ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं तो कभी क्या होता है कि फिसला फसला हो सकती है, आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसीलिए बी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग और दिमाग को थोड़ा ठंडा रखा करो जब आप गाड़ी चला रहे हो। स्पेशली कुछ इधर उधर सोचना नहीं है, बस सामने देखो, गाड़ी चलाओ और ऊपर वाले का नाम लेते लेते लेते लेते अपने मंजिल तक पहुंचो। चलो तो हम थोड़ी देर में भागने वाले हैं अरविंद के पीछे। अब अरविंद किधर रह गए, उनसे हम मिलेंगे थोड़ी देर में। वो बेचारे भी बरसाती मौसम है ना, कुछ गर्मा गर्म चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं। आज उन्होंने अपनी मम्मी को बोला है थोड़ा इलायची ज़्यादा डाल देना मम्मी, तो बस वो गर्मा गर्म चाय ले रहे हैं और फिर उसके बाद गर्मा गर्म खबरें आप तक पहुंचाएंगे। क्या चल रहा है स्पोर्ट्स वर्ल्ड में जानेंगे थोड़ी देर में।

0: ready for your morning show. James.
1: RM2, Radio Musty, in the mix.
2: इसमें अभी तक साथ दे रहे हैं रेडियो मस्ती पर प्रोग्राम चल रहा है आपके लिए मॉर्निंग बीट्स पोस्ट न्यूज़ बस थोड़ी में देर में लेकर आ रहे हैं आपके लिए इस गाने को एंजॉय करते चलिए इस बरसाती मौसम में

0: चलिए हम भी झूम झूम जाते हैं, घूम घूम जाते हैं और घूम कर मिलते हैं अरविंद के साथ।
1: स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट
2: स्पोर्ट्स न्यूज
3: रेडियो मस्ती इन द मिक्स।
0: चलिए जी आपको कहेंगे गुड मॉर्निंग अरविंद।
4: गुड मॉर्निंग आपको, गुड मॉर्निंग आरएम टू लिसनर्स। लेट्स चेक आउट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। इस बुलेटिन को शुरू करेंगे और कल से सिर्फ एक ही नाम है, रैपिडाश। रैपिडाश मेडन कप 2026 में सबसे रैपिड निकला, मेडन कप 2026 रैपिडाश के नाम। 2400 मीटर में घोड़दौड़ सीजन से सबसे बड़ी रेस रैपिडाश ने क्लासिक डबल पूरा किया। सुबिराज गजादर के इस चैंपियन पर सवार था पिएर कोने ओफा। अफ्रीकन चैंपियंस लीग में लक्वियो वेव्स ने साउथ अफ्रीका की चैंपियन टीम ओलांडो पायरेट्स को रोका, स्कोर 0-0। अब रिटर्न लेग साउथ अफ्रीका में। स्विमिंग बोत्सवाना में लगे जोन 4 चैंपियनशिप में हमारे तैराक 17 मेडल जीत पाए, 17 मेडल्स इन टोटल, 6 गोल्ड मेडल, 6 सिल्वर मेडल और 5 ब्रॉन्ज मेडल। आनिया प्रयाग 2 गोल्ड मेडल जीत पाई, फिर अलिसिया कोक्सुन भी 2 गोल्ड मेडल, ब्लाइजा जुएल 1 गोल्ड मेडल और लुकास चानचुएन चैंपियन बने। प्रीमियर लीग का डिफेंडिंग चैंपियन आर्सेनल अपना पहला सीरियस कठिन परीक्षा में पास हुआ। चैलेंजर टाइटल के दावेदार चेल्सी को 2-1 से हराकर आर्सेनल ने साबित कर दिखाया कि वो अपने टाइटल को बचा के रखेगा जी जान से। चेल्सी के लिए दूसरे मिनट में ही रोजर्स का गोल, फर्स्ट हाफ में ही कई हावर्ट्स ने इक्वलाइज किया और सेकंड हाफ में ओडेगार्ड का विनिंग गोल। आर्सेनल 2-1। आर्सेनल पहला मेजर टेस्ट में पास हुआ, आर्टेटा की इस टीम को रोकना आसान नहीं होगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड को भी 2-2 पसंद है, 3 मैचों में सब कुछ कर चुका है। पहले मैच में हार, दूसरे में जीत, बचा था ड्रॉ, वो भी पूरा हो गया। एवर्टन 2 मैनचेस्टर यूनाइटेड 2, 96 मिनट पर 96 मिनट इक्वलाइजर से यूनाइटेड 2 अंक गवा बैठा। पहला गोल ब्रायन एम्बुमो ने स्कोर किया सेकंड हाफ शुरू होते ही। एवर्टन ने इक्वलाइज किया, फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड को फिर से लीड दिलाई सेस्को ने, पर इंजरी टाइम में आर्सेनल और लियों का पूर्व खिलाड़ी मेटन नाइल्स हीरो बना एक क्रैक इक्वलाइजर के साथ। सो 3 मैचों के बाद मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल के पास है 9-9 अंक, हल सिटी के पास है 7 अंक, चेल्सी 6 अंक, ब्रेडफोर्ड, लिवरपूल, न्यूकासल यूनाइटेड, एवर्टन और लीड्स के पास है 5-5 अंक। मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी 11वें स्थान पे है 11th पोजीशन 4 अंकों के साथ। नीचे टोटनहम हॉटस्पर के पास है केवल 1 अंक, फुलहम और कोवेंट्री के पास भी 1 अंक नहीं

0: अब 12 सितंबर को एस्टन विला नॉटिंघम फॉरेस्ट, बोर्नमुथ ब्रेंटफोर्ड, चेल्सी हल सिटी, क्रिस्टल पैलेस इप्सविच, लिवरपूल अपने एनफील्ड रोड में होगा फुलहम के खिलाफ, टोटनहम हॉटस्पर एवर्टन, सन्डरलैंड आर्सेनल। सन्डरलैंड के लिए सैटरडे लेट मैच 11 बजे, और संडे धमाल फिर से, इस बार मैनचेस्टर डर्बी, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, ये 7:30 बजे संडे को। और उसी दिन कोवेंट्री खेलेगा ब्राइटन के खिलाफ, मंडे मैच लीड्स न्यूकासल यूनाइटेड। स्कॉटिश प्रीमियरशिप में हार्ट्स ने डंडी को 2-1 से हराया, सी जॉनस्टन 2 हिबेनियन 2। इंग्लैंड के लीग चैंपियनशिप में भी मैच ड्रॉ, बर्मिंगहम 2 वुल्व्स 2। स्पेन के ला लीगा में बार्सिलोना की शानदार जीत, 5-0 से वेलेंसिया को पछाड़ा, यमाल का डबल, लोपेज का एक गोल, राफीना का भी एक गोल रहा, एक गोल पेड्री ने स्कोर किया। अन्य नतीजे, अलावेज 5 ओसासुना 2, मलागा 0 लेवेंटे 0, स्पैनियल 1 एफसी सेविला 1। जर्मनी के बुंडेसलीगा में हैमबर्ग एसवी 0 माइंस 05-5, एंथ्राक्स फ्रैंकफर्ट 1 ओर्सबर्ग 4। इटली के सेरी आ में यूवेंटुस और एसी मिलान के बीच मैच ड्रॉ, 1-1, फ्रोजिनोने 3 वेनेजिया 2, पामा 1 मोन्जा 1, बोलोनिया 2 सासुलो 2। फ्रांस के लीग 1 में 3-2 स्ट्रासबूर 6, एंजे 1 रेन 2, मार्सेई की हार हुई होम मैदान में, पारी एफसी ने उसे 3-2 से हराया। चैंपियंस लीग कल और परसों खेले जाएंगे। चैंपियंस लीग के लिए कल के मैचों में मैनचेस्टर सिटी एवे होगा पोर्टो के मैदान में, रियल मैड्रिड इंटर मिलान, क्लब ब्रुज एस्टन विला, ये कल के 3 मैच हैं और 3 मैच खेले जाएंगे। परसों बुधवार वेंसडे से चैंपियंस लीग जारी रखा जाएगा, इनमें बार्सिलोना फेयेनोर्ड, स्टुटगार्ट वाइकिंग, लिवरपूल एथलेटिको मैड्रिड, नापोली आर्सेनल, पेरिस सेंट जर्मेन स्लोवान ब्रातिस्लावा, स्पोर्टिंग गलातासराय। मैनचेस्टर यूनाइटेड खेलेगा गुरुवार को थर्सडे मैच साबा टीम के खिलाफ। टेनिस, यूएस ओपन में कार्लोस अल्काराज का सफर जारी है, इस बार स्टेटमेंट विन पोल पर 6-4, 6-3, 6-4, इंजुरी से 4 महीने बाद अल्काराज की वापसी हुई है। कल अरीना सबालेंका, इवायोविच, अलेक्जेंडर वेरेव ये सब जीत पाए। लिंडा मुस्कोवा ने कोइस्टुक को हराया। नोआमी ओसाका, फ्रांसेस चाफोए जीत पाए, चाफोए ने मेदवेदेव को हराया। मेंसिच की हार लेरनेटियन के खिलाफ, रिबाकीना, मिकेलसन जीत पाए। आज इगा श्वातेक का मुकाबला जेंग से, सेरिंडोलो ब्लॉक्स, शेल्टन ने सिटसिपास को हराया, पेगुरा भी जीत पाई। फॉर्मूला 1 मोटर रेसिंग चैंपियनशिप में इटालियन ग्रांड प्री में किमी एंटोनेली की जीत हुई, ग्रिड से 19वें पोजीशन से निकलकर एंटोनेली जीत पाया। क्रिकेट, टी20 एशियन कप में श्रीलंका की टीम सेमीफाइनल में पहुंची, बांग्लादेश को हराकर भारतीय महिला टीम भी सेमीफाइनल में है। मॉरिशस में क्रिकेट, आइलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावागेंजा का ग्रांड फाइनल कॉन्टिनेंटल चीताज और कैंपस अब्रॉड लायंस के बीच होगा। कल 2 सेमीफाइनल खेले गए, कैंपस अब्रॉड लायंस 234 रन बना पाए टोमास कुक टाइगर्स के खिलाफ। दिलजीत मैन ऑफ द मैच रहा, 19 गेंदों में 49 रन। फाइनल इस संडे को एसएसआर नेशनल क्रिकेट ग्राउंड मापू में। सो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही, चलते चलते प्रमुख खबर आपको फिर से बता दें। रैपिडाश मेडन 2026 जीत गया, और आर्सेनल के लिए स्टेटमेंट विन चेल्सी पर 2-1 से, मैनचेस्टर यूनाइटेड 2 एवर्टन 2। किस्सा बाकी है, बहुत कुछ अभी देखना है, बहुत कुछ अभी बताना है। फिर मिलेंगे, तब तक हैव अ वंडरफुल टाइम लिसनिंग रेडियो मस्ती एंड अ गुड वीक अहेड। बाय बाय।
1: थैंक यू सो मच अरविंद।
2: दिस मैगजीन वाज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको, द फ्लो एक्सपर्ट।
3: Quality Déco finit ouvert ce nouveau showroom à Flac juste à côté MCB. Pour célébrer sa grande ouverture, la méga promo au plein de produits, morbe à portière 25 roupies, granit à portière 2000 roupies, lavabo, roche pour mur, robinetterie, sanitaire, toilette, baignoire et beaucoup les autres encore. Pas rater sa méga promo, vine découvrir un nouveau showroom de Quality Déco, Boulet Blanc à côté MCB, Flac, numéro téléphone 413 87 55 ou 413 10 53.

सबको के नमस्ते। संक्षिप्त समाचार सुना जा। ब्रिटेन के रक्षा राज्य मंत्री वेस्टियर स्ट्रीटिंग कल संडे टाइम्स के दे वाले को बयान में संकेत दिले हवन की ऊ मॉरिशस के शागोस द्वीप समूह सौंपे खातिर कटिबद्ध हवन। एकर से बर्तान एक बार फिर से अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संगे टकराव के नवा राह पर बाटे। ब्रिटेन समाचार चैनल जीबी न्यूज के देवल गले गो इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप गुरुवार के बिफे के लेके सरकार बगल से शागस द्वीप समूह के मॉरिशस के वापस सौंपे के योजना पर ही बतियालन वो बोलन की एगो बहुत ही खराब फैसला बाटे। ई बरिस के शुरुआत में केयर स्टार्मर के सरकार इस समझौता से संबंधित प्रक्रिया के वो बखत रोक दिले रहल जब राष्ट्रपति ट्रंप अमरीकी समर्थन वापस ले के फैसला कर ले रहलन। इस समझौता के तहत विशेष रूप से ई प्रावधान बाटे कि जेगो गौसिया के सैन्य अड्डा के उपयोग खातिर ब्रिटेन मॉरिशस के 101 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग के भुगतान करी 99 बरिस खातिर। गल बरिस के तुलना में ही बरिस के 2 सितंबर लेक देश के सीमा पर ही जान गवाई होला जना के संख्या जस्ती बाटे। 23 सबसे जस्ती जानलेवा सड़क हादसा होल बाटे यानी 29% के बढ़ोतरी होल बा। ई आंकड़ा चिंताजनक है काहे कि पेनाल्टी पॉइंट प्रणाली के लागू होला के बाद वो सड़क सीमा पर ही जानलेवा दुर्घटना के संख्या बढ़ली बाटे। गल 1 सितंबर के राष्ट्रसभा में सड़क संबंधी उल्लंघन खातिर एगो विधेयक पारित करल गल है जेकर तहत ठोस सजा और जुर्माना के प्रावधान करल गल है। एतिहाद एयरवेज हाली हाली मॉरिशस में अपन विमान के संचालन शुरू करे सकी। फिलहाल कोनो अंतिम रूप से तय फैसला नहीं बाटे बखेर अब इस संभावना पर ही विचार करल जात बाटे। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलामी बोले हवन की अबुधाबी

0: बी के सरकार गल कुछ बखत से ही बात परी रुचि दिखावत बाटे कि एयरलाइंस मॉरिशस खातिर अपन सेवा शुरू कर सकी। हालांकि खातिर बातचीत शुरू करल जाए के बाकी बाटे। नवा हवाई सेवा शुरू हुए से मॉरिशस के अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी यारी जस्ती मजबूत हो सकी। विदेश की खबर में भारत के राजधानी दिल्ली में गोपेंग गेस्ट कंपाउंड के 5 माला होला इमारत दहगल। कई गो जना के ई मलबा में फसल हो के संकेत बाटे। अभी लेकर 6 जना के मौत के पुष्टि करल गल है जबकि 11 जना के जीवित बचावल गल है। ई पूरा हादसा री बिल्डिंग के गिरे के एगो वीडियो फजर से वायरल होवत बाटे। तय रहल संक्षिप्त समाचार तोहर ध्यान खातिर धन्यवाद आज्ञा दिया नमस्ते।
1: NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: गुड मॉर्निंग जी, नमस्कार, स्वागत है आप सबों का मंडे 7th of September। कैसे हैं आप लोग? सुबह के 8:09, मैं वेदिता आपका साथ दे रही हूँ। प्रोग्राम चल रहा है मॉर्निंग बीट और यहाँ पर गाने हैं कमाल के, और आपने तो जिंदगी के मजे लेने ही लेने हैं भाई, क्योंकि जिंदगी है सिर्फ सांसें लेना नहीं बल्कि हर एक पल को एंजॉय करना। तो चलिए अभी के लिए मौसम कैसा रहेगा ये जानने के लिए मिलते हैं याचना से।
0: इट्स द वेदर ब्रॉडकास्ट विद विनर्स,
3: ओनली टू विनर्स।
4: स्थानीय स्तर पर मौसम का हाल कैसा रहेगा चलिए जानते हैं। हमारे इलाके पर अस्थिर हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह और दोपहर बाद पूर्वी इलाकों और ऊंचाइयों पर बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर बारिश होगी, कहीं कहीं पर तेज बारिश भी हो सकती है। ऊंचाइयों पर और कुछ अन्य जगहों पर कोहरा छाया रहेगा, जिस वजह से विजिबिलिटी कम रहेगी। रात को भी पूर्वी इलाकों, दक्षिणी इलाकों और सेंट्रल प्लेटों पर बादल घिरे रहेंगे और ऊंचाइयों पर कोहरा छाया रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 17 से 19, साहिली इलाकों पर 21 से 23, जबकि अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 20 से 22, साहिली इलाकों पर 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। अतिरिक्त जानकारी इस प्रकार है, मस्करीन्स के दक्षिण पश्चिम से एक जोरदार एंटीसाइक्लोन हमारे करीब आ रहा है, जिस वजह से मंगलवार 8 सितंबर से देश भर में तेज हवाएं बहेंगी और बारिश भी हो सकती हैं। कहीं कहीं पर हवा के झोंके 75 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। इन ठंडी हवाओं के कारण दिन के दौरान 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा मस्करीन्स के दक्षिण पश्चिम से तेज हवाएं बहेंगी और ऊंची लहरें भी उठेंगी। मंगलवार सुबह से दूर समंदर और साथ में पश्चिमी और दक्षिणी तटों के पास न जाने की सलाह दी जा रही है। आज सुबह सूर्योदय 6:13 पर, शाम को सूर्यास्त 6:02 पर होगा।
0: Your weather forecast on RM2.
1: Radio Musty.
5: Avis à tous les amoureux des animaux! 17 au 24 septembre, rendez-vous chez Winners pour profiter de super offres sur une sélection de produits pour vos compagnons avec vos grandes marques préférées. Et parce qu'il y en a pour toute la famille, profitez également de nombreuses offres sur une sélection de produits du quotidien. Alors, ne manquez pas cette occasion de faire plaisir à vos petits compagnons et à toute la famille!
6: On est tous Winners!
0: Morning beat. A good beat for your morning show. James.
1: RM2 Radio Musty in the mix.

0: c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
2: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.
4: दोस्तों, हम में से कितने सारे लोग हैं जो जीना भूल गए हैं। सांसें तो लेते हैं लेकिन ये नहीं पता कि ज़िंदगी में करना क्या है। बस सांसें ले रहे हैं, काम किए जा रहे हैं, बस एक रोबोट जैसी लाइफ बन गई है, एक रूटीन हो गया है। ये करना है, ये करना है, ये करना है। ज़िंदगी को जैसे रेस बना के रख दिया है कि कौन आगे जाएगा, कौन पीछे छूट गया। इंसान ने उन पलों को जीना छोड़ दिया, बस वो सांसें ले रहा है। सिर्फ सांसों लेना जो है उसको ज़िंदगी नहीं कहते। ज़िंदगी वो होती है जो आप अपनों के साथ बिताते हैं। आप ये जो रेस लगा रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, आपको कहाँ तक ले जाएगा। इंसान जो है बस यही सोच रहा है कि मैं उससे ज़्यादा कर लूँ, उससे ज़्यादा कमा लूँ। और फिर उसके बाद जब वो मुड़ के देखता है तो अपने साथ पैसे तो ले आता है लेकिन साथ में कितनी सारी बीमारियाँ ले आता है। और जो पैसे वो उम्र भर इतने मेहनत से कमाता है उसको फाइनली हॉस्पिटल में जाके भरना पड़ता है। बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गई, आर्टरी ब्लॉक हो गई, किसी को कैंसर हो गया, इतने सारी बीमारियों के साथ फिर वो रियलाइज़ करता है कि ज़िंदगी तो मैंने जी ही नहीं। इसीलिए हमेशा कहते हैं ज़िंदगी जो है अभी है, ये पल है, अगर इसको पल को नहीं जिया तो फिर आपने लाइफ में क्या किया।
0: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
2: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.

0: एंड वी से वेरी गुड मॉर्निंग टू डाना जो कोमोदिल से हमें सुन रही है. वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड थैंक यू सो मच राखी फॉर ज्वाइनिंग मी एंड अविनाश. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. आई होप कि आज का दिन आपके लिए एकदम कमाल का जबरदस्त हो.
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: चलिए तो यहाँ पर आपके लिए हम एक गेम लेकर आए हैं और आपको हम बता दें आपको क्या मिल रहा है. सो गेट रेडी टू प्ले एंड विन विद RM2. दो एंट्री टिकट हैं द ग्रैंड फिनाली ऑफ फोर्टिस ब्यूटी विद द नोबल पर्पोस मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड मॉरिशस 2026. ये हो रहा है सैटरडे 12th ऑफ सितंबर को एज फ्रॉम 7:30 PM एट थ्रियानो कन्वेंशन सेंटर. और आपको यानी जीतने वाले को मिलेगा दो एंट्री टिकट. तो आपको मुझे बताना है, जी हाँ आपको मुझे बताना है कि सुष्मिता सेन किस साल में मिस यूनिवर्स बनी थी. जी हाँ, सुष्मिता सेन किस साल में मिस यूनिवर्स बनी थी, आपको मुझे बताना है ऑन 5491294.

0: Good Beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: यस, चलिए यहाँ पर आपके लिए हम लेकर आए सवाल। हमने आपसे पूछा था, आप मुझे ये बताइए कि सुष्मिता सेन जो है वो किस साल में बनी थी मिस वर्ल्ड, नहीं मिस यूनिवर्स। मिस वर्ल्ड तो कोई और थी भाई, उनकी तो आंखें अलग थी। चलिए भाई, यहाँ पर हमने आपसे सवाल किया, आपने मुझे जवाब दिया एंड द राइट आंसर इज 1994। और यहाँ सही जवाब देकर विनर कौन बने हैं, चलिए ये भी जान लेते हैं। ओके, जवाब तो सबने सही दिया है, लेकिन लकी ड्रॉ के बाद यहाँ पर नाम आता है भारती बगालू। आप रहते तो दोस्त, कंग्रेचुलेशंस, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आपको मिल रहा है 2 entry tickets फॉर द ग्रैंड फिनाले ऑफ 40th ब्यूटी विद अ नोबल पर्पोज मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड मॉरिशस 2026 जो हो रहा है सैटरडे 12th of September को आज फ्रॉम 7:30 PM एट थ्रियानो कन्वेंशन सेंटर। तो आपसे कहूंगी कि आप प्लीज अपना आई डी कार्ड लेकर एमबीसी आए मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 बजे से सुपहर के 3:30 बजे के बीच। प्लीज ब्रिंग योर आईडी और आकर अपना जो टिकट है यहां से कलेक्ट कर लीजिए। तो जिनकी जीत नहीं हुई उनको कहेंगे घबराएगा नहीं, एक और गेम के साथ आते हैं थोड़ी देर में।
3: नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ट्यून इन टू द वेरी बेस्ट रेडियो।

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: आपने येलू करके नाचेंगे तो अगर आप भी येलू करके नाचना चाहते हैं तो आपका हम वेलकम करते हैं। हमारा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं इस समय रेडियो मस्ती पर मॉर्निंग बीट, और चलिए इसी के साथ यहां पर अब कुछ और आपके लिए लेकर आए हैं, और आपके लिए यहां पर होगा इनाम। जी हां, इनाम जीतेगा कौन,

भाई वही जो खेलेगा और खेलेगा कौन भाई सब खेलेंगे जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैं आपको बता दूं कि यहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं क्या ओके सो यू हैव टिकट्स ओके टिकट्स हैं आपके लिए और कौन सा टिकट है आपके पास आएगा 500 रुपीस का गिफ्ट वाउचर और ये है सैफ्रन गिल की तरफ से अब ये आपको कैसे मिलेगा वेल ऑल यू हैव टू डू इज टू कंटिन्यू लिसनिंग

MYOP. This thrilling season kicked off on 1st August with six power pack themes: Continental, AMG, APP, Campus Abroad, One Health and Thomas Cook. तो चलिए यहाँ पर आप लोग भी हमारे साथ join कर सकते हैं for high energy cricket fun and excitement. तो चलिए अपने favorite team को cheer करने के लिए आप लोग आइए, enjoy the food and music and साथ में कई सारे gifts भी मिलेंगे आपको. और अभी फिलहाल रेडियो मस्ती पर आपके लिए जो हम गेम लेकर आए हैं उसके चलते आपको 500 रुपीस का एक वाउचर मिलेगा और ये होगा सैफरन किल की तरफ से. मैं आपको बता दूं कि रेडियो मस्ती जो है लाइव होंगे फ्रॉम 11 टिल 2:30 पीएम. यहाँ पर आपको अगर ये वाउचर चाहिए तो आपको मुझे ये बताना है. जी, आपको मुझे ये बताना है कि सुशांत सिंह राजपूत जो हैं उन्होंने एक 2013 में अपने करियर की शुरुआत एक फिल्म के साथ की थी, वहाँ पर भी क्रिकेट थी, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही फेमस क्रिकेटर के बायोपिक पे एक किरदार निभाया था. एंड आपको मुझे बताना है कि 2016 की वो कौन सी मूवी है. जी हाँ, ये मूवी 2016 में आई थी. आपको मुझे बताना है 2016 की ये कौन सी मूवी है ऑन 549 and 1294.

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: जीते जीते हमको जीना आ जाएगा, तो चलिए यहाँ पर हम आपसे यही कहेंगे कि ज़िंदगी जो है बहुत खूबसूरत चीज़ है जो हमें ऊपर वाले ने दी है। स्ट्रेस लेना, परेशान होना, इन सब चीज़ों से आप अपनी ज़िंदगी को अफेक्ट कर रहे हो, इसलिए खुश रहो, हमारे गेम में पार्टिसिपेट करो, इनाम जीतो और ऐसे चीखो चिल्लाओ जैसे आपने कोई लाइफ में बहुत बड़ी ट्रॉफी जीत ली है। ये खुशियाँ जो होती है ना, छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, आपने पार्टिसिपेट किया। चलो देखते हैं लकी ड्रॉ के बाद किसका नाम आता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, हमने आपसे पूछा था, सुशांत सिंह राजपूत ने एक बायोपिक पे काम किया था इन अ मूवी, और ये जो मूवी है आई थी 2016 में। वैसे पहले भी वो उनकी जो पहली फिल्म थी काय पूछे, उसमें था कुछ यू नो रिलेटेड टू क्रिकेट, एंड उनकी जो मूवी थी जो उन्होंने किया था 2016 में वो है एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। एंड बस सही जवाब आपने हमें दे दिया, लेकिन विनर कौन है चलिए जानते हैं। हेलो, कहाँ गए? ठीक है, तो यहाँ पर आपने जवाब दिया है सही जवाब, और अनुष्का दुखी फ्रॉम पोर्टलुइस, आपको हम बता दें कि आप लकी ड्रॉ के बाद हमारे विनर रही हैं और आपको मिल रहा है क्या मिल रहा है वैसे आपको मिल रहा है यहाँ पर सैफरन गिल्ड की तरफ से 500 रुपीज़ का एक वाउचर टू लव इंडियन फूड, आप जाकर वहाँ एंजॉय कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो एंजॉय द डिलीशियस खाना, और साथ में क्रिकेट मत भूलिएगा, अभी जो आइलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावेगांजा सीजन 4 होने वाला है, द ग्रैंड फिनाले ऑन संडे 13th ऑफ सितंबर, एसएसआर नेशनल क्रिकेट ग्राउंड मापू, मैच शुरू होंगे सुबह 10 बजे, ऑर्गेनाइज बाय द मॉरिशस क्रिकेट फेडरेशन इन पार्टनरशिप विद द इंडियन ऑयल सर्वो एंड को स्पॉन्सर्ड बाय MYOP, this thrilling season cricket off on 1st August, और यहाँ पर 6 जो टीम्स थी उन्होंने प्ले किया, कॉन्टिनेंटल, AMG, APP, Campus Abroad, One Health and Thomas Cook. तो चलिए आप भी enjoy कीजिए, ये program live होगा और ये होगा 11 से 2:30 बजे के बीच। वहाँ पर जाकर आप सिर्फ खाना ही नहीं enjoy करेंगे बल्कि exciting gifts भी आपको मिलेंगे। तो जब हम बात कर रहे थे इस खूबसूरत movie की जो कि है MS धोनी, उस फिल्म का एक बहुत ही प्यारा सा गाना है पलक मुचल की आवाज़ में, and I guess you gonna love it.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: चलो भाई, हमारी नैया आ गई है और इसमें छैया छैया करके अब हमारे जाने का टाइम हो गया है। हमारे बाद आ रही है पूनम लेकर आपके लिए मॉर्निंग मस्ती। आपसे मुलाकात कल सुबह 7 बजे, भूलिएगा नहीं, आपके अपने मॉर्निंग बीट में। थैंक यू सो मच, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसे अपना प्यार बरसाते रहिए, ऐसे ही खुश रह कीजिए एंड कल मुलाकात करते हैं। बाय बाय।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: टाइम चेक सुबह के 9 बज रहे हैं।
4: चलिए सुबह के ठीक 9 बजे हैं। सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे याचना। नमस्कार आपको।
5: नमस्कार नीतू शाह, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। ब्रिटेन के रक्षा राज्य मंत्री वेस रीटिंग ने कल संडे टाइम्स को दिए एक बयान में संकेत किया कि वे मॉरिशस गणराज्य को शागस द्वीप समूह सौंपने के लिए कटिबद्ध हैं। इससे ब्रिटेन एक बार फिर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ टकराव की नई राह पर दिखाई दे रहा है। ब्रिटेन समाचार चैनल जीबी न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को लेबर सरकार द्वारा शागस द्वीप समूह को मॉरिशस को वापस सौंपने की योजना पर एक बार फिर हमला डाला। उन्होंने कहा कि ये फैसला गलत है। इस साल की शुरुआत में केयर स्टार्मर की सरकार ने इस समझौते से संबंधित प्रक्रिया को उस समय रोक दिया था जब राष्ट्रपति ट्रंप ने अमरीकी समर्थन वापस लेने का फैसला किया था। इस समझौते के तहत विशेष रूप से यह प्रावधान था कि जेगोगोसिया के सैन्य अड्डे के उपयोग के लिए ब्रिटेन मॉरिशस को 99 सालों तक हर साल 101 मिलियन पाउंड स्टर्लिन का भुगतान करेगा। पिछले साल की तुलना में इस साल 2 सितंबर तक देश की सड़कों पर जान गंवाने वालों की संख्या ज्यादा है। 23 अतिरिक्त ज्यादा जानलेवा सड़क हादसे पेश आए हैं, यानी 29% की वृद्धि हुई है। ये आंकड़े चिंताजनक हैं। पेनल्टी पॉइंट प्रणाली के लागू होने के बाद भी सड़कों पर जानलेवा दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या के चलते 1 सितंबर को राष्ट्रसभा में सड़क संबंधी उल्लंघनों को लेकर एक विधेयक पारित किया गया जिसके तहत ठोस सजा और जुर्मानों का प्रावधान है। नेशनल क्राइम एजेंसी को एक कानूनी ढांचा प्रदान करने की दिशा में 9 विधेयकों का प्रावधान है। शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में इस पर गौर किया गया। इन विधेयकों में संविधान में एक सुधार, नेशनल क्राइम एजेंसी बिल और साथ में वित्तीय अपराधों, संपत्तियों की प्राप्ति और जांचकर्ताओं की मदद करने वालों से संबंधित नियम भी इसमें शामिल किए गए हैं। अगला चरण है राष्ट्रसभा में इन विधेयकों को पेश किए जाने से पहले कैबिनेट के स्तर पर इनका गहन अध्ययन करना। और क्या एतिहाद एयरवेज जल्द ही मॉरिशस में अपने विमानों का संचालन शुरू कर सकती हैं। फिलहाल कुछ भी अंतिम रूप से तय नहीं हुआ है, लेकिन इस पर बातचीत की संभावना बनी हुई है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने बताया कि अबू धाबी की सरकार पिछले कुछ समय से इस बात में रुचि दिखा रही है कि एयरलाइंस मॉरिशस के लिए अपनी सेवाएं शुरू करें। हालांकि इसके लिए अब बातचीत शुरू की जानी बाकी है। नई हवाई सेवा शुरू होने से मॉरिशस की अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी और ज़्यादा मजबूत हो सकती है, साथ ही इससे खाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख एयरलाइंस के बीच प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन भी और बढ़ सकती है। विदेशी समाचारों में भारत की राजधानी दिल्ली में विद्यार्थियों के एक पेइंग गेस्ट कंपाउंड की 5 माले की इमारत कल दह गई। कई लोगों के इसके मलबे में फंसे रहने की आशंका जताई जा रही है। अभी तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है और 15 लोगों को जीवित बचाया जा सका है, उन्हें अस्पताल ले जाया गया।

0: इस पूरे हादसे और बिल्डिंग के गिरने की वीडियो कल से काफ़ी वायरल हो रही हैं। दिल्ली के मेयर ने 4 मंजिलों से ऊपर वाली सभी अवैध इमारतों पर तुरंत सील लगाने की घोषणा की। अधिकारियों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण बेसमेंट में पानी जमा हो गया था, जिस वजह से इमारत की नींव कमज़ोर पड़ गई थी। और इंडोनेशिया में अनाका खाताओ ज्वालामुखी के राख के कारण जकार्ता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, जिस वजह से करीब 1,70,000 यात्री वहीं फंसे रह गए हैं। इनमें हजारों विदेशी शामिल हैं। शुक्रवार देर रात ये ज्वालामुखी लावा उगलने लगी और आसपास के इलाकों में जल्द ही राख का धुआं छा गया। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings. Radio Musty.

0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब। देखिए भाई, कहते हैं ना कि जब मंडे आ जाता है तो फिर तो बस सारी बातें अलग हो जाती हैं, और साथ में अगर छा जाए, कैलेंडर बदल जाए, वीक बदल जाए, तो और भी मस्ती करने का दिल करता है। तो हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है और आप लोग का कई लोग काम पर पहुंच चुके होंगे, और अभी कई लोगों के अभी भी भागा दौड़ी चल रही होगी, तो हम यही कहेंगे भागा दौड़ी थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, गानों के साथ जुड़िए, RM2 रेडियो मस्ती के साथ जुड़िए। मैं हूँ आपके साथ पूनम, इस समय बस आपको यही कहना चाहती हूँ, हाउ आर यू, कैसे हो, ठीक हो, इंजॉय कीजिए इस गाने को, और उसके बाद वापस आते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं।
0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: नौ बजकर 20 मिनट हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हुए हैं अपने ही प्रोग्राम मस्ती मॉर्निंग के साथ और मैं इस समय आपका साथ दे रही हूं पूनम। तो यहां पर बहुत ही प्यारे से गाने चल रहे हैं और मुझे पता है कि आप भी ड्राइव कर रहे होंगे या कई लोग अपने काम पर पहुंच चुके होंगे, वहां पर भी थोड़ा सा सोच रहे होंगे अरे चाय पिया जाए या कॉफ़ी पिया जाए। पर हम आपको इतना ही कहेंगे चाय पीजिए या कॉफ़ी, बट इन्जॉय करते हुए पीजिए, स्माइल करते हुए पीजिए। और जो आपके सामने फाइल्स पड़ी हैं या लैपटॉप खोल के बैठे हुए हैं वहाँ पर सोच रहे हैं किसको मेल करनी है किसको नहीं करनी है, एक एक करके सब आपका हम करेंगे। मुझे पता है अभी बहुत सारे घंटे हैं जब आपका थोड़ा सा रिलैक्स ब्रेन रिलैक्स होगा ना तो आप देखना ऐसे झटपट सारे काम ख़त्म कर लोगे। और जो हमारी लेडीज़ हैं जो कि कभी रुकना ही नहीं चाहती, वो बोलती है एक काम के बाद दूसरा काम, दूसरे के बाद तीसरा काम, तो थोड़ा थोड़ा सा काम करते रहिए, अपना प्लान कीजिए, ये काम अभी करूँगी उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी 5-7 मिनट 10 मिनट, उसके बाद थोड़ा सा चाय वाय लेते जाइए, इंजॉय कीजिए गानों को।
0: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: 9:31 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ यानी कि मस्ती मॉर्निंग के साथ में। अगर आपको भी कोई मैसेज करना है तो आप कर सकते हैं, कोई स्पेशल डेडिकेशन है किसी के लिए तो भेज सकते हैं 5499124 पर। कई बार ऐसा होता है कि डे याद होता है, मंथ याद होता है, बट जिस दिन किसी का बर्थडे होता है, किसी की एनिवर्सरी होती है, उसी दिन भूल जाते हैं। एक दिन पहले तक याद होगा तो दिमाग पे जोर डालो थोड़ा सा और एहसास करो किसी अपने का कहीं बर्थडे या एनिवर्सरी तो नहीं भूल गए। अगर भूल गए हैं तो बस फटाफट से हमें मैसेज कीजिए क्योंकि हम यहाँ से उसके लिए विशेज भेजेंगे और हम कहेंगे कि देखो उसको आपका बर्थडे याद था, बस सिर्फ दिखा रहे थे कि याद नहीं है। और दूसरे के दिल में भी होता है अभी तक उसने मुझे मैसेज नहीं किया या कॉल नहीं किया, तो बस अपना थोड़ा सा ध्यान दीजिए और हम यही कहेंगे। थोड़ी देर में हम खेलेंगे आपके साथ प्यारी सी गेम, बिल्कुल पास आ जाइए और देखते हैं कि कौन जीतता है इस गेम में। तो ये गाने के बाद हम खेलते हैं आपके साथ प्यारी सी गेम।
0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: भैया हम आपके लिए बैंड बाजा बारात तो नहीं लेकर आए, पर हाँ आपके लिए एक सवाल जरूर लेकर आए हैं। चलिए RM2 पर एक सवाल आपके लिए लेकर आए हैं और आप जीत सकते हैं शानदार एक मौका जहाँ पर आपको मिलेगा दो एंट्री टिकट्स ग्रैंड फिनाले की। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड मॉरिशस 2026 का ग्रैंड फिनाले होने जा रहा है सैटरडे 12 सितंबर को, यानी कि 12 सितंबर थ्रियानो कन्वेंशन सेंटर में, और आप जीत सकेंगे टू एंट्री टिकट्स। तो रेडी हो जाइए, सवाल बहुत ही प्यारा सा है, छोटा सा है, मुझे पता है, बिल्कुल रेडियो के पास आ जाइएगा। जिनको भी ये दो एंट्री टिकट्स चाहिए, तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड की शुरुआत किस देश से हुई थी? मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड की शुरुआत किस देश से हुई थी? ए ऑप्शन भी दे देते हैं आपको, भारत यानी कि इंडिया, बी अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स, सी मॉरिशस। सही जवाब देने के लिए आपको मैसेज करना है 5491294 पर, जहां पर आपको अपना राइट पते के साथ आपको और टेलीफोन नंबर के साथ आपको भेजना है। ये नहीं फटाफट से बस आंसर देखा और भेज दिया, तभी हम आपको ले पाएंगे। और साथ में आपको ये भी होगा कि जब आप ये विन करेंगे तो आपको एक मूड भी बड़ा सा अपलिफ्ट हो जाएगा। तो इन्जॉय कीजिए गाने को, तब तक जुड़ते हैं थोड़ी देर में आपके साथ, आपके आंसर के साथ।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: 9:44 हो चुके हैं दोस्तों, आप जुड़े हैं मस्ती मॉर्निंग के साथ में और हमने प्यारा सा आपसे क्वेश्चन किया था, बहुत ही छोटा सा था, आप जीत सकते थे RM2 के साथ 2 एंट्री टिकट्स मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड मॉरिशस 2026 के ग्रैंड फिनाले की, जो कि होने जा रहा है 12 सितंबर को थ्रियानो कन्वेंशन सेंटर में। और हमने आपसे क्वेश्चन किया था कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड की शुरुआत किस देश से हुई थी। हमने ऑप्शन दिया था आपको, भारत, इंडिया, बी अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, सी मॉरिशस। पर सही जवाब

बहुत कम लोग दे पाए, पर यस रॉन्ग आंसर बहुत लोगों ने दिया, पर फिर भी हम आपको बता देते हैं कौन जीते हैं। पहले तो आंसर बताते हैं और फिर बताते हैं कौन जीते हैं। जी सही जवाब था अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स से मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड वहां से शुरू हुआ था। और अब हमारी विनर कौन बनी है? यस, हमारी विनर बनी है प्रिया कथरबोन से। थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने हमारे साथ एक तो गेम खेली, उसके बाद राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं, जो नहीं जीत पाए, कोई बात नहीं, दिल छोटा नहीं करते, अभी तो बहुत सारी चीज़ें चलेंगी साइड बाय साइड और बहुत सारे आरजेज लेकर आएंगे आपके लिए बहुत सारी गेम्स। तो हम आपको बोलेंगे साथ देते रहिए, इंजॉय करते रहिए अपने गानों को, और थोड़ी देर में हम सुन पाएंगे आपका हर्स को।

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: पलक से हम कुछ लेकर आए ना आए, पर हाँ यस, हम आपके लिए हॉरोस्कोप जरूर लेकर आए हैं। तो सबसे पहले जानते हैं आज के लिए क्या है लेकर आई ये राशि।
2: एरीज मेष राशि,
1: आज काम में आपकी तेजी फायदा देगी। कोई नई जिम्मेदारी आपके हुनर को सामने ला सकती है। साथ काम करने वालों को आप ही हौसला बढ़ाइए। लकी कलर है रेड, लकी नंबर है 5।
2: टॉरस वृषभ राशि,
1: आज पैसा और काम की प्लानिंग अच्छी रहेगी। कोई छोटा फैसला आगे चलकर फायदा दे सकता है। बिजी रहें लेकिन खाना समय पर जरूर खाइएगा। लकी कलर है ग्रीन, लकी नंबर है 6।
2: जेमिनी मिथुन राशि,
1: आज आपकी बात लोगों को पसंद आएगी। मीटिंग हो या बातचीत, आपकी बात साफ रखिए। किसी पुराने दोस्त का हाल भी पूछ लीजिए। लकी कलर है येलो, लकी नंबर है 3।
2: कैंसर कर्क राशि,
1: आज घर और काम दोनों

0: तरफ अच्छा तालमेल रहेगा, किसी अपने की प्यारी सी बात आपका मूड बना सकती है। आप भी कोई थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर और एक्स्ट्रा एफर्ट्स उस पर्सन के लिए जरूर रखिएगा। लकी कलर है व्हाइट, लकी नंबर है 2।
1: लियो सिंह राशि,
0: आप थोड़ा आगे बढ़कर अपनी काबिलियत दिखाइए। आपके काम की तारीफ सुनने को मिल सकती है, सक्सेस मिले तो खुशी अपनी टीम के साथ भी बांटिए। लकी कलर है ऑरेंज, लकी नंबर है 1।
1: वर्गो कन्या राशि,
0: आज आपकी प्लानिंग काम कर सकती है, एक पेंडिंग काम पूरा करके आपको राहत मिलेगी। काम के बीच पानी और छोटा छोटा सा ब्रेक जरूर लेते रहिए। लकी कलर है ब्लू, लकी नंबर है 4।
1: लिब्रा तुला राशि,
0: आज लोगों के साथ मिलकर काम करना फायदेमंद रहेगा। आपकी वो मदद जो कर रहे हैं उससे आपके काम बहुत आसान हो जाएंगे। अच्छे शब्द बोलिए, बहुत अच्छा असर रहेगा उन पे और उनसे आपको रिटर्न में बहुत प्यार मिलेगा। लकी कलर है पिंक, लकी नंबर है 7।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
0: आज कोई नया आइडिया करियर में काम आ सकता है, तो सही लगे उस पर पहला कदम बढ़ाइए। दिन भर खुद को बहुत सीरियस मत रखिए। लकी कलर है पर्पल, लकी नंबर है 8।
1: सजिटेरियस धनुराशि,
0: आज कुछ नया सीखने का अच्छा मौका मिल सकता है। आपकी एनर्जी काम को जल्दी आगे बढ़ाएगी। अपनी खुशी से दूसरों को भी शामिल कीजिए और आपकी जो खुशी है उसमें जब दूसरे शामिल हो जाएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और उनको भी अच्छा लगेगा। हो सकता है वो दोस्त हों और परिवार भी हो सकता है। तो लकी कलर बनेगा आपका आज का ऑरेंज, लकी नंबर है 9।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
0: आज आपकी मेहनत लोगों की नज़र में आएगी। अपने लक्ष्य पर ध्यान रखिए, काम बनते जाएंगे। शाम के लिए थोड़ा फैमिली टाइम ज़रूर बचा कर रखिएगा, ज़्यादा थकिएगा मत, जिससे कि आप उनको अच्छा टाइम दे सकें। फैमिली आपके प्यार को और आपके टाइम के लिए जो तरस रही है उनको ज़रूर मौका मिलना चाहिए। लकी कलर बनेगा आपका ग्रीन, लकी नंबर है 6।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: आज आपका अलग तरीका काम आ सकता है। आपके आइडियाज़ खुलकर सबको पसंद आएंगे, इसलिए खुलकर आप सबको अपने आइडियाज़ ज़रूर बताएं, कहीं पर पेपर भी लिखें। टीम जो है आपकी तारीफ भी कर रहा है पीठ पीछे और आपको कोशिश करने के लिए भी दे रहा है कि आप थोड़ा सा एफर्ट ज़रूर डालिए और कोशिश करके आगे बढ़ते जाइए। लकी कलर बनेगा आपका आज ब्लू, लकी नंबर है 5।
1: पाइसेस मीन राशि,
0: आज आपकी शान सोच अच्छे फैसले करवाएगी। किसी की छोटी सी मदद करके आपको अच्छा महसूस होगा। दूसरों की केयर करते रहिए जैसे आप हमेशा करते आ रहे हैं और खुद के लिए भी थोड़ा सा समय ज़रूर दीजिए। लकी कलर बनेगा पिंक, लकी नंबर है 3। तो दोस्तों, मंडे की शुरुआत है और काम में जोश है, दिल से खुश रहिए, रिश्तों में केयर बनाते रहिए, प्यार दिखाइए। मस्ती मॉर्निंग आपको सिर्फ यही कहता है, मैं हूँ आपके साथ पूनम।
2: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
3: आओ एक भीगी हुई सी कहानी सुनाता हूँ। जब आसमान से बूंदे नहीं मोहब्बत बरसी थी, बरसात ने ऐसी धुन छेड़ी जिसके लिए जिंदगी सदियों तरसी थी।
4: अरे सुन सुन।
5: यस मां।
4: एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, ये फोटो देख ले, मुझे तो लड़की बहुत पसंद है।
5: माँ मैं बाद में देख लूंगा, बहुत लेट हो रहा हूँ।
4: अरे सुन सुन, एक बार देख तो ले।

0: मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती
3: आरएम2 रेडियो मस्ती।

0: सभी को नमस्कार। आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार याचना से। याचना आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। पिछले साल की तुलना में इस साल 2 सितंबर तक देश की सड़कों पर जान गंवाने वालों की संख्या ज्यादा रही। 23 ज्यादा जानलेवा सड़क हादसे पेश आए हैं, 29% की वृद्धि हुई है। ये आंकड़े चिंताजनक हैं। पेनल्टी पॉइंट प्रणाली के लागू होने के बाद भी सड़कों पर जानलेवा दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या के चलते पहली सितंबर को राष्ट्रसभा में सड़क संबंधी उल्लंघनों को लेकर एक विधेयक पारित किया गया है, जिसके तहत ठोस सजा और जुर्मानों का प्रावधान है। 3 सितंबर को लॉन्च किया गया बॉम्बस्टाट्स बैंक ऑफ मॉरिशस के आर्थिक और वित्तीय आंकड़ों को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ता है। ये नया टूल औपचारिक आंकड़ों को आसानी से ढूंढ निकालने, देखने और उपयोग करने की सुविधा देता है, लेकिन तकनीकी पहलू से आगे बढ़कर सवाल ये है कि मॉरिशस की अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करने वालों के लिए वास्तव में इससे क्या बदलाव आएगा। उनका कहना है कि आंकड़ों को विषय या समय अवधि के आधार पर देखा जा सकता है और उपभोक्ताओं के लिए उपयोगकर्ताओं की ज़रूरतों के अनुसार उन्हें डाउनलोड भी किया जा सकता है। नेशनल क्राइम एजेंसी की एक कानूनी ढांचा प्रदान करने की दिशा में 9 विधेयकों का प्रावधान किया जा रहा है। शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में इस पर गौर किया गया। इन विधेयकों में संविधान में सुधार, नेशनल क्राइम एजेंसी बिल और साथ में वित्तीय अपराधों, संपत्तियों की प्राप्ति और जांचकर्ताओं की मदद करने वालों से संबंधित नियम भी शामिल हैं। अगला चरण है राष्ट्रसभा में इन विधेयकों को पेश किए जाने से पहले कैबिनेट के स्तर पर इनका गहन अध्ययन करना। विदेश में भारत की राजधानी दिल्ली में विद्यार्थियों के एक पेइंग गेस्ट कंपाउंड में 5 माले की इमारत ढह गई। कई लोगों के इसके मलबे में फंसे रहने की आशंका है। कल से बचाव अभियान जारी है। अभी तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 15 लोगों को जीवित बचाया जा सका। इस पूरे हादसे और बिल्डिंग के गिरने की वीडियो कल से काफ़ी वायरल हो रही है। दिल्ली के मेयर ने 4 मंजिलों से ऊपर वाली सभी अवैध इमारतों पर तुरंत सील लगाने की घोषणा की। अधिकारियों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण बेसमेंट में पानी जमा हो गया था, जिस वजह से इमारत की नींव कमजोर पड़ गई। ये थी अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार। भंजन रोड सुहिनाम में अठहत्तर साल के 78 ईयर्स ओल्ड के श्री चंद्रिका दत्त मंगल जो चंद्रिका के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके मकान भंजन रोड सुहिनाम से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वाभा सुहिनाम की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11 AM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमें हमदर्दी है।
2: NBC Radio.tv. Welcome to

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: 10:10 हो चुके हैं दोस्तों, आप जुड़े हैं अपने ही मस्ती मॉर्निंग प्रोग्राम के साथ। इस समय आपका साथ दे रही है पूनम। तो मैं तो आपको इतना ही कहूँगी कि जब मंडे आता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें बहुत मतलब सही हो रही होती हैं। जैसे अर्ली मॉर्निंग में आराम से उठते हो, एक्साइटेड होते हो, काम पे जाना है, जो भी आपने काम चुना होता है उसको आपने अच्छे से करना होता है। बट कई बार बहुत थकान लगती है, क्योंकि सैटरडे संडे बहुत काम कर लिया होता है और मंडे दिल करता है अभी मत कोई उठाओ, पर फिर भी जानबूझ के पता है ऑफिस में डांट पड़ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इसलिए आ जाते हैं। पर फिर भी एहसास होता है थोड़ा सा, भाई मूड नहीं बन रहा। तो मूड बनाने के लिए क्या करें, हम आपको सिर्फ इतना कहेंगे गरम गरम सी प्यारी सी कॉफ़ी पीजिए, चाय पीजिए, थोड़े दिमाग को रिलैक्स कीजिए और होने दीजिए, क्योंकि ये भी तो एक टाइम है ना। अभी तो पिकअप पकड़ेगा, अभी तो बॉडी को रियलाइज़ होगा कि भैया छुट्टी हो गई है, काम पर आ गए हो, तो थोड़ा सा काम करो, आंखें खोलो, आंखों को थोड़ी सी एक एक्सरसाइज दो, थोड़ी सी रोल रोल करो, अप एंड डाउन देखो, थोड़ा सा इससे भी एनर्जी आती है, थोड़े हाथों को शेक करो, थोड़ी सी चेयर से उठो और कहीं इधर उधर मूव करो। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लगता है कि मतलब इससे क्या होगा, अरे नहीं बहुत कुछ होगा, बस एक बार आप करके देखो। अगर आपको बिल्कुल एनर्जी नहीं आ रही है ना, तो ये ट्राई करोगे, आपको सच में बोलोगे, मैसेज करोगे 5499124 पर कि हमको एनर्जी आई, आप मैसेज करोगे। तो इंजॉय कीजिए गानों को और साथ में रहिए हमारे आरएम2 रेडियो मस्ती के साथ।
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत हवा तब भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे कि हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा, साड़ी, जोधपुरी, क्रॉप टॉप, शेरवानी, सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोड़ी फैशन, रॉयल रोड, पॉपुलर मिसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799-3782। हलकोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और कारीते।
0: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: 10:23 हो चुके हैं दोस्तों, आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम मस्ती मॉर्निंग के साथ और इस समय मैं हूं आपके साथ पूनम। और यहां पर बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि प्लीज़ कुछ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बारे में बता दें, तो हम आपको लिए बहुत ही प्यारा ब्रेकफास्ट कह लीजिए या लंच के लिए कह लीजिए या इसे पूरी डाइट कह लीजिए, ये आपके ऊपर है। हम आपको सिंपल सा बोलेंगे, आप इसे ट्राई कीजिएगा और फिर आप हमें मैसेज करके बताइएगा कैसा लगा। तो आपने क्या करना है, आपने लेना है योप्ले, बिल्कुल प्लेन, जो जिसमें शुगर ना हो, बिल्कुल प्लेन वाला योप्ले लेना है, नेचुरल वाला। उसको चाहे एक योप्ले लें चाहे दो ले लीजिए, उसको अच्छे से बीट कर लीजिए, फेंट लीजिए, उसको साइड में रख दीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, कालबास लेना है यानी कि घिया, उसको उसके बीज नहीं लेने, सिर्फ उसको उसका छिलका ऊपर से उतार दीजिएगा और उसको थोड़ा सा रैपे कर दीजिएगा, मतलब उसको थोड़ा सा खाजे कर, नॉट क्रश नहीं करना है, आपने उसे रैपे करना है। और जब वो रैपे हो जाए, मतलब आप एक छोटा सा एक मुट्ठी जितना ले सकते हैं उतना ले लीजिए, उसको गरम गरम पानी के अंदर डाल दीजिए कालबास को, उसके 2 मिनट तक रहने दीजिए, उसको ऊपर नीचे कीजिए, उसका पानी ड्रेन कर दीजिए। फिर उसके बाद आपने उसे ठंडे पानी से साफ करना है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। उसको आपने जो कालबास गरम गरम पानी में डाला था, जब ठंडे पानी में डाल दिया, उसके बाद आपने नॉर्मल पानी में से डाल

0: निकाल के आपने सिंपल सीधा उस योपले जो फिटा हुआ है उसके अंदर डाल देना है। उसमें हल्का सा ब्लैक पेपर डालना है, उसमें हल्का सा नमक डालना है, हल्का सा बिल्कुल चुटकी सा अगर काला नमक हो सके आपके पास या चाट मसाला हो सके आप डाल दीजिए, और उसको बस उसमें ग्रीन चिली डाल दीजिए, उसमें थोड़ा सा अगर आपको अनियन पसंद है तो डाल दीजिए, उसको अच्छे से फेंट दीजिए। ये एक आपके लिए रायते जैसा बन जाएगा, और जिनको खाना चाहिए उसके अंदर थोड़ा सा टमाटर डाल दीजिए, उसमें ग्रीन चिली के साथ में थोड़ा सा कोथमीर डाल दीजिएगा, आप बिलीव करेंगे इतना टेस्टी ये लगता है ना। चाहे इसे आप ब्रेकफास्ट में खाएं, लंच में रायते के जैसे खाएं, चाहे उसको आप एक प्रॉपर मील के जैसे खाएं। एंजॉय कीजिए गाने।
1: वेलकम टू RM2
2: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
1: वेलकम टू RM2
2: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।
3: 10:37 हो चुके हैं दोस्तों, आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम मस्ती मॉर्निंग के साथ में। यहाँ पर इस समय हलकोरी फैशन की तरफ से आपके लिए एक प्यारा सा छोटा सा टिप है। अगर जैसे आप कपड़े धोते हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि कई बार हमारे कपड़े कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत डेलिकेट होते हैं, जिनकी जो नेक होती है बहुत टाइट होती है, चाहे वो स्वेटर्स में कह लो, चाहे वो कोई ऐसा टॉप कह लो, कोई टी शर्ट कह लो। तो आपको क्या करना है कि आपको जब आपने उसे वॉश करना है तो आपने हैंगर जो है ऊपर से नहीं डालना। जैसे कभी आप कहते हैं ना कि नेक लाइन को थोड़ा सा खोल देते हैं, ओपन कर देते हैं और ऊपर से हैंगर अटकाते हैं, नहीं करना है। आपको हैंगर को नीचे से, जैसे टी शर्ट ओपन है तो नीचे से डालिए, आराम से उसको पकड़िए, उसका शोल्डर जो है उसके ऊपर आपने क्या करना है, दोनों साइड पे क्लिप लगा दीजिएगा, मतलब शोल्डर साइड पे, और उसको हैंगर को हैंग कर दीजिएगा। एक तो आपका जो शोल्डर्स हैं वो गिरेंगे नहीं, दूसरा जो आपने हाथ से उसको ब्रॉडनिंग किया उससे आपका जो नेक है उसका जो फिटिंग है बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। जब आपने हैंग किया है तो बहुत जल्दी ईजिली जल्दी सूख जाएंगे और आपको इससे क्या होगा, आपको बहुत मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब आप आयन करेंगे तो हल्का सा उसको, मतलब इतना भी ज़्यादा वो ना करें, जैसे कि ना एकदम सुखा ना दें, क्योंकि आप जब आयन करते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा पानी डालते हैं ना, तो पानी वो नेचुरली होगा। इमीडिएटली उसको आयन कीजिए, जब वो प्रॉपर सूख जाए आयन करते करते उसको आप प्रेस करके रख दीजिए और आपको देखिएगा एकदम आपका टॉप परफेक्ट रहेगा, जो शेप है वो परफेक्ट रहेगी, और गर्म गर्म जैसे सूखते सूखते में ही आपने उसको आयन कर दिया तो आपके परफेक्ट जो उसमें शाइन नेचुरल रहती है वो भी रहेगी। इंजॉय कीजिए गाने।
0: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: 10:54 हो चुके हैं और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम मस्ती मॉर्निंग के साथ में। बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं और सभी की अपनी अपनी फरमाइशें हैं, पर एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज है, चलिए शेयर करते हैं आपके साथ। 75th बर्थडे है मिस्टर रोहित बकोरी जी का, जो कि रोहित बकोरी एंड भजन बकोरी जी, जो कि मिडलैंड से हैं और दोनों ट्विंस ब्रदर्स हैं, और दोनों का आज है बर्थडे 75वां। और करुणा, बबीता, रीता एंड पूरी फैमिली उन्हें विश कर रही हैं और उनको कह रही हैं हमेशा खुश रहो, ऐसी लंबी उम्र पाओ, प्यार है आपसे, इसीलिए आपका बर्थडे विश ऐसे कर रहे हैं। साथ में ललित जी USA से साथ दे रहे हैं, करुणा, प्रीति, प्रिया, सोनाक्षी, सुनीता, ईशा, प्रिशा एंड सुहेली साथ दे रहे हैं। साथ में विश्वानी जी साथ भी दे रही है, आशा जानू जी साथ हैं, वीना गंगाधर साथ जुड़ी हुई हैं और बहुत ही प्यारे से गाने की फरमाइश कर रही है अपने हस्बैंड देव के लिए। और देव को इतना ही कहना चाहती है, अरे बस प्यार है तुमसे क्या करें, बस हमें भी लगता है हमें भी आप सबसे प्यार हो चुका है, क्योंकि जब आपके मैसेजेस आते हैं दिल खुश हो जाता है। तो इन्जॉय कीजिए गाने, और ये आपके लिए स्पेशली, ये हमारे जिनका भी आज बर्थडे है उनके लिए।

0: रेडियो मस्ती।
1: RM2
2: रेडियो मस्ती,
1: फील द मस्ती।

0: सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार याचना से। याचना आपको नमस्कार।
1: नमस्कार प्रणाम सभी सुनने वालों को। नमस्कार, सुनिए संक्षिप्त समाचार। एमिरेट्स की फ्लाइट EK704 जो मॉरिशस से दुबई के लिए कल रात 9:50 पर रवाना होने वाली थी, वो एक तकनीकी खराबी के कारण एयरपोर्ट पर ही रह गई। वो फ्लाइट आज सपहर 3:30 रवाना होगी। यात्रियों को खाने पीने के लिए वाउचर्स दिए गए और जिन लोगों को दुबई में दूसरी फ्लाइट, कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी थी, उनके लिए दोबारा बुकिंग कर ली गई है। एमिरेट्स के प्रवक्ता ने इन बातों की जानकारी देते हुए इस देरी को लेकर खेद जताया। पिछले साल की तुलना में इस साल 2 सितंबर तक देश की सड़कों पर जान गंवाने वालों की संख्या ज्यादा है। 23 ज्यादा जानलेवा सड़क हादसे पेश आए, यानी 29% की वृद्धि। ये आंकड़े चिंताजनक हैं। पेनल्टी पॉइंट प्रणाली के लागू होने के बाद भी सड़कों पर जानलेवा दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या के चलते 1 सितंबर को राष्ट्रसभा में सड़क संबंधी उल्लंघनों को लेकर एक विधेयक पारित किया गया है, जिसके तहत ठोस सजा और जुर्मानों का प्रावधान है। क्या इतिहाद एयरवेज जल्द ही मॉरिशस में अपने विमान का संचालन शुरू कर सकती है? फिलहाल कुछ भी अंतिम रूप से तय नहीं हुआ है, लेकिन अब इस संभावना पर विचार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने बताया कि अबू धाबी की सरकार पिछले कुछ समय से इस बात में रुचि दिखा रही है कि ये एयरलाइंस मॉरिशस के लिए अपनी सेवाएं शुरू करें। हालांकि इसके लिए अब बातचीत शुरू की जानी बाकी है। नई हवाई सेवा शुरू होने से मॉरिशस की अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी और ज़्यादा मजबूत हो सकती है। विदेश में भारत की राजधानी दिल्ली में विद्यार्थियों के लिए एक पेइंग गेस्ट कंपाउंड की 5 माले की इमारत कल दह गई। कई लोगों के इसके मलबे में फंसे रहने की आशंका है। अभी तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है, जबकि 15 लोगों को जीवित बचाया गया। इस पूरे हादसे और बिल्डिंग के गिरने की वीडियो कल से काफ़ी वायरल हो रही है। दिल्ली के मेयर ने 4 मंजिल से ऊपर वाली सभी अवैध इमारतों पर तुरंत सील लगाने की मांग की। अधिकारियों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण बेसमेंट में पानी जमा हो गया था, जिस वजह से इमारत की नींव कमज़ोर हो गई। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.
2: Welcome to RM2.
3: Musty Mornings. Radio Musty.

0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: 11:08 हो चुके हैं और अब सुबह धीरे धीरे दोपहर की तरफ बढ़ रही है। किसी को भूख लगनी शुरू हो गई होगी। कोई कह रहा होगा अरे चल भाई कैंटीन चलते हैं, कोई कह रहा होगा तुम्हारे टिफिन में क्या है, क्या लेकर आए हो घर से। तो हम आपको बोलेंगे बस थोड़ी देर और रुक जाओ भाई, 12 बजने ही वाले हैं, थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा भूख को और बढ़ने दो। पर उसके बाद आपने बस इतना करना है कि खाना खाने से पहले पानी पी लीजिएगा। एक ग्लास पीना है, दो ग्लास पीना है, डेढ़ ग्लास पीना है, आपके ऊपर है। पर जब आप जैसे खाना खा लेंगे उसके बाद पानी मत पीजिएगा। ये बस एक हैबिट चेंज कर लोगे ना, आपकी 100 बीमारियां ऐसी रफू चक्कर हो जाएंगी, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई हमको खाना चाहिए। आपकी बॉडी चाह रही है, जो आपने खाना खाया है उसको पचाना है, तो वो अंदर जो फायर लगी है उसके ऊपर आप पानी डाल देते हैं, कोल्ड ड्रिंक डाल देते हैं, कोई शुगर वाली चीज़ डाल देते हैं। तो मत कीजिए, बस आप पानी मत पीजिएगा। फिर आधे घंटे के बाद जब खाना खा लोगे, आधे घंटे के बाद या 1 आवर के बाद जब आपको दिल करेगा तब आप पानी पीजिएगा। तो फिर आपका खाना भी बिल्कुल अच्छे से डाइजेस्ट होगा, आपके पेट में कोई क्रैम्प्स नहीं होंगे, दर्द नहीं होगा। तो फिर और क्या चाहिए, यही तो चाहिए ना। हम मॉर्निंग ये टिप्स लेकर आते हैं आपके लिए कि आपकी मॉर्निंग अच्छी हो और हमारी भी मॉर्निंग आपके मैसेजेस के साथ में ही अच्छी होती है। तो अगर आपको भी कोई मैसेज करना है तो आप कर सकते हैं 5491294 पर। इंजॉय कीजिए गानों को।
0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: 11:23 हो चुके हैं दोस्तों, आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम मस्ती मॉर्निंग के साथ और इस समय मैं साथ दे रही हूँ आपके पूनम। हम तो यही बोलते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें अपना बिल्कुल 100% फोकस रखें, बस सिर्फ कान थोड़े से हमारी तरफ रखें, थोड़ी सी बातें हो जाती हैं, थोड़ी गपशप हो जाती है, मंडे मॉर्निंग है तो जिसमें आपका भी दिल लगा रहता है, आपका काम करने में मन लगता है। कई हमारे दोस्त होंगे, चाहे वो शेफ़ हों, चाहे वो उनके छोटे छोटे स्टॉल्स हों, गरम गरम कुछ ना कुछ पका रहे होंगे, साथ साथ सबको खिला रहे होंगे, तो आप सबकी स्माइल के साथ जो आप खिलाते हैं पिलाते हैं, थैंक यू सो मच आप सभी का। जो भी आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा सा अपने लिए टाइम ज़रूर निकालिएगा, जहाँ पर हम कहते हैं कि ये टाइम जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपनी स्किन पर ध्यान दिया, अपनी हेल्थ पर ध्यान दिया या आपने खाने पीने पर ध्यान दिया तो बहुत अच्छा रहता है। तो चलिए भी एक छोटा सा टिप आपके साथ हम शेयर करते हैं कि जिनको जिनके घर थोड़े से छोटे होते हैं, जैसे रूम थोड़ा सा छोटा होता है या लिविंग थोड़ा सा छोटा होता है, तो उनको हम यही बोलेंगे कि कई बार लोग जो फ़ोटो फ्रेम्स होते हैं, चाहे वो फैमिली के फ़ोटो फ्रेम्स होते हैं या वैसे ही कोई सीनरी होती है वो ले आते हैं, तो वो क्या करते हैं बहुत ऊपर लगा देते हैं, क्योंकि लगता है कि चलो बड़ा सा एक पहले से पुराना सा नेल लगा हुआ है उसी पर चिपका दें। पहले ये चीज़ें इतनी नहीं देखा जाती थी, बस लगाई जाती थी। अब क्या होता है कि हर चीज़ उसकी चीज़ को ना बारीकी से देखी जाती है, तो क्या कहते हैं कि जैसे आप जैसे नॉर्मल एक आदमी की हाइट मेल्स में होती है 6 फीट होती है, 6'1" होती है, तो आप वो एक रेशो रख लीजिए, तो 6 फीट पे ही आप फोटो फ्रेम लगाएं। जब आप लगाएंगे तो कभी कोई जो खड़ा होता है उसको आपकी सीनरी बहुत पसंद आ जाती है, तो वो उसको अप्रिशिएट कर सकता है, देख सकता है, फोकस कर सकता है कि आपने क्या खरीदा, क्या बनाया, क्या खुद लगाया। और अगर लेडीज़ हैं तो वो भी उसको आराम से देख पाएंगी, क्योंकि उनकी थोड़ी सी हाइट छोटी होती है। तो हम यही कहेंगे थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी सी चेंजेस करते रहा कीजिए घर में, और देखिए कितना अच्छा लगेगा आपका लिविंग रूम।
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.

0: RM2
1: Radio Musti.
2: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
0: RM2
1: Radio Musti.

0: Welcome to RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।
2: 11:36 हो चुके हैं दोस्तों, आप हैं हमारे साथ यानी कि मस्ती मॉर्निंग में। और मॉर्निंग हो जाती है जब मस्त मस्त, तब दिल करता है कुछ खाने का पीने का। तो चलो खाओगे आप पियोगे, पर उससे पहले आपके जो मैसेजेस हैं उसको कहाँ जाने देंगे। हमारे साथ जुड़ी हुई है इस समय विजया जी और कह रही हैं बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ, पता नहीं क्यों, पर आपके गाने बहुत मस्त है। मैं तो ये कहूँगी आप टायर्ड मत हो, कुछ अच्छा सा खाओ, थोड़ा एनर्जेटिक कुछ हमारा गाने सुनो या कुछ थोड़ी सी किताब पढ़ो, कोई अच्छी सी ऐसी कोई किताब जिससे आपकी टायर्डनेस भाग जाए, तो हम तो यही चाहेंगे। चलिए जी, आज है देवानंद जी का बर्थडे और बेस्ट विशेज आ रही हैं उषा जी, शीतल, कोमल, भावेश एंड ऑल सिचरन फैमिली जो कि सेवास्तोपोल के रहने वाले हैं। और हम भी आपको यही कहेंगे, विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे सर, इन्जॉय कीजिएगा अपने बर्थडे अपने फैमिली के साथ में। साथ में धनवंती जी का भी आज बर्थडे है जो कि आज 49 ईयर्स की हो गई हैं, पूरी फैमिली आपको विश कर रही है। ललिता जीतन जी साथ दे रही हैं और इन्जॉय कर रही हैं, राम कबीर सिंह जी साथ दे रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। साथ में आज एक प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया रानी का बर्थडे है, मावी माईवा रंगा सामी जी का, जो कि आज 4 साल की हो गई है। और बेस्ट विशेज हैं फ्रॉम मॉम अश्विनी, डैड अरविंद, टिप्पा यूवन, अप्पे सोफी, ग्रैंड माँ सुनीता, ग्रैंड पा सुदेश, बिग मॉमी श्वेता, बिग डैडी नीलेश एंड ची मॉमी युतिका एंड ऑल मोतिया एंड रंगासामी फैमिली की तरफ से हम भी आपको बोलेंगे जिनका भी आज बर्थडे है, विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे पूरी रेडियो मस्ती की टीम की तरफ से। पर हम आप सबके लिए प्ले करेंगे और साथ में हमारी इस नन्ही गुड़िया और सभी जिनका बर्थडे है उनके लिए एक स्पेशल गाना।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: 11:47 हो चुके हैं दोस्तों, 3 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चला, पर मस्ती फुल की है। चाहे मैंने यहाँ पर डांस किया है, चाहे आपने अपने घर पे, चाहे ड्राइविंग करते हुए, कहीं ना कहीं कमर तो ज़रूर हिली होगी। तो हम भी आए ऐसे ही कहेंगे, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, स्माइल को पूरे दिन बरकरार रखिएगा, अच्छा खाइएगा और बस चलते जाइएगा। ये दिन ऐसे ही निकल जाएगा और कल सुबह मॉर्निंग में फिर से मैं आ जाऊँगी 9 से 12 आप ही के साथ। इंजॉय कीजिएगा, मेरे बाद आपको साथ मिलने जा रहा है नील मेनन का रेट्रो रिदम में। इंजॉय कीजिए इस गाने को।
0: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: जिसने संक्षिप्त समाचार आपसे याचना नमस्कार
1: नमस्कार नीलमणि सभी सुनने वालों को भी नमस्कार सुनिए संक्षिप्त समाचार एमिरेट्स की फ्लाइट EK704 जो मॉरिशस से दुबई के लिए कल रात 9:50 पर रवाना होने वाली थी वो एक तकनीकी खराबी के कारण एयरपोर्ट पर ही रह गई उस ये फ्लाइट सुपहर 3:30 रवाना होगी यात्रियों को खाने पीने के लिए वाउचर्स दिए गए और जिन लोगों को दुबई में दूसरी फ्लाइट पकड़नी थी उनके लिए दोबारा बुकिंग कर ली गई है एमिरेट्स के प्रवक्ता ने इन बातों की जानकारी देते हुए इस देरी को

लेकर खेद जताया। पिछले साल की तुलना में इस साल 2 सितंबर तक देश की सड़कों पर जान गंवाने वालों की संख्या ज्यादा रही। 23 ज्यादा गंभीर जानलेवा सड़क हादसे हुए हैं, यानी 29% की वृद्धि। ये आंकड़े चिंताजनक हैं। पेनाल्टी पॉइंट प्रणाली के लागू होने के बाद भी सड़कों पर जानलेवा दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी के चलते 1 सितंबर को राष्ट्रीय सभा में सड़क संबंधी उल्लंघनों को लेकर एक विधेयक पारित किया गया है, जिसके तहत ठोस सजा और जुर्मानों का प्रावधान किया जा रहा है। ब्रिटेन के रक्षा राज्य मंत्री वेस स्ट्रीटिंग ने कल संडे टाइम्स को दिए गए एक बयान में संकेत किया कि वे मॉरिशस को क्षगुस द्वीप समूह सौंपने के लिए कटिबद्ध हैं। इससे ब्रिटेन एक बार फिर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ टकराव की नई राह पर दिखाई दे रहा है। ब्रिटेन समाचार चैनल जीबी न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को लेकर सरकार द्वारा क्षगुस द्वीप समूह को मॉरिशस को वापस सौंपने के लिए कहा कि ये फैसला गलत है। इस साल की शुरुआत में केयर स्टार्मर की सरकार ने इस समझौते से संबंधित प्रक्रिया को उस समय रोक दिया जब राष्ट्रपति ट्रंप ने अमरीकी समर्थन वापस लेने का फैसला किया। इस समझौते के तहत विशेष रूप से ये प्रावधान भी है कि जेगोगोसिया के सैन्य अड्डे के उपयोग के लिए ब्रिटेन मॉरिशस को 99 सालों तक हर साल 101 मिलियन पाउंड स्टर्लिन का भुगतान करेगा। विदेश समाचारों में भारत की राजधानी दिल्ली में विद्यार्थियों के एक पेइंग गेस्ट कंपाउंड की 5 मंजिला इमारत दह गई। कई लोग इसके मलबे के तले फंसे हुए हैं। अभी तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है, जबकि 15 लोगों को जीवित बचाया गया। अधिकारियों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण बेसमेंट में पानी जमा हो गया था, जिस वजह से इमारत की नींव कमजोर पड़ गई। ये थी अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। शिवाला रोड थ्रियोले में 70 साल की 70 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती अनिता जगलुल की मृत्यु हो गई है। वे हमारे सहयोगी सचिन जगलुल की मां थी। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके मकान शिवाला रोड थ्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्यामिनुस क्रिमेशन ग्राउंड ले जाया जाएगा। क्रिमेशन टुमोरो एट 10 AM। नंबर 24 जानेट स्ट्रीट विलमेका से मिलते हमें 83 साल की 83 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सूर्या कीर्ति रामफल पैदाशी नाम जोकोरी की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके मकान नंबर 24 जानेट स्ट्रीट विलमे कौचमिलिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए विलमे की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 11 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।

0: एमपीसीच्या तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।
2: Retro Rhythm
3: RM2 Radio Musti.

0: रेट्रो रिदम।
1: बारह बजकर 12 मिनट हुए हैं। 12:12, डोंट फॉरगेट टू मेक अ विश। एंड रेट्रो वाइब्स बिल्कुल सेट है आपके इस आफ्टरनून को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। आई नो अभी आप में से कुछ लोग लंच कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, तो विशिंग यू अ वेरी बन अपेटी, एंजॉय योर मील। नमनी यहीं पर है 2 बजे तक साथ निभाने के लिए। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू कि आपके लिए बहुत सारे गेम्स भी होने वाले हैं। सो यहीं पर RM2 रेडियो मस्ती पर आप जुड़े रहना।
0: Retro Rhythm
2: RM2 Radio Musti।

0: रेट्रो रिदम। सब के लिए इट्स गेम टाइम। आपके लिए है सवाल, वेरी सिंपल एज यूजुअल। आपको बताना है कि जो गाना हमने अभी अभी चलाया वो किस मूवी से है। रेट्रो का टाइम है और आपकी मेमोरी टेस्ट करना तो बनता है। तो हमारे रेट्रो फैंस, गाना घुंघरवा मोरा चमचम बाजे किस मूवी से है? हिंट देती हूँ, वो लाइफ के बारे में है, बस आपको ट्रांसलेट करना है हिंदी में। 5491294 पर सेंड अस योर आंसर्स एंड उसके बाद आप जीत सकते हो एक नहीं बल्कि दो टिकट्स जावता सर्कस शो का। सो लेट्स गो।
1: रेट्रो रिदम।
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.
2: North, South, East or West, tune into the very best Radio Masti, your number one Bollywood station.

0: Retro Rhythm.
1: रेट्रो रिदम में गेम ऑन गोइंग है, सवाल पूछा गया था कि गाना घुंघरुआ चमचम बाजे किस मूवी से है। हिंट भी दिया था आपको कि बस आपको ट्रांसलेट करना है लाइफ को हिंदी में, एंड सही जवाब है जिंदगी। एंड हमारे विनर बन चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू रिया जी, आपको मिला है दो टिकट्स ज़ावता शो के लिए, जो कि होता है हर थर्सडेज फ्राइडेज को एज फ्रॉम 6 PM एंड ऑन वीकेंड सैटरडेज संडेज को 2:30 से लेकर शुरू होता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू वंस अगेन, आप इंजॉय कर पाओगे सर्कस शो को और बागेटल। एंड जिन लोगों की जीत नहीं हो पाई है, नो वरीज, आपके लिए और भी गेम्स हैं, आप बस जुड़े रहिए RM2 रेडियो मस्ती के साथ ही, एंजॉय कीजिए रेट्रो वाइब्स को जो कि हो रहा है अभी आपके RM2 रेडियो मस्ती पर विद मी नीलमणि।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: Retro Rhythm.
1: Yes, Retro Rhythm का सिलसिला जारी है एंड आज हम मना रहे हैं सुपर ह्यूमन डे। और मुझे लगता है कि रेट्रो रिदम के लिसनर्स भी किसी सुपर ह्यूमन से कम नहीं है। टाइम के साथ आप इवॉल्व हुए हो, टेक्नोलॉजी बदली, दुनिया बदली, लेकिन एक चीज़ अभी भी सेम है, रेट्रो म्यूजिक के लिए आपका प्यार। आप मॉडर्न जमाने के सुपर ह्यूमन्स हैं, लेकिन दिल के कोने में वो गोल्डन एरा, वो पुराने गाने और वो टाइमलेस मेलोडीज अभी भी जिंदा है। तो चीयर्स टू ऑल ऑफ माय रेट्रो रिदम सुपर ह्यूमन्स जो टाइम के साथ इवॉल्व हुए हैं लेकिन रेट्रो स्टिल है बाय हार्ट। तो यहीं पर आप कनेक्टेड रहना क्योंकि नेक्स्ट गेम ऑन द वे है आपके लिए आरएमजू रेडियो मस्ती पर ही।
0: रेट्रो रिदम
2: आरएम2

0: True Rhythm.
1: हुआ तो बदले या ना बदले, समा तो वही है मस्त वाला आपके इस आफ्टरनून को और रंगीन बनाने के लिए. सो हियर वी गो, सेकंड गेम टू पैम्पर यू. अभी के लिए आप जीत सकते हो दो टिकट्स फॉर द फोर टेस्ट ऑफ ब्यूटी विद अ नोबल पर्पस, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइल्ड मॉरिशस 2026. एंड क्वेश्चन सिंपल ही है, आपको बताना है कि आज हम कौन सा दिन मना रहे हैं. अगर आप अटेंटिव थे तो आपको याद होगा कि मैंने कुछ मेंशन किया था कि हम कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं आज. आपको बस बताना है कि वो कौन सा दिन है जो कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं. 5491294 पर. गुड लक टू यू.
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती.

चेंज पोकली हलो हलो छोड़ दे पिंड मैया छोड़ दे कन्याकुमारी का माया जाल तोड़ दे हलो

0: मैया भूरी का एक दूध है भूल भूल भूल हाय हाय भूल भूल मैया भूल भूल हाय भूल हुई भूल हुई भूल हुई मैया मांसधारी है।
1: North, South, East or West, tune into the very best Radio Masti, your number one Balalut station.

0: Retro Rhythm. And yes, sir, Retro Rhythm में second game का जवाब देने का time हो गया है. किसको मिलेगा 2 tickets for the finals of Miss India Worldwide Mauritius 2026? Let's see किसने जवाब भेजा है. 1, 2, 3 जवाब है. लेकिन दोस्तों, अगर आपकी जीत हो चुकी है, दूसरों को भी मौका दीजिए to be the winner. तो एक लकी ड्रॉ करते हैं एंड लेट्स सी कि किसका नाम आता है. यस, नाम आया है त्रिशा गौरिया का. कंग्रेचुलेशंस टू यू, आपको मिला है 2 टिकट्स टू अटेंड द फाइनल ऑफ द 4 days ब्यूटी विद नोबल पर्पस मिस इंडिया वर्ल्ड वाइल्ड मॉरिशस 2026. लेट मी टेल यू, आप टिकट्स कलेक्ट करने के लिए आ सकते हो डायरेक्टली MBC ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स 10 से लेकर 3 बजे तक. एंड वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस दिया. अभी के लिए वापस रेट्रो की दुनिया में ले चलते हैं आपको. मिलते हैं सीधा संक्षिप्त समाचारों के साथ.
1: Retro Rhythm.
2: RM2 Radio Musti.
3: अच्छा, ये बात है तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ. जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच सच देना. डन
4: कैन
3: डन. अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है?
4: है?
3: मैंने पूछा, बागों में बाहर है?
4: है.
3: गर्मियों की निहार है?
4: है.
3: तो तुमको मुझसे प्यार है?
4: ना, ना, ना.

0: सोमवार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: Welcome to RM2 Radio Musti North, South
2: 103.5
1: East, West
2: 96.4
1: Center
2: 99.4
1: RM2 Radio Musti
2: Radio Musti,
1: the latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Good afternoon, it's 1 p.m. सुनते हैं संक्षिप्त से समाचार। आपसे विधिमान नमस्कार।
4: नमस्कार नीलमणि, सभी सुनने वालों को नमस्कार। कई यात्रियों ने हवाई अड्डे पर 16 घंटे से ज्यादा बिताए। वे गेट नंबर 23 के सामने फंसे हुए हैं क्योंकि दुबई जाने वाली उनकी उड़ान, जिसका प्रस्थान कल रात 9:10 तय था, तकनीकी खराबी के कारण जमीन पर खड़ी है। हालांकि आज दोपहर 3:30 एक दूसरा विमान विकल्प के तौर पर उड़ान भरेगा, लेकिन ये यात्री एमिरेट्स और हवाई अड्डे के कर्मचारियों की ओर से बातचीत और सूचना के अभाव की कड़ी निंदा कर रहे हैं। कुछ यात्रियों ने रात भर एक पल भी आंखें नहीं बंद की हैं। ब्रिटेन के रक्षा राज्य सचिव वेस स्ट्रीटिंग ने कल संडे टाइम्स को दिए गए एक बयान में ये संकेत दिया कि वे मॉरिशस गणराज्य को शगस द्वीप समूह सौंपने के लिए संकल्पबद्ध हैं। इससे ब्रिटेन अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ टकराव के एक नए रास्ते पर आ गया है। समझौते में मुख्य रूप से ये प्रावधान है कि ब्रिटेन जेगो गार्सिया सैन्य अड्डे के लिए मॉरिशस को 99 वर्षों तक प्रति वर्ष 101 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का भुगतान करेगा। ब्रिजेवेजिया में 15 मिलियन रुपए से ज्यादा के नशीले पदार्थों की जब्ती ने सप्ताहांत में एक राजनीतिक और सार्वजनिक मोड़ ले लिया है। ये प्रणव राहुल रूबी की गिरफ्तारी के बाद हुआ है, जो और कोई नहीं बल्कि डेवलपमेंट बैंक ऑफ मॉरिशस डीबीएम के सीईओ हेमराज रूबी के बेटे हैं। प्रणव राहुल रूबी के घर की तलाशी के दौरान शनिवार को एक सूटकेस बरामद किया गया था, जिसमें 681 ग्राम कोकीन और 323 ग्राम क्रिस्टल मेथ मौजूद थी। इस जब्ती की अनुमानित कीमत 15,225,000 रुपए हैं। प्रणव राहुल रूबी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उसने कल सुबह अदालत में पेशी दी और उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। कल दोपहर जारी किए गए और अपने नाम से जुड़े एक बयान में डीबीएम के प्रमुख हेमराज रूबी ने कहा कि उनका बेटा बालिग है, स्वतंत्र रूप से रहता है और कई सालों से उनके साथ नहीं रहता है। ये कहते हुए कि वे पुलिस जाँच में दखल देने का कोई इरादा नहीं रखते हैं। हेमराज रूबी ने यह भी आश्वासन दिया कि इस निजी मामले का उस संस्थान के प्रबंधन या उसकी गतिविधियों से कोई लेना देना नहीं है जिसका वे नेतृत्व करते हैं। विदेश में इजरायली हवाई हमलों में दक्षिणी लेबनान के गांव में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। लेबनान के अनुसार इजरायली सेना ने कहा कि वो इन खबरों की जांच कर रही है। और अबूधाबी में एक नीलामी में एक दुर्लभ सफ़ेद फाल्कन 21 लाख दिरहम में बिका है, जो आयोजकों के अनुसार नीलामी में किसी फाल्कन के लिए चुकाई गई अब तक की सबसे अधिक कीमत है। अमेरिका से आए गियर प्यो अल्ट्रा वाइट को रविवार को अबूधाबी इंटरनेशनल हंटिंग एंड एक्विस्ट्रन एग्जीबिशन 2026 की आखिरी बाज नीलामी के दौरान बेचा गया। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। मोसेल मौलेगी बीसपाई में 17 साल के 17 ईयर्स ओल्ड के मोहम्मद सैयद साफिया अल्दीन भिकारिया इंतकाल कर गए हैं। उनका जनाजा आज शाम सवा चार बजे उनके पिता मोहम्मद सलीम भिकारिया के घर मोसेल मौलेगी बीसपाई से उठाकर सबसे पहले नमाज जनाजे के लिए अहमद रजा खान की मस्जिद ले जाया जाएगा और फिर दफनाने के लिए लेगी बिस्पाई का कब्रिस्तान। फ्यूनरल टुडे एट 4:15। पेटी शुमें बेला रिवियर सेशमें 97 साल की 97 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती लकिया सुकन, जो मामा गोपल नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 2:30 उनके बेटे गोपल बंदीनोद के घर पिचिश्र में बेला रिवियर सेश से उठाकर बुशों की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रमिशन टुडे एट 2:30। रायरोड बोबासे में 47 साल के 47 ईयर्स ओल्ड के श्री शिव काम सिंह नारायण की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी एलियंसन्स रायरोड बोबासे से उठाकर शुबेल की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रमिशन टुडे एट 2 p.m। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।

0: Retro Rhythm.
1: एंड यस यार, सेकेंड और आखिरी आओ में फिर से वेलकम है आपका हम जो रेडियो मस्ती पर ही रेट्रो यानी कि यू टाइमलेस हिट्स ऑन गोइंग है अभी नमनी के साथ एंड गेम्स ऑन एंड ऑफ ला रहे हैं. एंड आज लेट मी टेल यू, आज सुपर ह्यूमंस का दिन है एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ सुपर ह्यूमन. अपनों के लिए मुस्कुराते रहिए. नेक्स्ट गाना लता जी की आवाज़ में खास आपके नाम करते हैं.
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 Radio Musti.

0: रेट्रो रिदम।
1: दो लफ्जों की है दिल की कहानी। ला ला ला ला लो मैं फिर से आ गई और एक गेम के साथ। वंस अगेन आप गेम खेलकर बन सकते हो वन ऑफ टू टिकट्स टू अटेंड द फिनाले ऑफ द फोर डेज ब्यूटी विद अ नोबल पर्पस, यानी कि यो मिस इंडिया वर्ल्ड वार मॉरिशस 2026। तो सवाल को अभी के लिए ट्रिकी रखते हैं, बहुत हो गई इजी सवाल। आपको बताना है कि फाइनल्स कहाँ पर होने वाला है, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द फाइनल्स ऑफ मिस इंडिया वर्ल्ड वार मॉरिशस। 5499 1294 पर भेजिए अपने जवाब। टिकट्स आर वेटिंग फॉर यू।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: Retro Rhythm.
1: रेट्रो रिदम का सफर जारी है. इस आवर का आखिरी गेम ऑन गोइंग है. तो किसको मिलेगा द टू टिकट्स फॉर द फाइनल्स ऑफ द फोर डेज ब्यूटी विद अ नोबल पर्पस, यानी कि यो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइल्ड मॉरिशस 2026 का. सवाल था आपको लोकेशन बताना है जहां पर फाइनल्स आर बीइंग हेल्ड एंड सही जवाब है ट्रियानो कन्वेंशन सेंटर. एंड विनर हमारे बन चुके हैं. एंड यस, विनर हमारे बन चुके हैं हंस राव जी, जो कि घुसबैल के रहने वाले हैं. तो आप टिकट्स कलेक्ट करने के लिए आ सकते हो MBC विद इन द वर्किंग आवर्स. कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन, आपको मिला है 2 टिकट्स टू अटेंड द फाइनल्स. एंड अभी के लिए रेट्रो वाइब्स को जारी रखते हैं, ऑन गोइंग रखते हैं. आपके मैसेजेस एंड डेडिकेशंस 5499124 पर वी आर वेटिंग.
0: रेट्रो रिदम
2: RM2

0: retro rhythm.
1: अभी के लिए मैसेजेस पर एक रुख करते हैं। अरे गाना हमने चलाया चन्ना जोर गरम और हमारा एक लिसनर अभी घोपा बना रहा है। अभी से ही डिनर की तैयारी लावोस कर रहे हैं क्योंकि और भी काम बाकी है, कपड़े सुखाने हैं आपको। क्या बात है मंडे, आपका कितना प्रोडक्टिव रहा। नेक्स्ट मैसेज आया है फ्रॉम मीता जी, मोहतवा से आप सुन रहे हैं। कुंगुमा से वी हैव सुया बिहारी जी जो साथ दे रही है गाना अपने पति ललदेव, मम्मी शारदा, बहन अनिता, मौसी भारती के लिए। अनिता जी फ्लिक ऑफ फ्लैग से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट गाना अपने सभी दोस्तों और फैमिली के नाम एंड ऑल्सो फॉर आरएम2 रेडियो मस्ती के लिए मांग रहे हैं। सो स्वीट ऑफ यू। अब साफ की ओर ले चलते हैं आपको मेबक से। आप है नस्लीन सुमारू जी एंड आज आपका स्पेशल डे है। अपने पोता पोतियों की तरफ से लॉट्स ऑफ विशेज, हैप्पी बर्थडे टू यू। एंड आज धनवंती ताराचंद जी अपना 49th बर्थडे मना रहे हैं। गुड हेल्थ एंड बेस्ट विशेज आपके लव्ड वंस ने भेजे हैं। सेवास्तोपोल से सीचन फैमिली की तरफ से बेस्ट विशेज तू भैया देवानंद जी। पत्नी उषा, शीतल, कोमल, भावेश की तरफ से तो हैप्पी बड़ा बर्थडे वाला सॉन्ग तो बनता है। जो आज अपना बर्थडे मना रहे हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू फ्रॉम द होल आरएम2 टीम।

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check 2 PM. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है विधिमा, आपको नमस्कार।
6: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को नमस्कार। कई यात्रियों ने हवाई अड्डे पर 16 घंटे से ज्यादा बिताए वे गेट नंबर 23 के सामने फंसे हुए हैं, क्योंकि दुबई जाने वाली उनकी उड़ान, जिसका प्रस्थान कल रात 9:10 तय था, तकनीकी खराबी के कारण जमीन पर खड़ी है। हालांकि आज दोपहर 3:30 एक दूसरा विमान विकल्प के तौर पर उड़ान भरेगा, लेकिन ये यात्री एमिरेट्स और हवाई अड्डे के कर्मचारियों की ओर से बातचीत और सूचना के अभाव की कड़ी निंदा कर रहे हैं। कुछ यात्रियों ने रात भर एक पल भी आंखें नहीं बंद की हैं। ब्रिटेन के रक्षा राज्य सचिव वेस स्ट्रीटिंग ने कल संडे टाइम्स को दिए गए एक बयान में ये संकेत दिया कि वे मॉरिशस गणराज्य को शागस द्वीप समूह सौंपने के लिए संकल्पबद्ध हैं। इससे ब्रिटेन अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ टकराव के एक नए रास्ते पर आ गया है। ब्रिजेवेजिया में 15 मिलियन रुपए से ज्यादा के नशीले पदार्थों के साथ डीबीएम के सीईओ हेमराज रूबी के बेटे प्रणव राहुल रूबी की गिरफ्तारी ने इस मामले को राजनीतिक मोड़ दे दिया है। घर से कोकीन और क्रिस्टल मेथ मिलने के बाद उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि सीईओ रूबी ने स्पष्ट किया है कि उनका बालिक बेटा अलग रहता है और इस निजी मामले का बैंक के कामकाज या जाँच से कोई संबंध नहीं है। और विदेश में ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी मोहसेन रेजाई का कहना है कि तेहरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास एक प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करेगा और आने वाले दिनों में जलमार्ग के लिए ओमान के साथ सहमत हुए एक नए शिपिंग मार्ग की घोषणा करेगा। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, थोड़ी देर में शोक समाचार। मोसेल मोलेगी 20 पाए में 17 साल के 17 ईयर्स ओल्ड के मोहम्मद सैयद सफिया अल दीन भिकारिया इंतकाल कर गए हैं। उनका जनाजा आज शाम 4:15 उनके पिता मोहम्मद सलीम भिकारिया के घर मोसेल मोलेगी 20 पाए से उठाकर सबसे पहले पाए की अहमद रजा खान मस्जिद दे जाएगा और फिर दफनाने के लिए रेगी 20 पाए का कब्रिस्तान। फ्यूनरल टुडे एट 4:15। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी संवेदना।

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: तो चलिए दोस्तों, 2:06 एंड मंडे की शुरुआत, यानी कि मंडे का दिन, नया हफ्ता है एंड इट्स अ न्यू वीक. सो आई एम श्योर दैट नए हफ्ते के साथ नए चैलेंजेस तो होंगे ही, लेकिन ऑफ कोर्स नए सरप्राइजेस एंड नए विंस एज वेल. सो आपका हम स्वागत कर रहे हैं. अभी तो आफ्टरनून टाइम हो चुका है, 2 से लेकर 4 बजे तक. इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज. मैं हूं परी आपके साथ एंड आई डू होप दैट यू हैड अ वंडरफुल वीकेंड. और वीकेंड के बाद अब मंडे की शुरुआत भी मस्त जबरदस्त हुई है. वैसे काम पर तो हैं आप एंड आपने अभी हमारे साथ ट्यून इन किया है, वर्क फ्रॉम होम, घर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं या फिर ऐसे ही आज घर पर चिल कर रहे हैं, जहां कहीं से भी आपने ट्यून इन किया है, अभी के लिए इट्स टाइम फॉर योर बी टाउन की खबरें एंड ऑफ कोर्स सम लेटेस्ट ट्रैक्स टिल 4 PM. सो आप भी हमारा साथ दीजिए ऑन RM2 रेडियो मस्ती. अगर कहना चाहते हैं कुछ, योर मैसेजेस, योर डेडिकेशंस 5499-1294 पर.
1: RM2
0: रेडियो मस्ती.

0: 92 रेडियो मस्ती।
1: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
0: RM2 Radio Musti।

0: 102 रेडियो मस्ती।
1: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड अपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी। RM2
0: Radio Musti.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: तो चलिए दोस्तों इट्स 2:41 और धुरंधर में जमकर जलवा बिखेरने के बाद अब रणवीर सिंह फिल्म प्रलय की तैयारियों में काफी व्यस्त है। यस प्रलय उनकी नेक्स्ट रिलीज फिल्म को लेकर फैंस में पहले से ही काफी एक्साइटमेंट थी और अब एक वीडियो वायरल होने के बाद एक्साइटमेंट जो है वो दुगना हो गई है। वीडियो क्लिप में रणवीर सिंह कल्याणी के साथ नजर आ रही हैं, उनके पीठ पर एक बेबी बंधा हुआ दिखाई दे रहा है और वहीं एक्टर रफ एंड टफ लुक और रग्ड लुक में नजर आ रहे हैं। ये वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चाओं में आ गया है और कई यूजर्स रणवीर को ऐसे जॉनर में देखने के लिए काफी एक्साइटेड है। एक यूजर ने लिखा है लीक्ड वीडियो से ही पॉजिटिव वाइब्स आना शुरू हो गया है और वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा विजुअल्स ने अभी से ही इस बात को लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट पैदा कर दी है कि ये रणवीर के करियर की सबसे बड़ी इंटेंस फिल्मों में से एक हो सकती है। फिल्म का जो स्केल है, जो लुक और जो माहौल है, सब कुछ एपिक नजर आ रहा है।

रहा है। सो अभी के लिए तो उनके जो फैंस यानी कि रणवीर सिंह के जो फैंस हैं प्रलय में उन्हें देखने के लिए सुपर एक्साइटेड है। एंड आफ्टर धुरंधर ये जो इंतजार है थोड़ा सा लंबा खिंच गया है। वैसे तो चल रही थी दैट वो डॉन में नजर आएंगे, लेकिन डॉन 3 अब तो डब्बा पैक हो गई है और उसके बाद अब प्रलय का इंतजार है, जहां पर ये वीडियो लीक होते ही अब एक्साइटमेंट दुगनी हो गई है। सो लेट्स वेट एंड वॉच के रणवीर

0: RM2
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
2: एंड चलिए दोस्तों, इट्स 2:55 विद दिस ट्रैक हम बजने वाले हैं नेक्स्ट आवर की ओर. डाविसन लालमाटी से हमारा साथ दे रहे हैं, सो दिस वन गोज आउट फॉर यू. और साथ ही साथ यहां पर कविता जी काम काज में लगी हुई है लेकिन स्टिल कनेक्टेड रेडियो मस्ती के साथ. सो हैव अ वंडरफुल मंडे एंड हैव अ वंडरफुल वीक अहेड. ये खूबसूरत सा गाना हम डेडिकेट कर रहे हैं आपके नाम, एंड हैव अ ग्रेट टाइम. यहाँ पर मिस्टर कवि हमारा साथ दे रहे हैं. आप भी डेडिकेट करना चाहते हैं गाना फॉर योर लवली डॉटर पूजा. आज सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना बर्थडे ऑन 7th of September. उनके लिए प्यार एंड स्पेशल विशेज फ्रॉम मामा कल्याणी. सभी परिवार की ओर से भी स्पेशल विशेज ऑन हर खास दिन. तो चलिए जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ प्यारे गाने चलते रहेंगे ऑन RM2 रेडियो मस्ती टू गेट यू इन द मंडे मूड. कुछ ऐसे गाने जो सुनकर ही आपको लगे कि भाई मंडे तो ऑल सेट है. तो बस आपका साथ निभाते रहिए ऑन RM2 रेडियो मस्ती. मैसेजेस डेडिकेशंस पहुंचाते रहिए ऑन 5491294. मैं हूं परी आपके साथ. और अभी के लिए इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज. थोड़ी ही देर में बढ़ेंगे समाचारों की ओर.

0: welcome to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Masti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
4: Time check, exactly 3 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है विधिमा. आपको नमस्कार.
5: नमस्कार परी, सभी को नमस्कार. कॉगो हैंडलिंग कॉरपोरेशन नए हैंडलिंग उपकरणों की खरीद में 2.8 बिलियन रुपए का निवेश कर रहा है. इसका उद्देश्य माल की अदला बदली की मात्रा बढ़ाना और कार्यकुशलता में सुधार करना है. ये कॉन्ट्रैक्ट चीनी कंपनी HHMC को दिया गया है और नए क्रेन जनवरी 2028 से चालू हो जाएंगे. आज सुबह पोटली में इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए. बंदरगाह जहाज़ों को दी जाने वाली सेवाओं को आसान बनाने के लिए आधुनिकीकरण कर रहा है. MPA एक नए प्रबंधन सॉफ्टवेयर मैरिटाइम सिंगल विंडो के विकास के साथ प्रक्रियाओं के डिजिटलाइजेशन को और आगे ले जाना चाहता है. ये प्लेटफॉर्म धीरे धीरे कई बंदरगाह सेवाओं को एक जगह लाएगा. इस प्रणाली से बंदरगाह को समुद्री यातायात में अपेक्षित वृद्धि का बेहतर जवाब देने में भी मदद मिलने की उम्मीद है. आज 73 नौजवानों को सम्मानित किया गया. ये 73 ऐसे युवा हैं जिन्हें सालों की मेहनत और त्याग के बाद उनके प्रयासों का फल मिला है. आज सुबह स्टेट हाउस में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों और छात्रों के करीबियों की उपस्थिति में वर्ष 2025 की लॉरिएट्स की चयन सूची का समारोह आयोजित हुआ. लेकिन मुस्कानों और समारोहों के पीछे एक साझा संदेश था, एक ये सफलता कोई अंत नहीं बल्कि एक नए चरण की शुरुआत है. और विदेश में बांग्लादेश में डेंगू का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है. इस साल अब तक 42,590 लोग अस्पताल में भर्ती हुए और 117 की मौत हो चुकी है. तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए. थोड़ी देर में शोक समाचार. मुसल मौली गिबी स्पाई में 17 साल के 17 ईयर्स ओल्ड के मोहम्मद सैयद सफिया अल्दीन भिकारिया इंतकाल कर गए हैं. उनका जनाजा आज शाम 4:15 बजे उनके पिता मोहम्मद सलीम भिकारिया के घर मुसल मौली गिबी स्पाई से उठाकर सबसे पहले नमाज जनाजे के लिए पाई की अहमद रजा खान मस्जिद ले जाया जाएगा और फिर दफनाने के लिए रिगिबी स्पाई का कब्रिस्तान. फ्यूनरल टुडे एट 4:15. शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी संवेदना है.
0: On NBC Play,
6: NBC Play,
0: NBC Radio.tv,
6: NBC Radio.tv.
1: More music in the mix.
0: Aaj Azadi hai.
2: Bombay Talkies,
0: Radio Musty,
3: Radio Musty.

0: Talkies. Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: और चलिए दोस्तों वेब सीरीज असुर सीजन 3 की जुड़ी कुछ खास जानकारियां, जी हां असुर सीजन 3 से जुड़ी कुछ खास जानकारियां सामने आ रही है। हाल ही में एक्ट्रेस संदीपा धार ने फैंस के साथ इस खबर को फोटोज के जरिए शेयर किया। असुर फ्रेंचाइजी के इस तीसरे सीजन का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था और एक्ट्रेस संदीपा धार ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं और इनमें वो वेब सीरीज में नजर आ रही है, यानी कि वेब सीरीज की शूटिंग की तैयारियों में नजर आ रही हैं और इनसे जो फैंस हैं असुर सीजन 3 के बारे में जानकारी ले सकते हैं। संदीपा द्वारा शेयर की गई जो फर्स्ट तस्वीर है उसमें वो बालकनी में खड़ी नजर आ रही है। उन्होंने एक ब्लैक बॉडीकॉन ड्रेस पहन रखी है और दूसरी फोटो में वो सीरीज में अपने डायलॉग पढ़ती नजर आ रही है। तीसरी तस्वीर में सलून में अपना मेक ओवर करती नजर आ रही है और एक दूसरे फोटो में उन्होंने असुर 3 की जानकारी दी है। इन फोटोज में जो क्लिपबोर्ड दिखाया गया है उसमें असुर 3 की शूटिंग के बारे में बताया गया है और संदीपा धार की शेयर की गई फोटोज के साथ कैप्शन में लिखा है, उन्होंने लिखा है कि जबरदस्त होने वाला है नई शुरुआत और तूफान से पहले की शांति। और इसी के साथ अंदाजा लगाया जा रहा है कि सीजन जो है वो काफी दमदार होने वाला है। हालांकि सीरीज में संदीपा कौन सी भूमिका निभाएगी इस पर से अभी पर्दा नहीं उठाया गया। ओटीटी की पॉपुलर सीरीज असुर के तीसरे भाग की शूटिंग शुरू हो गई है और सीरीज की कास्ट में अर्शद वारसी, वरुण सोबती मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। वहीं सीरीज में श्वेता बासु प्रसाद और एहसास चन्ना भी अहम किरदार करते हुए नजर आएंगी। सीरीज का डायरेक्शन गौरव शुक्ला ने किया है और वहीं सीरीज पौराणिक कथाओं, मनोविज्ञान और क्राइम इन्वेस्टिगेशन के अनोखे मेल को साथ लेकर आती है। सो अब सीरीज का इंतजार, यानी कि असुर के फैंस कर रहे हैं इस सीरीज का इंतजार। पार्ट 3 होने वाला है जल्द ही रिलीज।

0: 90s. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: और चलिए अब बात करते हैं संजय दत्त की. और आपको बता दें दैट हाल ही में एक कार्यक्रम में जब महाराष्ट्र के मंत्री ने एक्टर संजय दत्त को मराठी बोलने के लिए कहा तो एक्टर ने इनकार कर दिया और यहाँ पर बस यही उनका जो मजाकिया अंदाज था वो सामने आया. एक्टर संजय दत्त रविवार को मुंबई में एक कार्यक्रम में शामिल हुए. कार्यक्रम में महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनायक भी मौजूद थे. इस दौरान मंत्री ने जब बाबा से मराठी बोलने के लिए कहा तो उन्होंने इनकार कर दिया और मजाकिया अंदाज में ये बयान दिया कि जब मैं येरवडा जेल में था, यानी कि उन्होंने बताया लोगों को कि मैं 6 साल जब येरवडा जेल में था तभी भी मराठी नहीं सीख पाया, तो अब तो इसे बोलना थोड़ा सा मुश्किल है. और उनका ये मजाकिया अंदाज लोगों को काफी पसंद आया. और यहाँ पर प्रताप सरनायक ने कार्यक्रम का संबोधन करते हुए वहां मौजूद लोगों से कहा कि आजकल मैं सब लोगों को मराठी सिखा रहा हूँ. इसके बाद उन्होंने मराठी में कहा कि उन्होंने सोचा कि संजय दत्त के कार्यक्रम में आने के बाद उन्हें भी मराठी में बोलने के लिए कहा जाएगा. और माइक पर बोलते हुए संजय दत्त ने कहा, प्रताप भाई मैं 6 साल से ज्यादा येरवडा में रहा और तभी भी मराठी नहीं सीख पाया. थोड़ी बहुत सीखता हूँ, थोड़ी बहुत बोलता भी हूँ, लेकिन बस. इसी के बाद संजय दत्त ने भाषा के सवाल को आगे नहीं बढ़ाया और प्रताप सरनायक को कार्यक्रम में बुलाने के लिए उनका धन्यवाद किया. इसके बाद उन्होंने प्रताप सरनायक के कंधे पर हाथ रख के कहा कि मैं प्रताप भाई का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया. हमारा रिश्ता काफी पुराना है, 25 साल हो गए हैं. मंच पर संजय दत्त और प्रताप सरनायक के बीच हुई ये बातचीत अब सोशल मीडिया पर काफी चर्चाओं में है, काफी वायरल हो रही है. लेकिन ऑफ कोर्स संजय दत्त और उनका ये मजाकिया अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है.

0: Talkies.
1: Radio Musty.
2: Radio Musty.
3: और चलिए दोस्तों, थोड़ी ही देर में हम बढ़ने वाले हैं टुवर्ड्स योर रफ्तार वाइब्स, और उससे पहले हमारे जो लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं, चलिए यहां पर शाम देवचन एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम विद गर्मा गर्म इलायची वाली चाय एंड फुल वॉल्यूम पर एंजॉयिंग द सॉन्ग्स. सभी देवचन परिवार को याद कर रहे हैं, सो अगला गाना आपके नाम. और चलिए विजया जी, अरे आप आराम कर रही हैं तो ये तो हमें अच्छा लगता है. डू टेक रेस्ट एंड हम तो हमेशा आपके साथ जुड़े ही रहेंगे ऑन आरएम टू रेडियो मस्ती. अभी के लिए सेंडिंग लोड्स ऑफ लव टू यू, सो टेक रेस्ट एंड हैव अ ग्रेट टाइम रेडियो मस्ती के गानों के साथ. साथ ही यहाँ पर ललिता जी हमारा साथ दे रही हैं, आप भी सभी परिवार को याद कर रही हैं गर्मा गर्म कॉफी एंड हॉट समोसाज. और डेडिकेटिंग गाना फॉर सरोज कुमारी, वीना, गीता, ज्ञानति, संजय, विजय एंड सभीजीत इन परिवार के नाम. और यहाँ पर मिस्टर रवि हमारा साथ दे रहे हैं आप, सो ऐसे ही कुछ ब्यूटीफुल गाने चलते रहेंगे आपके नाम ऑन आरएम टू रेडियो मस्ती. तो चलिए इसी ट्रैक के साथ हम बढ़ने वाले हैं टुवर्ड्स योर रफ्तार वाइब्स. समाचारों के बाद लेकर आएंगे रफ्तार वाइब्स. मैं हूँ परी आपके साथ ऑन रेडियो मस्ती.

0: to Radio Misty.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Musti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2, Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check, 4 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है विधिमा, आपको नमस्कार।
6: नमस्कार परी, सभी को नमस्कार। कॉगो हैंडलिंग कॉरपोरेशन नए हैंडलिंग उपकरणों के खरीद में 2.8 बिलियन रुपए का निवेश कर रहा है। इसका उद्देश्य ट्रांसशिपमेंट की मात्रा बढ़ाना और कार्यकुशलता में सुधार करना है। ये कॉन्ट्रैक्ट चीनी कंपनी HHMC को दिया गया है और नए क्रेन जनवरी 2028 से चालू हो जाएंगी। बंदरगाह जहाज़ों को दी जाने वाली सेवाओं को आसान बनाने के लिए आधुनिकीकरण कर रहा है। MPA एक नए प्रबंधन सॉफ्टवेयर मैरीटाइम सिंगल विंडो के विकास के साथ प्रक्रियाओं के डिजिटलाइजेशन को और आगे ले जाना चाहता है। ये प्लेटफॉर्म धीरे धीरे कई बंदरगाह सेवाओं को एक जगह लाएगा। आज 73 नौजवानों को सम्मानित किया गया। ये 73 ऐसे युवा हैं जिन्हें सालों की मेहनत और त्याग के बाद उनके प्रयासों का फल मिला है। आज सुबह स्टेट हाउस में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों और छात्रों के करीबियों की उपस्थिति में वर्ष 2025 की लॉरिएट्स के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया। और विदेश में भारत के कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 7 सितंबर के लिए दिल्ली, यूपी, बिहार समेत देश के 22 राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी जारी की है। पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद, नमस्कार।
0: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
1: Raftar Vibes, Filmy Rides,
0: RM2.

So well friends, that was in the voice of Ved Sharma और इसे खूबसूरत गाने के साथ आप सभी का warm welcome. It's time for your रफ्तार vibes. मैं हूँ परी आपके साथ. रफ्तार vibes तो है लेकिन रफ्तार थोड़ी सी धीमी because अब तो काम खत्म हो चुका है. कहीं पर भी पहुँचने की जल्दी कहाँ है, घर ही तो जाना है, safely पहुँचना ज़रूरी है. So we have some beautiful songs जिन्हें सुनते हुए आपका ये सफ़र होने वाला है extra special and extra musical. So साथ दीजिए on RM2 Radio मस्ती जहाँ पर आपके लिए होने वाले हैं special segments and loads of games. So मैं हूँ परी और साथ रहेगा आपका और मेरा till 7 PM and that's your रफ्तार vibes.

तो चलिए यहाँ पर 4:11 एंड टाइम टू प्ले अ गेम आपके साथ. जीत सकते हैं 2 tickets टू सर्कस ज़वाटा, जहाँ पर आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस फिल्ड विद मैजिक थ्रिल्स लाफ्टर एंड स्पेक्टेकुलर सर्कस परफॉर्मेंसेस पूरे परिवार के लिए, फॉर द होल फैमिली. सो इसे जीतने के लिए वी हैव सिंपल सा क्वेश्चन जो हम आपसे पूछने वाले हैं. अगर आप हमें देते हैं सही जवाब, बनते हैं हमारे लकी विनर, तो ये 2 tickets आपके नाम हो सकती है. सो आपके लिए सवाल, व्हाट आर द लॉन्ग पोल्स परफॉर्मर्स यूज्ड टू वॉक हाई अबाउट द ग्राउंड कॉल्ड. क्वेश्चन सिंपल सा, व्हाट आर द लॉन्ग पोल्स परफॉर्मर्स यूज्ड टू वॉक हाई अबाउट द ग्राउंड कॉल्ड. आपके सही जवाब 5499-1294 पर, 5499-1294 पर. आपके पूरे नाम और पते के साथ सेंड अस योर राइट आंसर्स. और अगर पहले जीत हो चुकी है प्लीज दूसरों को मौका दे. अभी तक मौका नहीं मिला है, जीत आपकी नहीं हुई है, सो ट्राई योर लक. ऑल द बेस्ट.

तो चलिए यहाँ पर एक बार फिर आई रिपीट द क्वेश्चन, व्हाट आर द लॉन्ग पोल्स परफॉर्मर्स यूज टू वॉक हाई अबाउट द ग्राउंड कॉल्ड? वो जो लॉन्ग स्टिक्स होती है जो परफॉर्मर्स यूज करते हैं टू वॉक हाई अबाउट द ग्राउंड, उन्हें क्या कहा जाता है? सेंड अस योर राइट आंसर्स 5499-1294 पर, 5499-1294 पर, पूरे नाम और पूरे पते के साथ।

तो चलिए यहां पर पूछा था हमने आपसे एक सवाल दैट व्हाट आर द लॉन्ग पोल्स परफॉर्मर्स यूज्ड टू वॉक हाई अबाउट द ग्राउंड कॉल्ड एंड द राइट आंसर इज स्टिल्ट्स इन स्टिल्ट्स कहा जाता है और यहां पर हमें मिले थोड़े सही जवाब थोड़े गलत जवाब लेकिन लकी ड्रॉ के बाद पूजा गुलाब भोवन आप है वाले दिप्रत से बनती है लकी विनर So well, Pooja, congratulations. Diya hai aapne hame bilkul sahi jawab. Aur well, congratulations. You just won two tickets to Circus Zavata. Get ready for an unforgettable experience filled with magic, thrills, laughter and spectacular circus performances. Ye hone wala hai for the whole family. Catch Circus Zavata.

मंगलमय शुभेच्छा। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। MBC की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। MBC विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।

स्पीकर का वॉल्यूम उसको तेज पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, ओ बेबी बेबी को बेस पसंद है।

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Decor, the floor expert.
1: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
3: So well, exactly 4:40 और स्टूडियो में आ गए हैं हमारे स्पोर्ट्स गुरु लेकर स्पोर्ट्स वर्ल्ड की सारी अपडेट्स. सो इट्स टाइम कि अरविंद आप तक पहुंचाए स्पोर्ट्स जगत की लेटेस्ट अपडेट्स. हेलो एंड गुड आफ्टरनून.
4: Good afternoon, आपको परी. Good afternoon, Radio Musti listeners. The latest from the sports world. सबसे पहले देखेंगे आज के जो मैच हैं स्पेन के ला लीगा में. रेताफे सेल्ता वीगो, फिर एल्चे का मुकाबला रियल सोसिएदाद से हैं. लगे हाथ बता दें कि बार्सिलोना की जीत हुई इस वीकेंड 5-0 से, जबकि रियल मैड्रिड की हार हुई थी सैटरडे को. इटली के सेरी आ में कागलियारी वर्सेस लेचे और उडिनीजे का मुकाबला लाजियो से होगा. अन्य लीग में भी आज मैच रखे गए हैं, जैसे सऊदी प्रो लीग में आज दो मैच और कल से चैंपियंस लीग के ग्रुप स्टेज लीग स्टेज के मैच शुरू हो रहे हैं. स्टार्टिंग विद एके एथेंस अगेंस्ट एलएएसके, क्लब रूज का मुकाबला आस्टन विला से होगा. देन डॉर्टमुंड विलारियल, लील बेटिस पोर्टो, मैनचेस्टर सिटी, रियल मैड्रिड इंटर मिलान, ये कल के मैच. फिर परसों भी यूईएफए चैंपियंस लीग के लीग स्टेज के मैच जारी रखे जाएंगे. वेंसडे मैच बार्सिलोना फेयेनोर्ड, स्टुटगार्ट वाइकिंग, लिवरपूल अपने एनफील्ड रोड में होगा अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड, नापोली आर्सेनल, एवे मैच आर्सेनल के लिए, पेरिस सेंट जर्मेन स्लोवान का स्वागत करेगा स्पोर्टिंग गलातासराय. मैनचेस्टर यूनाइटेड का नाम नहीं सुना, डरिए मत, मैनचेस्टर यूनाइटेड चैंपियंस लीग में है. वो थर्सडे को गुरुवार को खेलेगा. उसका मुकाबला है, लेट मी चेक, हाँ, मैनचेस्टर यूनाइटेड ओल्ड ट्राफर्ड में होगा अगेंस्ट साबा. फेनेरबाचे एएस रोमा, पीएसवी आइंडोवन शाख्तार दोनेस्क, बायर्न म्यूनिख बोडोग्लिंट, कोमो लेप्ज़िग, स्लाविया प्राग लांस. तो कल परसों और थर्सडे को मैच खेले जाएंगे फॉर द यूईएफए चैंपियंस लीग. उसके बाद वीकेंड में बैक टू प्रीमियर लीग, जिसमें इस वीकेंड मैनचेस्टर डर्बी, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, ये संडे मैच होगा. इन पर आपको समय समय पर जानकारियां देते रहेंगे. फिलहाल मैनचेस्टर यूनाइटेड के ड्रॉ मैच के बाद कुछ प्रश्न उठ रहे हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड लास्ट मिनट मैच में से कब्जा क्यों खो देता है. सो अभी शुरू हुआ है, आगे चलकर इसको देखा जाएगा. और टेनिस की बात कर लें, टेनिस जारी है. यूएस ओपन श्वातिक जेंग के खिलाफ खेलेगी आज सिरुंदुल ब्लॉक्स. आज सुबह शेल्टन ने सित्सिपास को हराया, नावारो की जीत अगेंस्ट कालिंस्काया. फिर आंद्रीवा विल बी अगेंस्ट पोतापोवा. और डबल्स के भी मैच खेले जाएंगे. सिंगल्स में ओसाका रिबाकिना पेगुला की जीत हुई आज सुबह 6-3, 6-4 से सियक्सतिया के खिलाफ. काचानोव विल बी अगेंस्ट चेन. तो आज ये मैच, कल सुबह आपको इन सब के रिजल्ट देंगे. सो वी हैड ए लॉन्ग वीकेंड, काफी कुछ हुआ वीकेंड के दौरान. वी द मेडन कप, बहुत दिनों बाद शौदे मास में इतना आलम, इतने लोग देखने को मिले. वीव द वंडरफुल परफॉर्मेंस ऑफ रैपिडाश. साथ साथ में चैंपियंस लीग और कॉन्फेडरेशन कप के लिए भी फुटबॉल मैच खेले गए, जिनमें मॉरिशस की दोनों टीमों ने अपना मैच ड्रॉ किया. तो अब क्रिकेट के बारे में भी आपको बता दें, विल बी हैविंग द फाइनल ऑफ द आइलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावागेंजा इस संडे को, वहां पर भी हमारी टीम होगी. प्लेंटी ऑफ थिंग्स कमिंग अप, वीक डेज हो या वीक

0: और चलिए दोस्तों इट्स 4:45 अभी अरविंद ने बात की आयरलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावेगेंजा सो इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है जहां पर आप जीत सकते हैं शानदार इनाम सो वेल फ्रेंड्स डोंट मिस द बिगेस्ट क्रिकेटिंग शोडाउन ऑफ द ईयर आयरलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावेगेंजा सीजन फॉर द ग्रैंड फिनाले होने वाला है ऑन संडे 13th of September SSR नेशनल क्रिकेट ग्राउंड मापू और मैच स्टार्ट होने वाला है सुबह के 10 बजे से सो इसी से जुड़ा हुआ आपका एक सवाल एंड लेट मी टेल यू इफ यू लव इंडियन फूड 500 rupees का गिफ्ट वाउचर at Saffron Grill could be yours. Play now and win a delicious Indian meal. और इसे जीतने के लिए आपका सवाल वो कौन सी बॉलीवुड फिल्म है जो कहानी कहती है ऑफ विलेज क्रिकेट टीम चैलेंजिंग द ब्रिटिश ड्यूरिंग कॉलोनियल इंडिया जी हाँ बॉलीवुड की एक बहुत ही फेमस फिल्म है जो कहानी कहती है एक विलेज क्रिकेट टीम की जो चैलेंज करते हैं ब्रिटिशर्स को ड्यूरिंग कॉलोनियल इंडिया कौन सी है ये फिल्म आपके सही जवाब 5499-1294 पर 5499-1294 पर आपके पूरे नाम और पते के साथ ऑल द बेस्ट
1: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
2: RM2

0: तो चलिए यहाँ पर हमने आपसे पूछा था सवाल विच बॉलीवुड फिल्म टेल्स द स्टोरी ऑफ अ विलेज क्रिकेट टीम चैलेंजिंग द ब्रिटिश ड्यूरिंग कॉलोनियल इंडिया एंड द राइट आंसर इज लगान. क्या बात है, यहाँ पर एक नहीं दो नहीं तीन नहीं बल्कि जितने भी जवाब आए बिल्कुल सही जवाब. सो यहाँ पर तो हम कह सकते हैं हमारे जो लिसनर्स हैं वो भी बिल्कुल बॉलीवुड फैंस हैं हमारी तरह. सो यहाँ पर हमें मिले बहुत सारे सही जवाब, एक्चुअली सारे के सारे सही जवाब. एंड आफ्टर लकी ड्रॉ जिनका नाम सामने आया है आप है मिस्टर ऋषि बंदवा फ्रॉम पोबासन. कंग्रेचुलेशंस. सो वेल ऋषि जी, आपने दिया है बिल्कुल सही जवाब और जीता है 500 रुपीज का गिफ्ट वाउचर एट सैफरन ग्रिल एंड ऑफर टू यू बाय आइलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावेगेंजा. चलिए आपको बता दें, डोंट मिस द बिगेस्ट क्रिकेटिंग शोडाउन ऑफ द ईयर आइलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावेगेंजा सीजन फॉर द ग्रैंड फिनाले होने वाला है संडे 13th of September SSR नेशनल क्रिकेट ग्राउंड मापू. शुरू होने वाला है सुबह 10 बजे से. ऑर्गेनाइज बाय मॉरिशस क्रिकेट फेडरेशन इन पार्टनरशिप विद इंडियन ऑयल सर्वो एंड को स्पॉन्सर्ड बाय MYOP. This thrilling season kicked off on 1st of August. 6 power pack teams ke saath Continental, AMG, APP, Campus Abroad, One Health and Thomas Cook. So join us live at the ground for a day full of high energy cricket, fun and excitement. Cheer kar sakte hain apni favorite team ke liye and enjoy kar sakte hain great food, music and stand a chance to win exciting gift vouchers while Radio Masti goes live from the ground 11 baje se lekar din ke 2:30 baje tak. So save the date. Yes, it's 13th of September, Sunday, SSR National Ground, National Cricket Ground, Mapu, subah 10 baje se. So chaliye dosto, abhi ke liye to aap hamara saath de rahe hain. And good music continues on RM2 Radio Masti.
1: RM2 Radio Masti. Feel the Masti.

सो वंस अगेन हमारे विनर मिस्टर ऋषि बंधुआ आपको कहेंगे कांग्रेचुलेशंस, और जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग. जीतने के मौके और भी मिलेंगे. ये है आपका अपना रेडियो मस्ती, सो स्टे कनेक्टेड. थोड़ी ही देर में हम बढ़ने वाले हैं टुवर्ड्स योर इंग्लिश फ्लैश न्यूज. फरी का साथ है एंड दैट्स योर रश आवर ऑन रेडियो मस्ती.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: So well, that was in the voice of Kunal Ganjawala. चन्ना वे घर आ जावे. Well, सुबह सुबह तो भाग दौड़ रहती है कि भाई काम पर पहुंचना है, कहीं काम पर लेट ना हो जाए, कहीं बॉस नाराज ना हो जाए. लेकिन जैसे काम खत्म होता है, everyone rushes back home, जैसे पता नहीं कहाँ जाने के लिए देर हो रही है. लेकिन I guess कि वो जो बच्चों वाली excitement होती है, स्कूल खत्म और भाग कर घर पहुंचना होता है, वही एक्साइटमेंट हम सब में भी होती है कि कब काम खत्म हो, कब हम घर पहुंचे. लेकिन सेफली पहुंचना जरूरी है. सो एंजॉय योर राइड. अभी के लिए इट्स टाइम फॉर योर रफ्तार वाइब्स. मैं हूं परी आपके साथ. वार्म वेलकम इन दिस आवर.
1: RM2
2: रेडियो मस्ती.
1: फील द मस्ती.
0: तो यहाँ पर गौर म्यूजिक का कारवां जारी रहेगा. रफ्तार वाइब्स अभी से लेकर शाम के 7 बजे तक आपका और मेरा साथ. अलिशा चिनॉय की आवाजें. दिस वन गोज आउट फॉर ऑल द लिसनर्स. एंजॉय योर ड्राइव बैक होम. एंड दिस वन गोज आउट फॉर यू ऑल.

0: टू रेडियो मस्ती।
1: गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपनी पूजा को अधिक पवित्र और आनंदमय बनाएं और केजी क्लासिक प्योर घी के साथ एक सदी से भी ज्यादा भारत का असली घी मंडी पर उपस्थित है। इम्पोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय आर रैपिड सर्विसेज लिमिटेड। फोन नंबर 4128468। आर के जी क्लासिक प्योर घी विशेष यू अ पायस गणेश चतुर्थी।
0: RM2

0: FM tune.
1: Traffic update.
0: सो वेल दोस्तों, इट्स टाइम फॉर योर ट्रैफिक अपडेट्स। अगर आप अभी रोड पर हैं, सो थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा कॉशन एंड फुल अटेंशन के साथ ड्राइव करें। पोर्ट लुइस से आ रहे हैं, यानी कि नॉर्थ से अगर पोर्ट लुइस की तरफ आ रहे हैं, साउथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो वहां पर आपको ट्रैफिक मिल सकता है। और साथ ही साथ यही हाल अगर हम कहें तो देखा जा रहा है दैट पोर्ट लुइस में भी ट्रैफिक, रिजवी एबन की साइड भी, बोबासे, रोजेल, फिनिक्स, सेंट जॉन, काटरबोन, रोजबेल एंड इवन क्यूप। सो वेल, यहाँ पर जो कम्यूटर्स हैं, पीक आवर्स हैं ट्रैफिक की वजह से, जर्नी में यूजुअल थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम आप अलाउ कर सकते हैं। मेन रोड्स पर ट्रैफिक ग्रेजुअली बिल्डअप हो रहा है, कुछ जगहों पर हैवी ट्रैफिक, सो रश में लेन कटिंग या फिर सडन ओवरटेकिंग, इसे आप अवॉइड करें। साथ ही यहाँ पर मोका एबन की साइड अगर हम देखें, सो यहाँ पर भी इवनिंग कम्यूटर्स की वजह से मूवमेंट थोड़ा सा स्लो। और अगर जैसे हम हमेशा कहते हैं, कोई अपॉइंटमेंट्स है कहीं पर, आपको जल्दी पहुँचना है, सो लीव अ लिटिल अर्ली ताकि आपका जो बफर टाइम है, आपके पास इनफ टाइम हो आराम से पहुँचने के लिए। इवन टू व्हीलर्स, आपके लिए भी कुछ अपडेट्स दैट हेलमेट को हमेशा पहन के रखें, स्पीड को कंट्रोल रखें एंड आईज ऑलवेज ऑन द रोड। ट्रैफिक चाहे स्लो हो, लेकिन आपका पेशेंस हमेशा फास्ट होना चाहिए। सो पेशेंस रखिए, डेस्टिनेशन पर सेफली पहुंचे। एंड अगर रोड्स पर कुछ है, कुछ अपडेट्स आपके पास, यू कैन ऑलवेज सेंड अस योर अपडेट्स ऑन 5499-1294।
1: RM2
2: रेडियो मस्ती,
1: फील द मस्ती।
0: तो चलिए अब गुलाबी शाम की ओर हम भी आगे बढ़ रहे हैं। एंड म्यूजिक कंटिन्यूज ऑन RM2 रेडियो मस्ती। इट्स टाइम फॉर योर ऑफ द आवर वाइब्स, परी का साथ शाम के 7 बजे तक। दिस वन गोज आउट फॉर ऑल द लिसनर्स। ड्राइव सेफली, रीच सेफली।

0: north, south, east, or west. Tune into the very best. Radio Masti, your number one Balalut station.
1: Fashion tips powered by Halkari Fashion, house of ready-made garments.
2: और चलिए दोस्तों, यहाँ पर शाम के 5:40 एंड टाइम टू शेयर सम फैशन टिप्स आपके साथ. ड्रेस फॉर मूड एंड नॉट जस्ट फॉर द ओकेशन. कभी कभी आउटफिट डिसाइड करने से पहले आस्क योरसेल्फ कि आज मैं कैसा फील करती हूँ एंड हाउ आई वांट टू ड्रेस. उसके बाद जैसे

0: मूड होगा अगर आप वैसे ड्रेसअप करेंगे और रेडी आपका ड्रेस स्टाइलिश लगने ही वाला है। द थर्ड पी एस ट्रिक का यस, इसके बारे में अगर बात करें सो जीन्स प्लस टी शर्ट बोरिंग लग सकता है, अगर आप ऐड करें एक थर्ड एलिमेंट जैसे कि एक ब्लेजर, एक वेस्ट कोट, ओवरसाइज शर्ट, स्कार्फ या इवन एक स्ट्रक्चर्ड बैग, बस एक्स्ट्रा लेयर और सडनली बेसिक बिकम्स स्टाइलिश। और आप कर सकते हैं बोरो वन डिटेल फ्रॉम मेंस वेयर, अ क्रिस्प शर्ट, बॉयफ्रेंड ब्लेजर, स्ट्रेट ट्राउजर्स, चंकी वॉच या फिर लोफर्स। मेंस वेयर इंस्पायर्ड पीसेस जो है ये आउटफिट को एफर्टलेसली कूल एंड कॉन्फिडेंट फिनिश देते हैं, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। और कभी कभार लोगों की आदत होती है कि सब कुछ मैचिंग मैचिंग, यानी कि अगर येलो ड्रेस पहना है जस्ट सोचिए येलो ड्रेस के साथ येलो जूते, येलो इयररिंग्स, नो नो नो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सो स्टॉप मैचिंग एवरीथिंग, बैग सेम कलर, शूज और शूज के साथ बेल्ट, सब कुछ मैच करना जरूरी नहीं होता है, बस क्रिएट कनेक्शन करें आप और आपका जो इयररिंग है मे बी एक येलो ड्रेस के साथ आप कॉन्ट्रास्ट को इयररिंग्स या फिर एक गोल्ड इयररिंग्स पहन सकते हैं, सिल्वर इयररिंग्स पहन सकते हैं। सिंपल जितना रखेंगे आप उतना ही आप ट्रेंडी दिखेंगे। और जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि स्टाइलिश रखना अपने आप को ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और कभी कभार थोड़े से चेंजेस आपके लुक को एकदम एनहांस कर सकते हैं। सो जैसे हम हमेशा कहते हैं स्टे स्टाइलिश एंड स्टे कनेक्टेड RM2 रेडियो मस्ती के साथ।
1: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हलकोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
2: RM2
3: रेडियो मस्ती,
2: फील द मस्ती।
0: और स्टाइलिश दिखेंगे तो फिर थोड़ा सा नखरा तो बनता है। चलिए दोस्तों, म्यूजिक कंटिन्यूज ऑन RM2 रेडियो मस्ती। इट्स टाइम फॉर योर रफ्तार वाइब्स, जहां पर ट्रैफिक के साथ साथ गुड म्यूजिक होता है। और आपकी ये जो ट्रैफिक टाइम है, ये जो टाइम है जहां पर आपको घर पहुंचने की जल्दी होती है, उसे हम थोड़ा सा म्यूजिकल, थोड़ा सा मैजिकल बनाते हैं। परी का साथ है शाम के 7 बजे तक। साथ देने के लिए शुक्रिया। एंजॉय दिस वन।

So well, ladies and gentlemen, that was a lut le gaya aapke liye. Abhi ke liye to aap hamara saath de rahe hain. And I know traffic time ke baad ab dheere dheere. I do hope that aap bhi destination ki aur aage badh rahe hain. Lekin yahi time mein hum koshish karte hain ki aapke liye kuch khas segments lekar aayein, kuch achhe gaane lekar aayein, jinhein sunte sunte aap aaram se apne ghar ki aur badh sake. And we do know that ghar par pahunch kar jo sukoon milta hai, jo aaram milta hai, din bhar ki thakan ko door karne ka mauka milta hai. We all crave for that. So bas aaram se ghar pahunche aur uske baad रिलैक्स करें. गाने तो हमारे तब भी चलते रहेंगे ऑन RM2 रेडियो मस्ती. चलिए अभी के लिए कुछ मैसेजेस एंड डेडिकेशंस आ गए हैं 5499-1294 पर. कहते हैं हेलो डियर सिस्टर, मैसेज है फॉर अर्शद. यू आर फॉरएवर एंड ऑलवेज द हीरो ऑफ माय हार्ट, द लव ऑफ माय लाइफ, यू आर ऑलवेज ऑन माय माइंड, लव यू टू मच. ये है उनकी वाइफ रिबेका की ओर से. हस्बैंड वाइफ इतना प्यार, बस ये प्यार ऐसे ही बना रहे और आप दोनों के नाम आई डेडिकेट द नेक्स्ट गाना. एंड वेल, यहाँ पर रोशनी कह रही है कि आज तो मैं बिल्कुल ब्लैंक हूँ, पता नहीं क्या खाना पकाऊँ. ये तो हर लेडी के दिमाग में चलता रहता है. एवरी डे ये सोच होती है कि भाई आज हम क्या पकाएं. लेकिन सोचिए कि कौन सी चीज़ है जिसके बारे में आज आप क्रेव कर रही हैं, कौन सी वो चीज़ है जो मन कर रहा है खाने के लिए, बस उसी को सोचिए और उसी को बना दीजिए. अभी के लिए जो अगला गाना है वो आपके नाम है. आई डू होप गाने को सुनते हुए आपको कोई इंस्पिरेशन मिल जाए कुछ एकदम यम्मी, कुछ डिलिशियस बनाने के लिए. सो थैंक यू सो मच रोशनी. अगला गाना होगा आपके नाम किशन बाल गोबिन, ऑल द वे फ्रॉम यूके हमारा साथ दे रहे हैं. एंड वांट टू विश लवली डैड अ वेरी हैप्पी बर्थडे. और विशेज है फ्रॉम देवी एंड सभी परिवार, बाल गोबिन परिवार एंड साथ ही जो भी उनके फैमिलीज, जो भी लव्ड वंस हैं उनके लिए भेज रहे हैं प्यार. बॉन्वे फ्लैग से वी लव यू पापा मामा एंड ऑल द वे फ्रॉम यूके, आपके लिए आ रहा है बहुत सारा प्यार. सो यहाँ पर मिस्टर रवि, आप भी हमारा साथ दे रहे हैं. कॉम्प्लीमेंट्स, थैंक यू, अच्छे लगते हैं हमें, थैंक यू. अगला गाना होगा आपके लिए, साथ देने के लिए शुक्रिया. और आज ओजस्वी सोहाती अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं, पुत्र दो हैमलेट रहती हैं और

So for now, आपके मूड को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, थोड़ा सा रोमांटिक बनाते हैं फ्रॉम द फिल्म पद्मावत, नीति मोहन की आवाज एंड वी हैव दिस ब्यूटीफुल रोमांटिक गाना आप सभी के लिए जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं. सो गानों को सुनते हुए आप अपने टाइम को एंजॉय करें, अपनी ड्राइव को एंजॉय करें, रीच सेफली एंड स्टे कनेक्टेड RM2 रेडियो मस्ती के साथ.

0: नमस्कार, सोमवार 7 सितंबर 2026 के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले आज की सुर्खियां। कार्गो हैंडलिंग कॉरपोरेशन नए उपकरणों की खरीद के वास्ते 2.8 बिलियन रुपए का निवेश कर रहा है। उद्देश्य है ट्रांसशिपमेंट की गतिविधियां बढ़ाना और कार्यक्षमता में सुधार लाना। 2025 के 73 लॉरिएट्स के सम्मान में आज स्टेट हाउस खेजी में एक खास समारोह लगाया गया। ये मौका रहा उनकी कड़ी मेहनत और त्याग की सराहना करने का। इस समारोह में गणराज्य के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा कई अन्य महानुभाव और लॉरिएटों के परिवार वाले उपस्थित हुए। कल पेलावाल के मकबरे तक की तीर्थ यात्रा शुरू होगी। हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां का दौरा करते हैं। इसके लिए हर साल की तरह सेंट क्वा को नया स्वरूप दिया गया है। इस महत्वपूर्ण गतिविधि के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। राष्ट्रीय टास्क फोर्स के अधिकारियों ने आज स्थल का दौरा किया। और भारत की राजधानी दिल्ली में कल एक आवासीय इमारत के ढहने से कम 7 लोगों की मौत हुई है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि हादसे के वक्त इस 5 मंजिली इमारत में कितने लोग मौजूद थे। कार्गो हैंडलिंग कॉरपोरेशन नए हैंडलिंग उपकरणों की खरीद में 2.8 बिलियन रुपए का निवेश कर रहा है। इसका उद्देश्य ट्रांसशिपमेंट यानी माल की अदला बदली की मात्रा बढ़ाना और कार्यकुशलता में सुधार करना है। ये कॉन्ट्रैक्ट चीनी कंपनी HHMC को दिया गया है और नए क्रेन जनवरी 2028 से चालू हो जाएंगे। आज सुबह पोटरी में इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। कुणाल गुजी, रजनी पीकर।
1: चीनी कंपनी HHMC को दिए गए कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत 2028 के जनवरी महीने से 2 नए पोर्टिको शिप टू शो कार्यरत होंगे। ये मौजूदा पोर्टिको के साथ जुड़ जाएंगे। नई क्रेन्स की खरीदारी कार्गो हैंडलिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की 2026-2030 की निवेश योजना के पहले चरण के अंतर्गत आती है। कार्गो हैंडलिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन नोबे मासेल ने कहा, ये निवेश योजना एक मजबूत भविष्य के बंदरगाह की नींव रखती है जो वैश्विक व्यवसाय की जरूरतों को पूरा कर सके और उत्पादकता बढ़ा सके। मकसद है कार्यों में सुधार लाना, खासकर इलाकाई स्तर पर होड़परस्त बंदरगाह के चलते। इस निवेश योजना में जल्द ही 5 नए हाइब्रिड पोर्टिको की खरीदारी शामिल है। साथ में कंटेनर हैंडलिंग के लिए 15 ट्रैक्टर और ट्रेलर तथा 2 रिच स्टैकेज भी शामिल हैं। जेमिनी की TUV कंपनी की ओर से डिजाइन को अप्रूव किया गया और पोर्टिको को कायम करने तथा बिठाने के लिए चंदाव हाई सी हैवी ड्यूटी मशीनरी को ठेका दिया गया है। HHMC के मार्केटिंग डायरेक्टर मार्विन मैंग ने कहा, बंदरगाह के ये क्रेन ज्यादा बड़े हैं, 72.5 मीटर चौड़ा, ऊंचाई 50 मीटर की, पर्यावरण प्रिय भी है, नए टेक्नोलॉजियों से लैस है, ज्यादा कारगर भी। ये प्रति घंटे के हिसाब से 28 से 30 कंटेनरों का संचालन कर सकता है। कार्गो हैंडलिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से इन उपकरणों की खरीद के लिए 2.7 बिलियन रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। इसका मकसद है कंटेनरों की आवाजाही बढ़ाना और बंदरगाह में कारगरता में सुधार लाना। कार्गो हैंडलिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर गासन दोसामी ने कहा, हम ज्यादा ट्रांसशिपमेंट कर पाएंगे, ज्यादा जहाज मॉरिशस आ पाएंगे, जिससे कि आर्थिक दृष्टि से अन्य सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे, बंकरिंग भी होंगे, मॉरिशस पोर्ट अथॉरिटी को ज्यादा आय भी प्राप्त होंगे। इस पहले चरण में अहम साझेदारी का उल्लेख नहीं, ना ही किसी प्रकार के कर्ज का उल्लेख। कार्गो हैंडलिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के खुद के फंड से ऐसा किया जा रहा है। अभी कार्गो हैंडलिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से प्रतिवर्ष 8 लाख कंटेनरों का ट्रांसशिपमेंट किया जाए।

0: जा रहा है। ऑपरेटर ने दो वर्षों में एक बिलियन ऑपरेटरों ने दो वर्षों में एक मिलियन कंटेनर तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस बीच भारत की तरफ से ट्रांसशिपमेंट कार्रवाइयों से संबंधित सिमुलेटर अगले महीने पहुंच रहा है। इसका इस्तेमाल बंदरगाह कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए किया जाएगा।
1: आज 73 नौजवानों को सम्मानित किया गया। ये 73 ऐसे युवा हैं जिन्हें सालों की मेहनत और त्याग के बाद उनके प्रयासों का फल मिला है। आज सुबह स्टेट हाउस में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों और छात्रों के करीबियों की उपस्थिति में वर्ष 2025 के लॉरिएटों के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया। पिछले शुक्रवार को जारी एक विज्ञप्ति में समाज सुरक्षा मंत्रालय ने इस साल सितंबर से दिसंबर के बीच 61 वर्ष के होने वाले लोगों को बेसिक रिटायरमेंट पेंशन BRP के लिए अपना पंजीकरण कराने के लिए आमंत्रित किया है। पेंशन प्राप्त करने की ये एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इस बार इसमें वो पहला समूह शामिल है जो BRP के लिए पात्रता आयु बढ़ाए जाने से प्रभावित हुआ है। यासिंदीन मामूद की रिपोर्ट पेश है।
2: सामाजिक सुरक्षा दफ्तर में दिन के 12 बजे हाथों में पहचान पत्र, जन्म पत्र, पते का प्रमाण और बैंक खाते की जानकारी के साथ काउंटर पर पहुंच रहे ये वे लोग हैं जो इस साल सितंबर से दिसंबर के बीच 61 साल के हो जाएंगे और ये बेसिक रिटायरमेंट पेंशन पाने के लिए उम्र बढ़ाए जाने के बाद शुरुआती लाभार्थियों में शामिल हैं।
3: Trois mois avant qu'il m'ait 60 ans. Là, je tiendrai à vous, je me donnerai une réponse, mais vous avez venu pour venir inscrire à deuxième coup.
4: L'année dernière, j'ai 60 ans. Et je n'ai pas tout envie de venir, mais mes enfants peuvent dire venir parce qu'ils m'ont pensé, puis passer une information, puis dire qu'ils ont venu déposer un document.
2: Panjikaran ki ye prakriya koi nayi baat nahi. Jo bhi vyakti basic retirement pension paane ke liye patra hota hai, use samajik suraksha vibhag mein आवेदन करना होता है। मंत्रालय की ओर से जारी विज्ञप्ति का मुख्य उद्देश्य पेंशन प्रणाली में सुधार प्रक्रिया की याद दिलाना है।
5: Samedi bon, soit je peux célébrer, soit je peux célébrer cette 61 ans dans les semaines qui viennent, les mois qui viennent. Et cette fin arrive l'âge d'éligibilité à ce qu'on appelle full pension, sa pension qui est à 15 555 roupies aujourd'hui là. Maintenant, avec l'avènement du SAP, vu qu'il y a une possibilité qui comprend pension en retour et augmenter. Peut-être nous parlons d'un système que, même si on va faire une application en retard, mais vous prenez une compensation qui pourrait être payée, donc pour gagner une pension plus élevée. Donc on peut travailler là.
2: 1 janvier 2027, se basic retirement pension ki jagah state age pension lagu ki jayegi. Jo log us tarikh tak pehle se BRP ke labharti honge, unhein koi naya aavedan karne ki avashyakta nahi hogi. Pension ki rashi mein कोई बदलाव नहीं होगा।
1: मॉरिशस बार एसोसिएशन के वार्षिक सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में वर्तमान में मॉरिशस में मौजूद भारत के पूर्व चीफ जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने इस सोमवार को कई औपचारिक मुलाकातें की। उन्होंने न्याय और संस्थानों के आधुनिकीकरण पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम और राष्ट्रपति धर्म गोकुल सहित कई राज्य के गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात की। फवल आवाल की तीर्थ यात्रा से ठीक एक दिन पहले सेंट क्वा का रूप बदलने के लिए तैयार है। गहरी आस्था और आखिरी तैयारियों के बीच ये इलाका इस मंगलवार से हजारों श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए तैयार है। आस्था का ये अवसर हर साल इस इलाके की कायापलट कर देता है और कैथोलिक समुदाय से कहीं आगे के लोगों को एक साथ लाता है। तैयारियों की आखिरी समीक्षा के लिए नेशनल टास्क फोर्स आज स्थल का दौरा किया। संतना पोंसनो, रजनी बिकर।
0: सैखों में अभी के लिए सामान्य रूप से जीवन चल रहा है, लेकिन पेलावाल के मकबरे की ओर जाने वाली इस गली में ऐसे संकेत कि वो अहम दिन नजदीक ही है। फूल, मोमबत्तियां, मालाएं, टी-शर्ट्स, विक्रेता अपने स्टॉल्स लगाने में व्यस्त, वे भी तीर्थयात्रियों का स्वागत करने की तैयारी में। मंगलवार से ये समा बदलने वाला है। तीर्थयात्रियों की आवाजाही जो होगी, हर साल हजारों लोग यहाँ फौदलावाल को श्रद्धांजलि अर्पित करने आते हैं। फौदलावाल 1841 में मॉरिशस आए थे। वे गरीबों के मसीहा कहलाए जाते हैं। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में वे जरूरतमंदों और मॉरिशस के पुराने दासों की मदद करने में बिता रहे थे। उनके निधन के 160 वर्ष बाद आज भी वे बहुत से मॉरिशनों के दिल में बसे हुए हैं। इस बीच संबंधित तैयारियां की जा रही है। सोमवार 7 सितंबर को नेशनल टास्क फोर्स स्थल पर मौजूद और इंतजामों का जायजा लिया जा रहा था। सेंटर दे पेलरिनाज

0: सूबे अलावार के मुताबिक दिन के दौरान 60,000 से 75,000 लोगों के आने की उम्मीद है और पूरे महीने के लिए करीब 2,00,000 लोग।
1: भारतीय राजधानी दिल्ली में एक रिहायशी इमारत ढहने के एक दिन बाद बचाव कर्मी मलबे को हटाने में जुटे हैं। इस हादसे में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है। करुणा लालू।
2: दिल्ली में एक आवासीय इमारत के गिरने से कम 7 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के सत्यानिकेतन इलाके में स्थित ये इमारत दिल्ली विश्वविद्यालय के साफ कैंपस में थोड़ी दूर पर है। हादसे के वक्त इमारत मालिक वहीं पर नीचे था, कैमरे में उस स्थल से भागते हुए देखा गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इमारत के बेसमेंट में पानी जमा होने और वहां चल रहे मरम्मत कार्य के कारण ये इमारत ढह गई। इमारत का नाम हॉस्टल डेज बताया गया।
3: दुखद है इस बिल्डिंग के ऑनर की जो लापरवाही है। बहुत पुरानी बिल्डिंग थी और बेसमेंट में पानी भरा होने के कारण उसके पिलर जो है वो गिर गए, पूरी बिल्डिंग ढह गई। और इस बिल्डिंग पे भी कार्रवाई हो गई, इसके मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा। सरकार की ओर से जितने भी वो अधिकारी हैं जिनकी अनदेखी थी, लापरवाही थी या कोई भी कारण था, ऐसे अधिकारियों को भी आज उनका एक्शन होगा, किसी को भी छोड़ेंगे।
2: इमारत में रहने वाले अधिकांश लोग छात्र थे। माना जा रहा है कि हादसे के समय कई छात्र अपने कमरों में ही थे क्योंकि रविवार को कॉलेज में कक्षाएं नहीं होती। दिल्ली सरकार दिल्ली नगर निगम के सहयोग से ऐसी नीति तैयार कर रही है जिसके तहत पेइंग गेस्ट आवास, नर्सिंग होम और स्कूलों समेत सार्वजनिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होने वाली इमारतों का समय समय पर संरचनात्मक ऑडिट और सुरक्षा प्रमाणन अनिवार्य किया जाए। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार इस त्रासदी से प्रभावित छात्रों के माता पिता के संपर्क में है और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है।
1: उधर नेपाल तिब्बत में आए विनाशकारी अचानक बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,355 हो गई है। 26 अगस्त को रसुवा जिले में भोटे कोशी नदी में आई इस भयानक बाढ़ में अपनी जान गंवाने वालों के सम्मान में आज नेपाल में एक राष्ट्रीय शोक दिवस का आयोजन किया जा रहा है।
2: नेपाल की विनाशकारी बाढ़ में मारे गए सैकड़ों लोगों की याद में आज राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। 3 करोड़ की आबादी वाले हिंदू बहुल नेपाल में सरकारी कार्यालयों और विदेश में स्थित नेपाली मिशनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा मस्तूल पर है। 26 अगस्त को हिमालयी क्षेत्र में नेपाल और चीन के तिब्बत की सीमा पर एक ग्लेशियर का हिस्सा टूटने से नदी में भारी मात्रा में पानी और मलबा आ गया। इससे मिट्टी और चट्टानों का एक विशाल सैलाब पैदा हुआ जिसने कस्बों और गांवों को बहा दिया और सड़कों और राजमार्गों को भारी कीचड़ और मलबे के नीचे दबा दिया। इस आपदा में कम से कम 1380 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 5,000 से अधिक लोग लापता हैं। इस बीच वहां खोज और बचाव अभियान जारी है। हाल के दिनों में 4 लोगों को चमत्कारिक ढंग से जीवित बचाया गया। इनमें एक चीनी नागरिक शामिल हैं, जिसे शनिवार को एक सुरंग से बाहर निकाला गया। अन्य लोगों में 2 जल विद्युत परियोजना कर्मी शामिल हैं, जिन्हें शुक्रवार को एक सुरंग से बचाया गया था। इसके अलावा शनिवार को एक नेपाली महिला को उसके दबे घर के मलबे से जीवित निकाला गया।
1: और थोड़ी देर पहले हम आपको बता रहे थे कि आज 73 नौजवानों को सम्मानित किया गया। ये 73 ऐसे युवा हैं जिन्हें सालों की मेहनत और त्याग के बाद उनके प्रयासों का फल मिला है। अनाबेल वुल्बेया, करुणा लालू।
2: अपने माता पिता, परिजनों और शिक्षकों से घिरे 2025 के 73 लॉरिएटों ने इस खास पल का भरपूर आनंद लिया। सभी को स्टेट हाउस में आभार के साथ आमंत्रित किया गया।
4: Il y a beaucoup d'émotions. Mon copain est sensiblement émotion depuis février. Oui, le trip encore, c'est venir gouverner à la Banque Maurice. Pour prendre ici, pour regarder les émotions, espérer réaliser quand on finit mon étude dans l'économie.
5: Jamais moi, tu pensais qu'il m'a pour réussir, fait, il m'a pour venir ici à State House, mais

0: J'ai une écoute de mon prière et aussi je suis bien content qu'il me reste amène mes parents aussi ici avec moi et que la fierté est exceptionnelle.
1: Un sentiment de joie pour nous tous d'être ici. Et ça montre vraiment le résultat des efforts qu'on a entamés pendant plusieurs années, vraiment.
2: Je suis très content, je suis très ému parce que c'est une affaire que je suis attendue depuis tout le temps. Je suis tout le monde bien travaillé dur et ça, c'est mon récompense.
3: लेकिन लौरियत होने का मतलब केवल शानदार परिणाम हासिल करना नहीं है. गणराज्य के राष्ट्रपति के अनुसार ये नया चरण खोज परिस्थितियों के अनुरूप ढलने और निरंतर सीखने का भी होना चाहिए.
4: We live in a global village which is more connected than ever before. Broaden your educational horizons. Explore career opportunities. Be alert, flexible and adaptable. Wherever you are, and whatever you do, let Mauritius remain in a corner of your heart.
3: व्यक्तिगत सफलता के साथ शिक्षा व्यवस्था भी है. इस समारोह में दो श्रेणी के लॉरिएटों को सम्मानित किया गया, मेधा और सामाजिक मानदंडों के आधार पर चुने गए छात्र. अधिकारियों द्वारा ये रेखांकित करने का एक तरीका है कि उत्कृष्टता और समानता साथ साथ आगे बढ़नी चाहिए.
4: It encourages students to strive for excellence and maintains a high standard of academic performance. But most importantly, it can provide talented students from modest backgrounds and from regional colleges with access to some of the world's best universities. Opportunities that might not have been possible for them because financially beyond their reach. We should not therefore see the debate as one between excellence and equality. Our responsibility is to pursue both. We must preserve opportunities for excellence while continuing to improve fairness, accessibility, and inclusiveness of our education system. This year we have decreased the income ceiling for eligibility for the scholarship scheme for students from vulnerable families. This is because we want to show our determination to further widen access to scholarship opportunities and to ensure that deserving students, they're not excluded simply because their family income barely exceed the existing threshold.
3: इनमें कई युवा अब विदेशों में अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे. उनके वापस लौटने की संभावना और व्यापक रूप से अपनी प्रतिभाओं को रोकने तथा विदेश गए प्रतिभाशाली युवाओं को वापस लाने की मॉरिशस की क्षमता पर भी सवाल खड़े करती हैं.
4: We must offer our young people not only a good education, but also opportunities, meaningful careers, the right environment to motivate them. If you want to attract the best and the brightest, you must also look at their pay packet. We have to attract these people. Many people don't want to come. This is what this mindset that we have to change if we want to move to become a first world country. You may have a very good job abroad. You may get a better pay. But at the end of the day, you're still a foreigner abroad. This is your country. These are your roots.
3: स्टेट हाउस से लेकर मॉरिशस और विदेशों की यूनिवर्सिटियों तक 2025 के ये 73 लॉरिएट अब अपनी कहानी का अगला अध्याय लिखने के लिए तैयार हैं.
5: और अब आखिर में चलिए जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल.
6: कल सुबह 10 बजे से मॉरिशस में ऊंची लहर उठने की चेतावनी जारी की गई है, जो गुरुवार 10 सितंबर 2026 तक शाम 4 बजे तक लागू है. दक्षिण पश्चिम की ओर से मस्करिंस टापों की ओर ठंडे हवा की लहर बह रही है. ये कल सुबह से हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करने लगेंगे. इसके गुजर जाने के बाद एक काफी जोरदार एंटी साइक्लोन का असर होगा, जिसकी वजह से टापों भर में मौसम हवादार रहेगा और ठंडी हवा बहेगी. अगले 24 घंटों के लिए अनुमान लगाया जाता है कि रात में बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर बारिश होती रहेगी, मुख्य रूप से टापू के आधे दक्षिणी हिस्से में और सेंट्रल प्लाटू पर. सामान्य रूप से वर्षा होती रहेगी, कुछ इलाकों पर कोहरे छाए रहेंगे, रात के दौरान आसमान साफ हो जाएगा। कल टापू भर में रह रहकर बारिश होती रहेगी, कुछ इलाकों में कोहरे छाए रहेंगे। दक्षिण की ओर से करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके रात के दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। कुछ इलाकों पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बहने लगेगी। कल से ऊंचाइयों पर कुछ कार्य करने से बचने की मांग की जा रही है। साथ में सड़कों पर भी सावधान रहें, क्योंकि उल्टी तरीके से हवा बहेगी। समुद्र खराब रहेगा, 4 से 6 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। ये ऊंची लहरें ज्वारभाटे के दौरान तटीय इलाकों तक भी पहुंच सकते हैं, मुख्य रूप से पश्चिम में और दक्षिण में निचले वाले इलाकों तक। इस तरह मच्छरों से, प्लेजर क्राफ्ट चलाने वाले लोगों से और अन्य लोगों से आम जनता से मांग की जाती है कि ज्वारभाटे के दौरान दूर समुद्र में और तटों के पास न जाएं। तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम तापमान 16 और 19 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम तापमान 19 और 22 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 21 और 23 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम तापमान 24 एवं 27 डिग्री सेल्सियस के बीच। शाम 6:02 पर सूर्यास्त, जबकि सुबह 6:12 पर सूर्योदय।

0: तो मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही समाचार समाप्त हुए। हम लुडोविक को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय शाम के 6:22 हुए हैं। थोड़ी देर में शोक समाचार। Rue Labourdonnais, Maybug में 89 साल की 89 years old की श्रीमती माहित्री तिलक, पैदाइशी नाम तिलवा और जुदादी मानती नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके घर Rue Labourdonnais, Maybug से उठाकर तोंबो मेबर्ग की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। नंबर 24 जानेट स्ट्रीट विल में कल से मिली थी हमें 83 साल की 83 years old की श्रीमती सूर्या कीर्ति रामफल, पैदाइशी नाम झकुरी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके घर नंबर 24 जानेट स्ट्रीट विल में कल से मिली थी से उठाकर विल में की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। शिवाला रोड त्रियोली में 70 साल की 70 years old की श्रीमती अनीता जगलोल, पैदाइशी नाम कांदाई, की मृत्यु हो गई है। वे हमारे सहयोगी कैमरामैन सचिन जगलोल की माँ थी। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके घर शिवाला रोड त्रियोले से उठाकर टेमिनस त्रियोले की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। रारोड श्वाजी बेचुकाप में 77 साल की 77 years old की श्रीमती राजिका हरी, पैदाइशी नाम इसराम, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके पति श्री दयानंद हरी के घर ओथवायल श्वाजी बेचुकाप से उठाकर सैमौते बेचुकाप की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। रारोड ग्रांड पॉइंट पीमा में 49 साल के 49 years old के श्री मनोज सिचन, जो चुना नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके घर रारोड ग्रांड पॉइंट पीमा से उठाकर पॉइंट बीश की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। सीताराम लेन लावंचुआ में 70 साल के 70 years old के श्री सुखदेव खनरारी, जो टोंपले नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 12:30 बजे उनके घर सीताराम लेन लावंचुआ से उठाकर लावंचुआ की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 12:30 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. RM2 Radio Musty. Feel the Musty.

और चलिए दोस्तों आफ्टर समाचार एक बार फिर आपका हम वार्म वेलकम कर रहे हैं दैट्स योर रफ्तार वाइब्स और रवि के लिए रफ्तार थोड़ी सी धीमी होती हुई ट्रैफिक टाइम अब थोड़ा सा चिल होता हुआ जहां पर इतना ट्रैफिक नहीं है आराम से आप घर की ओर बढ़ सकते हैं अगर स्टिल ऑन द रोड्स वी हैव सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आपके लिए ऑलरेडी घर पहुंच चुके हैं सो अब आराम से रिलैक्स करते हुए आप गानों को सुन सकते हैं एंड ऑफ कोर्स हमारे साथ जितने भी लिसनर्स जुड़े हुए हैं हैव अ वंडरफुल टाइम और इन टू रेडियो मस्ती के साथ और परी का साथ है शाम के 7 बजे तक फॉर नाउ जुबिन नौटियाल की आवाज़ दिस वन गोज़ आउट फॉर ऑल हिज फैंस

तो चलिए दोस्तों, इट्स योर रफ्तार वाइब्स एंड 4 बजे से हमारी ये जर्नी शुरू हुई और अब इट्स टाइम के थोड़ी देर में हम आपको कहने वाले हैं अलविदा, लेकिन स्टिल कुछ और समय है जो हम आपके साथ बिताने वाले हैं। सो आपको हम हमेशा कहते हैं दैट अगर आप नहीं तो हम नहीं, यानी कि आपका प्यार जो हमेशा हम तक पहुँचता है। सो थैंक यू सो मच, मॉर्निंग हो या नाइट, आपके स्वीट मैसेजेस हमेशा हमें कंपनी देते हैं। सो टू डियर लिसनर्स जो कनेक्टेड रहते हैं, आपको तहे दिल से शुक्रिया और बस उम्मीद करते हैं दैट आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक ऐसे ही बना रहे और आप गानों को हमेशा एंजॉय करते रहे। फॉर नाउ इट्स टाइम टू रीड आउट आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस। 54991294 पर आपने भेजा है बहुत सारा प्यार। एंड यहाँ पर हमारे साथ प्रतिभा जी साथ दे रही हैं, थैंक यू जी, कटरबोन से हमारा साथ दे रही हैं। कहती हैं इन किचन एंड एंजॉयिंग द सॉन्ग्स, अगला गाना मेरे नाम, बिल्कुल जी होगा आपके लिए एंड साथ देने के लिए शुक्रिया। यहाँ पर कहते हैं गुडलैंड से साथ जुड़े हुए हैं आप है जानकी जी, सो थैंक यू सो मच जानकी जी, गुडलैंड से आप हमारा साथ दे रही हैं। सो अगला गाना इसे हम डेडिकेट करेंगे आपके नाम। प्रीतम जी आप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं ऑन RM2 रेडियो मस्ती। सो बस आपका मैसेज मैं थोड़ा देर से पढ़ रही हूँ, आई एम रियली सॉरी और आई डू होप यू आर स्टिल कनेक्टेड। डेडिकेट करेंगे गाना फॉर योर वाइफ वर्षा और साथ देने के लिए शुक्रिया ऑन RM2 रेडियो मस्ती। एंड यहाँ पर सुदेश जी कहते हैं लॉन्ग लॉन्ग वर्किंग आवर्स, करेज टू यू, थैंक यू सो मच सुदेश जी। बस आपकी ऐसी गुड विशेस पहुँचती रहे तो हमें भी काम अच्छा लगता है। वैसे ये तो बहुत ही स्वीट काम होता है जहाँ पर हम आपके लिए गाने चलाते हैं और फिर आपके ऐसे प्यारे मैसेजेस हम तक पहुँच जाते हैं। सो इट मीन्स अ लॉट एंड थैंक यू सो मच फॉर केयरिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली मैसेज। और कहते हैं हमको तो RM2 से यारी है और बस गाना हो जाए फॉर पति लाल देव, मामा शारदा, दीदी अनीता है और मौसी भाती और सभी गजादर परिवार है, सभी बेमल परिवार है एंड सभी बगन परिवार जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं। सुया बिहारी फ्रॉम कोंगोमा सभी को याद कर रही हैं, सभी के लिए डेडिकेट कर रही हैं एक स्वीट सा गाना। सच

So this one goes out for all the fans of Atif Aslam. फास्ट म्यूजिक के बाद अब टाइम टू थोड़ा सा स्लो डाउन. शाम का वक्त हो रहा है और आप भी हमारा साथ दे रहे हैं. सो आई एम श्योर कि ये जो गाने हैं ये दिल तक पहुंचने वाले हैं. तरीका साथ शाम के 7 बजे तक ऑन रेडियो मस्ती साथ दे रहे हैं आप भी. सो एंजॉय दिस वन.

0: north, south, east, or west. Tune into the very best. Radio Masti, your number one beloved station.
1: तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए शाम के 6:50 एंड यहाँ पर कनेक्टेड हमारे कुछ और दोस्त. सो ये जो प्यारा सा गाना है गोज़ आउट फॉर डियर एस्टीना. आई एम फाइन स्वीट हार्ट, थैंक यू सो मच, आप हमारा साथ दे रही हैं एंजॉइंग द प्लेलिस्ट एंड रेडियो मस्ती पर हाई वॉल्यूम पर गानों को आप इंजॉय कर रही हैं. एंड ये जो गाना है इसे आप डेडिकेट कर रही हैं फॉर ऑल योर लव्ड वंस इंक्लूडिंग डियर एस्ट दिव्या, और साथ ही साथ आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं. सो इट मीन्स अ लॉट टीना, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटिफुल मैसेज. गाना आपके नाम एंड फॉर ऑल योर लव्ड वंस, ऑफ कोर्स फॉर डियरेस्ट दिव्या एज वेल. यहाँ पर महेन सिगोबेन हमारा साथ दे रहे हैं, आप लाल माटी से डेडिकेट कर रहे हैं गाना फॉर वाइफ विश्वानी और साथ में सभी सिचन परिवार जो हमारा साथ दे रहे हैं. वी ऑल्सो हैव विद्यानी जी, आप भी हमारा साथ दे रहे हैं, सो थैंक यू. ये गाना आपके नाम महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़. एंड विद दिस ट्रैक हम एक और ब्यूटीफुल गाने की ओर बढ़ने वाले हैं. अभी के लिए आप साथ दे रहे हैं, सो नॉट टू फॉरगेट आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशन 5499-1294 पर.

एंड वेल फ्रेंड्स विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक इट्स टाइम फॉर परी टू से गुडबाय. आ गई है दिव्या आपको कुछ और प्यारे गानों के साथ एंटरटेन करने. मुलाकात होगी कल 2 से 4 के बीच में इन योर बॉम्बे टॉकीज. तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड रेडियो मस्ती के साथ.

0: आते जाते जो मिलता है तुमसा लगता है और प्यार में ऐसा ही होता है कि आप उठते बैठते खाते पीते बस उन्हीं का दीदार करना पसंद करते हैं और कभी कभी सामने से उनकी तस्वीर भी आ जाती है और बार बार उनका ही ख्याल आता है। बस ख्याल तो यही है कि हम और आप साथ साथ रहे रात्रि के 9 बजे तक और ऐसे ही आपको हम वेल एंटरटेन रखें खूबसूरत गीतों के कारवां के साथ। तो चलिए अगर आपको भी प्यार है और इस प्यार को थोड़ा सा और जताना चाहते हैं तो यहाँ पर हम आपका डेली डोज ऑफ एंटरटेनमेंट एंड डेली डोज ऑफ लव लेकर आए हैं फ्रॉम 7 to 9 जहाँ पर चलेगा आपका इवनिंग लाउंज दिव्या के साथ। सो चलिए आपके मैसेजेस डेडिकेशन ऑफ कोर्स ऑन 5499-1294 ज़रूर बताइएगा कि हमारे गीतों को सुनने के बाद आप किसको याद कर रहे हैं और कितने प्यार से याद कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स प्यार के बारे में बात कर रही है तो उतने ही प्यार से उनके नाम खास पैगाम भेजना चाहते हैं तो आपका ये पैगाम उन तक ज़रूर पहुंचाएंगे बहुत ही प्यार से। तो चलिए इस खूबसूरत म्यूज़िकल कारवां को आगे बढ़ाते रहेंगे ऑफ कोर्स आपके प्यार और सपोर्ट के साथ। एंड डोंट फॉरगेट मैजिकल नंबर है 5499-1294। अभी के लिए तो 7:08 हो चुके हैं। टोल दोस हैविंग द मील राइट नाउ आपको बना पिची शुभाहार और अगर आप लोग काम पर हैं आपको विश करेंगे बो कुराज इफ़ यू ड्राइविंग। कभी कभी काम थोड़ा लेट ख़त्म होता है और अगर आप घर वापस जा रहे हैं तो आपको हम रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ खिड़की को थोड़ा सा नीचे कर दीजिए ठंडी ठंडी हवाओं का पूरा मज़ा और साथ में हमारी गीतों का पूरा लुत्फ उठाइए।
1: Evening Lounge,
2: Evening Lounge,
3: RM2,
1: Radio Musti.

वाह क्या गाना है, सागर संग किनारे हैं, जिस तरीके से आप संग हमारी हैं। 7:20 दिव्या का साथ इन योर इवनिंग लाउंज, जहां पर हम चला रहे हैं कुछ कूल म्यूजिक आप लोगों के लिए। एंड इट्स अ वंडरफुल मंडे इवनिंग। हाँ, मुझे पता है कि मंडे ब्लूज बहुत सारे लोगों को होता है, स्पेशली जब सुबह होती है और आपकी नींद खुलती है और आपको ऐसा एहसास होता है कि पूरा हफ्ता इसको निकालना है काम पर। सो चलिए, आपको लोड्स एंड लोड्स ऑफ करेज एंड बहुत सारा प्यार भी। एटलीस्ट ये मंडे ख़त्म होने को है एंड इवनिंग होते हैं बहुत ही स्लो, ताकि आपको मौका मिले आपके एनर्जी को फिर से बूस्ट करने के लिए। एंड बूस्टर बनकर हम लेकर आए हैं कुछ गाने आप लोगों के लिए टू मेक यू फील गुड। सो चलिए, यहाँ पर अगला गाना खास तौर से हम डेडिकेट करेंगे आपके नाम। कहती हैं, हेलो दी, प्लीज डेडिकेट द नेक्स्ट गाना, बातें ये कभी ना तुम भूलना, फ्रॉम द मूवी खामोशियां, फॉर हबी रवि, ड्राइविंग राइट नाउ, वॉन्ट टू टेल हिम दैट आई लव हिम सो मच, फ्रॉम वाइफी करिश। यहाँ पर वेदना जी का मैसेज आया है, कहती हैं, हाई मैम, मैम मत बोला करो भाई, यहाँ पे तो हम सब परिवार है और हम सब दोस्त हैं। हेलो वेदना जी, कैसी हैं आप? एंड चलिए अगला गाना गुज आउट स्पेशली फॉर यू। बस हेलो हाय कह के आप तो बस मुस्कुरा ही रहे हैं, और ऐसे ही आप मुस्कुराते रहिए। एंड ये जो वाइड एंड ब्रॉड स्माइल होता है ना आपके चेहरे पर, ये हमें बहुत ही अच्छा लगता है। सो ऑलवेज कीप स्माइलिंग, कहते हैं ना कि द बेस्ट एक्सेसरी जो कोई

0: शेयर कर सकता है दैट इज योर प्रेटी स्माइल, और इस स्माइल को कभी फेड मत होने देना. एंड यहाँ पर किसी का मैसेज आया है, हेलो जी नमस्ते, आई एम प्रीति ऑफ अमोगी, नेक्स्ट गाना गुजार फॉर माई फैमिली एंड फॉर रेडियो मस्ती टीम, कोई भी संजय कपूर का गाना प्लीज दीदी. चलिए हम ट्राई करते हैं और साथ में नेक्स्ट गाना हम डेडिकेट करेंगे किन के लिए. कहते हैं हेलो वाओ वेरी नाइस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच रेखा जी, नेक्स्ट गाना गुज आउट स्पेशली आपके नाम, आपके प्यार राकेश बुदन के लिए एंड नेक्स्ट गाना गुज आउट आप दोनों के लिए, और बस आपका प्यार ऐसे ही सलामत रहे और अमर रहे एंड प्यार को दुगना करने के लिए हम कुछ और खूबसूरत गाने लेकर आए हैं आप लोगों के नाम.
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

0: है प्यार में होता है क्या जादू तू जाने या मैं जानू बट ट्रस्ट मी ना हम जानते हैं और ना ही आप कभी जान पाएंगे क्योंकि इस सवाल का जवाब कभी किसी के पास नहीं हो सकता है। प्यार में बस एक किस्म का जादू है एक किस्म का नशा है जिसके बारे में हम सोच के ही इतना अच्छा फील करते हैं एंड प्यार के होने से हमारी पूरी ज़िंदगी इतनी चेंज हो जाती है कि क्या ही कहे। पॉजिटिव चेंजेस अगर प्यार के ज़रिए आपकी ज़िंदगी तक पहुँच रही हैं तो उनको आने दें और उनको चेंज होने दे। 7:37 ऑलरेडी एंड चलिए यहाँ पर ये गाना खास तौर से आपके लिए हमने चलाया जुबिन नौटियाल की आवाज़ में। दिल गलती कर बैठा है अगर प्यार करना गलती है तो सज़ा भी हमें मंजूर है क्योंकि हम गलती करना कभी नहीं छोड़ेंगे। भाई देखिए अगर प्यार में अगर लोग कहते हैं कि आप गलती कर रहे हैं तो इसका परिणाम इसका कॉन्सिक्वेंस भी आपको भुगतना तो पड़ेगा ही। इसलिए डोंट वरी एंड बी हैप्पी और प्यार के बारे में इतना भी ना सोचें क्योंकि प्यार सोच समझ कर किया नहीं जाता है प्यार बस हो ही जाता है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि प्यार में लॉजिक नहीं मैजिक होता है। सो चलिए कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ हम इस शो को आगे बढ़ाते रहेंगे। डोंट फॉरगेट अगर आप हमें याद करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल अपने इवनिंग को और भी मैजिकल और स्पेशल बना सकते हैं बाय सेंडिंग अस योर मैसेजेस ऑन द मैजिकल नंबर विच इज 5499-1294।
1: इवनिंग लाउंज
2: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti.
2: वैसे कहा जाता है ना दोस्तों कि बींग समवन्स फर्स्ट लव इज नॉट स्पेशल बट बींग समवन्स लास्ट इज समहाउ एक्स्ट्रा स्पेशल। अगर आप किसी की आखिरी मोहब्बत हैं और उनको लगता है कि बस आप पे ही ज़िंदगी आके रुक गई है तो ट्रस्ट मी दिस इज़ अ वेरी एक्स्ट्रा स्पेशल फीलिंग और इस फीलिंग को ऐसे ही आपको उम्र भर कायम रखना है। क्या है ना कि कभी कभी जब प्यार हो जाता है शादी हो जाती है और कभी कभी बच्चे भी हो जाते हैं तो लोगों को लगता है कि प्यार का कोई एक्सपायरी डेट होता है बट ट्रस्ट मी लव हैज़ नो एक्सपायरी डेट। जितना आप इसमें मेहनत डालते रहेंगे उतना ही आपका प्यार खिलकर फूल की तरह सामने आता रहेगा और सुगंध बनकर आपकी ज़िंदगी को महकाता रहेगा। और अगर आपको लगता है कि एफर्ट करने से कुछ नहीं होता है और आप मेहनत और ये एफर्ट डालना बंद कर देते हैं प्यार में तो बिल्कुल प्यार मुरझा सा जाता है और आपकी ज़िंदगी भी मुरझा जाती है। इसलिए प्यार बहुत ही ज़रूरी है ज़िंदगी को स्पाइस अप करने के लिए क्योंकि प्यार के बिना ज़िंदगी आधी अधूरी सी लगती है।

क्या मिले प्यार जिंदगी से हो गया, ये गाना तो आपने सुना ही होगा। और ट्रस्ट मी, कुछ ऐसे गाने होते हैं, सिर्फ गाने ही नहीं होते हैं बल्कि ज़िंदगी में प्यार को जताने का एक तरीका होता है। इसलिए पहले ज़माने में जब मोबाइल नहीं हुआ करता था ना, तो लोग एक दूसरे को प्यार की चिट्ठी भेजा करते थे, प्रेम पत्र भेजा करते थे। और कभी कभी जब कुछ नहीं कह पाते थे तो गाने के ज़रिए ही वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर दिया करते थे। और अभी तक ये ट्रेंड मुझे लगता है लोगों को ज़िंदा रखना चाहिए। एंड यू नीड टू कीप द स्पार्क अलाइव इन योर लव एंड इन योर लाइफ। और आपके प्यार के इस स्पार्क को ज़िंदा रखने के लिए वी हैव दिस ब्यूटीफुल गाने, ताकि आप हमारे गीतों को सुने भी, उनको महसूस करें और आपको थोड़ा और प्यार हो जाए। 8:05 हो चुके हैं, इट्स अ वंडरफुल मंडे इवनिंग। और हमेशा हम कहते हैं ना कि इवनिंग होते ही है स्लो डाउन करने के लिए। अभी सुबह दोपहर में रश रश वाला टाइम होता है, और इस भागदौड़ की ज़िंदगी में कब किसी को कहाँ टाइम मिलता है, और फॉरगेट अबाउट अदर्स, कभी कभी खुद के बारे में सोचना भी टाइम नहीं मिलता है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभी के लिए आप अपनों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, मोबाइल को एक तरफ रखें और चांद तारों को देखते देखते कभी कभी वो स्पेशल इंसान के साथ इतना डीप कॉन्वर्सेशन होने लग जाता है कि आप यू स्टार्ट फीलिंग एट होम। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्यार में इस एहसास को ऐसे ही पकड़ कर रखें, क्योंकि नॉट एवरी वन हु आर इन लव दे फील एट होम। वैसे ये भी कहा जाता है ना कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो साथ होते हैं लेकिन दे आर नॉट इन लव, एंड कुछ लोग ऐसे भी होते हैं हु आर नॉट टुगेदर बट दे आर स्टिल इन लव। अब ज़िंदगी के दस्तूर यही है और इसी के साथ सबको जीना ही पड़ता है। तो चलिए, आई जस्ट होप कि इस प्यार भरे एहसास को आप कभी भी फेड आउट नहीं होने देंगे, और जितना हो सके हमारी तरफ से हम आपकी मदद करेंगे। विल ट्राई टू कीप दैट लव अलाइव इन योर हार्ट। जिस तरीके से कहा जाता है कि आपके मन में जो इनर चाइल्ड होता है इसको कभी फेड नहीं होना होने देना चाहिए, उसी तरीके से जब आपके प्यार में, जब आपके दिल में प्यार का पकड़ आ जाता है ना, तो इसको कभी भी ऐसे ही नहीं रहने देना चाहिए। ट्रस्ट मी, प्यार में अगर आप दिन ब दिन अपने डेली डोज ऑफ लव को इंक्रीज़ करते रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। और वैसे कहते हैं ना कि जिस शख्स से आप प्यार करते हैं, आप बस उनको देखिए और उनके रिएक्शन को देखिए, क्योंकि कभी कहा

0: जाता है कि द रिएक्शन इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर लव. अगर आपको लगता है कि रिएक्शन आजकल ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो आप दूसरों को गलत ठहराने के बजाय आपको बैठ के ये एहसास करना चाहिए कि एम आई डूइंग द राइट थिंग, या फिर क्या मेरा प्यार थोड़ा कम हो चुका है, या फिर द अदर पर्सन इज फीलिंग इनसिक्योर. और प्यार में कभी भी किसी को इनसिक्योर फील नहीं करना चाहिए. जितना हो सके आप अपनों को सिक्योर करने की बहुत बहुत ही कोशिश कीजिएगा, क्योंकि प्यार में सब लोग डिज़र्व करते हैं द इमोशनल सिक्योरिटी. कभी भी अगर आप अपनों को इनसिक्योर देखते हैं, तो आप तुरंत ही समझ जाइएगा कि प्यार का डोज थोड़ा कम हो चुका है. और इसको बढ़ाने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज़ कीप लविंग स्ट्रांगली. और थोड़ा सा और प्यार कभी किसी के लिए बुरा नहीं होता है. एंड कहते हैं ना कि दुख बांटने से थोड़ा कम हो जाता है, और प्यार बांटने से थोड़ा और दुगना हो जाता है. सो चलिए यहाँ पर प्यार का डोज इंक्रीज करते रहेंगे टिल 9 PM ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती, जहाँ पर दिव्या का साथ है.
1: Evening Lounge.
2: RM2.
1: Radio Musti.

0: Evening Lounge.
1: Evening Lounge.
2: RM2.
0: Radio Musti.
3: किसका चांद आपको कहाँ पे नजर आया है ये तो जरूर बताइएगा। एंड चलिए ये खूबसूरत सा गाना अरिजीत सिंह की आवाज में, कभी जो बादल बरसे और कभी कभी बरसाती मौसम में प्यार का डोज को इंक्रीज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड कभी भी अगर आपके यहाँ बरसात हो रही है तो दिस कुड बी अ ब्यूटिफुल कोइंसिडेंस कि हम बारिश और बरसात वाला गाना चला रहे हैं। चलिए ये गाना गुजार स्पेशली फॉर ऑल दोज जो कनेक्टेड हैं हमारे साथ, स्पेशली इफ यू वर्किंग बोकुहाज। कुछ ही देर में लेकर आ रहे हैं आपके ब्यूटीफुल मैसेजेस डेडिकेशंस ऑन 5499 1294।

बिल्कुल दोस्तों, इसीलिए कहते हैं ना कि कल होना हो हम तो कहते हैं, हमेशा कहते रहते हैं, पल होना हो हम कल के बारे में इतना सोचने लग जाते हैं कि हमें एहसास नहीं होता है कि ये पल जो अभी है वही जिंदगी है और ये पल रहे ना रहे, लेकिन ऐसे ही हर पल को आप गंवाने में लग जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाएगी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज़ कि जो है अभी है और जो है बस वही है.

0: मजबूर कर देते हैं कि लाइफ में क्या कुछ चेंजेस होते रहते हैं और हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। और कभी ऐसा होता है ना कि हम अपने अतीत को लेकर इतने सोच में पड़ जाते हैं कि जब हम पलट कर देखते हैं तो एहसास होता है कि कहाँ से निकल कर कहाँ गए, होता है ना। लेकिन आप ये बात भी ज़रूर याद रखिएगा कि जब आप अतीत को के पन्नों को पलट कर देखेंगे तो उसमें आपके अपने कहाँ पर हैं और आप उनको कहाँ तक लेकर आए हैं, ये सफ़र का तय करना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस सफ़र के बारे में भी सोचना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कभी कभी हम इतने लाइफ में एम्बिशियस हो जाते हैं कि हमारे अपने पीछे छूट जाते हैं या फिर उनको बहुत ही आगे लेकर चले जाते हैं कि कभी कभी उनसे बात करने का वक्त ही नहीं मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि इवनिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इवनिंग्स आर वेरी डिवाइन, क्योंकि वही पल होता है जहाँ पर एक ठहराव होता है और इस पल को आप ठहर के नहीं रख पाएंगे और इसको काबू में नहीं रख पाएंगे। बट द लीस्ट यू कैन डू इज स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली एंड विद योर नियर एंड डियर वंस। चलिए 8:33 ऑलरेडी दिव्या का साथ इन योर इवनिंग लाउंज। जितने भी सारे लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ, दिल से आपको लव एंड ग्रैटिट्यूड और शुक्रिया दिल से इतने प्यार से साथ देने के लिए। चलिए यहाँ पर किसी का मैसेज आया है, गुड इवनिंग दिव्या जी, आशा जानू ऑफ कॉटेज, सुपर्ब सिलेक्शन, थैंक यू सो मच, अगर पॉसिबल हुआ तो प्लीज़ आप ये गाना चला दीजिए, कहीं प्यार ना हो जाए, टाइटल सॉन्ग फॉर मामा कुमारी, आपके नेफ्यूज़ हैं शुभम, ऋषभ और दीदी आरती, जीजू राज, सभी जानू फैमिली एंड ऑल्सो फॉर भाई धीरज, बिहारी फैमिली, सभी हमारे लिसनर्स के नाम, थैंक यू सो मच आशा, ऑलवेज नाइस टू हैव यू ऑन द वेव्स ऑफ RM2। चलिए यहाँ पर किसी का मैसेज आया है बट अनलकीली आपका मैसेज थोड़ा इनकम्प्लीट आया है, सो हम रिक्वेस्ट कर रही हैं प्लीज़ अगर पॉसिबल हुआ आप अपना मैसेज फिर से भेज सकते हैं, व्हाट्सअप पर नंबर वही है 5499-1294। प्लीज़ प्ले द नेक्स्ट सॉन्ग फॉर मिसेज धनवंती तोराचन ऑफ रॉयल रोड डीप रिवर सेलिब्रेटिंग हर 49th बर्थडे, उनको बहुत सारा प्यार, लंबी आयु दे उनको भगवान एंड ऑल द बेस्ट, बस इतना ही मैसेज आया है। सो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट इफ़ यू वॉन्ट us to read your message once again, please aap hame yaad kariyega, whatsapp par number wahi hai 5499-1294। chaliye abhi ke liye kuch aur khoobsurat geeton ke sath aage badhte rahenge till 9 pm
1: evening lounge
2: RM2
1: radio masti।

0: आपका मन किसको याद कर रहा है इन गीतों को सुनने के बाद और किसकी झलक देखना चाहती हैं आपकी ये खूबसूरत आंखें जरूर बताइएगा 1549912 94। चलिए किसी का मैसेज आया है, हेलो, इन खूबसूरत गीतों के साथ साथ कैन यू प्लीज प्ले द सॉन्ग माशुका फ्रॉम कॉकटेल टू और फिर वही रात है फॉर माय वेरी ब्यूटीफुल मॉम। मम्मा का नाम क्या है आपने बताना ही, बट अभी के लिए थोड़ा मुश्किल है, बट फॉर श्योर द नेक्स्ट गाना गुज आउट स्पेशली फॉर यू एंड योर ब्यूटीफुल मम्मा।
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

0: चलिए यहाँ पर आपका मैसेज फिर से आ गया है और आप कहती हैं कि मामा का नाम है स्मृति सिंह, तो चलिए ब्यूटीफुल मामा स्मृति के लिए ये गाना था एंड कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे टिल 9 PM.
1: RM2 रेडियो मस्ती.

0: Evening Lounge. Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti.
2: प्यार तो हम आपसे करते हैं बेशुमार बेमतहा, इसीलिए तो बार बार आप लोगों से मिलने आ ही जाते हैं ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती। चलिए फिलहाल के लिए तो इट्स अ टाइम फॉर मी टू से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। वक्त बहुत ही तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ गया एंड यकीन ही नहीं होता है कि आपको गाने सुनाते सुनाते और प्यार भरी बातें करते करते ये वक्त कैसे निकल गया। कोई बात नहीं, ये वक्त कल फिर से आएगा, ये दौर भी आएगा और हम भी आएंगे आप लोगों से मुलाकात करने के लिए 7 से लेकर रात के 9 बजे के बीच। तब तक के लिए दिव्या को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, कीप स्माइलिंग, बाय बाय एंड शुभ रात्रि।

गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आप सबों का रेडियो मस्ती पर। मैं हूँ वेदिता, साथ देने आई हूँ आपके आपके अपने लेट नाइट्स ग्रूव्स में। तो चलिए आप लोग हमारे साथ रोमांटिक गीतों का मजा लेते चलिए और हमारी इस प्रेम की नैया को आगे बढ़ाते चलिए।

उम्मीद करती हूँ कि हमारा जो सफर है जो शुरू हुआ है अभी खूबसूरत रोमांटिक गीतों के साथ आप पसंद कर रहे हैं। वैसे घबराएगा नहीं, शायद आपकी पसंद का कोई गाना हमारे आज की लिस्ट में भी शामिल है।

यू आर लिस्निंग टू लेट नाइट ग्रूव्स वेदिता के साथ ऑन रेडियो मस्ती. और यहाँ पर चल रहा है आपका प्रोग्राम जिसमें खूबसूरत रोमांटिक गाने लेकर आए हैं. कहते हैं ना कि जो बातें हम होठों से न कह पाते वो कभी कभी नजरें कह देती है. तो चलिए दिल की बात जुबां पर लाते हैं, अगला गाना गुनगुनाते हैं.

आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, लेट मी विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। हो सकता है घर में पार्टी चल रही होगी, थक गए होंगे। चलिए कुछ नहीं, हम यहाँ पर आपके लिए जो रोमांटिक गाने लेकर आए हैं, थोड़ी सी एनर्जी आप तक पहुँचाएंगे जरूर। साथ देते रहिए और सुनते रहिए रेडियो मस्ती।

का फिर से वेलकम करते हैं और चलिए इसी के साथ अगले गाने के साथ प्रोग्राम को आगे ले चलते हैं. सो कीप लिसनिंग टू लेट नाइट ग्रूव्स एंड डोंट वरी, लाइफ में जो होता है अच्छे के लिए होता है और ट्रस्ट मी, जो होगा बहुत अच्छा होगा.

दोस्तों प्यार करना इतना आसान नहीं होता। प्यार करना कोई सीखे उनसे जो दूर रहकर भी एक दूसरे के साथ होते हैं और कभी वो शिकायत भी नहीं करते। कुछ ऐसे प्यार होते हैं भाई जो काफी दूर होते हैं, कोई यहाँ कोई परदेश में, लेकिन फिर भी प्यार बरकरार रहता है। तो ऐसे प्यार को सलाम। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं।

वैसे प्यार में हर किसी को प्यार नहीं मिलता, कभी प्यार में लोगों को जुदाइयां भी मिलती हैं, कभी दिल टूट भी जाते हैं, और कभी कभी तो क्या कहें, कुछ लोग उसी प्यार के सहारे ज़िंदगी बिता देते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि आप इतना भी टेंशन ना लें, आप हमारे साथ हैं रेडियो मस्ती पर, तो सिर्फ गाने सुने और दिल को बहला लें।

प्यार तो छाया हुआ है भाई हमारे रेडियो मस्ती पे. वो कहते हैं ना लव इज इन द एयर. तो उम्मीद करती हूँ कि ये आप तक जरूर पहुंच रहा है. अगर आप घर पर हैं गर्मा गर्म कॉफी के साथ खिड़की पर बैठे हैं और कुछ प्यारा सा सुनना चाहते हैं तो ये नेक्स्ट गाना जरूर फिट आएगा आपकी इस कहानी में जो शायद आपके दिमाग में चल रहा हो. कीप लिसनिंग.

दोस्तों हमारे जाने का टाइम हो गया है. थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े रहे. ये 3 घंटे का सफर कैसे पूरा हो गया पता ही नहीं चला, लेकिन हो तो गया. चलिए अब आपसे मुलाकात करेंगे हम बहुत जल्द एक और लेट नाइट ग्रूव्स के साथ, जो कि होगा थर्सडे को. अभी के लिए विदिता आपसे कहेगी गुड नाइट, टेक केयर. इफ यू आर ड्राइविंग बी केयरफुल. आई लव यू ऑल. बाय बाय.

0: Radio Mustaine.
1: बिछड़ के तुझसे अब मुझे मरना है, ये तजुर्बा इसी जिंदगी में।

0: रेडियो मस्ती।
1: पलकों में तुम, मेरी नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम, बस तुम।

0: Radio Mustang.
1: भाई सपना, इतने मेहमानों को छोड़कर कहाँ छुप गई? बाहर कब आओगी? जब हम चले जाएंगे तब।

फिर कोई बावर मोहब्बत की।